मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 10वीं तिथि तदनुसार 2 अक्टूबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों

0: को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि वो अनुभूति है जो हमारे मन को शांति देती है, हृदय में श्रद्धा जगाती है और जीवन की कठिन राहों पर भी आशा का दीप जलाए रखती है। जब भक्ति के साथ संगीत का संगम होता है तो सुर स्वयं प्रार्थना बनते हैं और शब्द ईश्वर के चरणों में अर्पित पुष्प। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं और जब मन किसी अनजाने भय से घिर जाता है तब भक्त को सबसे पहले याद आती है अपनी माँ की, वो माँ जो अपने बच्चों को पुकार सुनती है और उनके दुखों को हरती है और उन्हें साहस तथा विश्वास प्रदान करती है। माँ दुर्गा के दरबार में बड़ा और न कोई छोटा है। हर भक्त अपनी झोली में उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने की आशा लेकर आता है।

भारतीय संस्कृति में श्री राम केवल एक आराध्य नहीं बल्कि आदर्श जीवन, सत्य, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा के प्रतीक हैं। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें ये संदेश देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब राम नाम का स्मरण शास्त्रीय संगीत की गंभीरता, शुद्धता और साधना से जुड़ता है तो भक्ति का अनुभव और भी गहरा होता है।

भक्त की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि वो हमें ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक रूप में अनुभव करना सिखाती है। कभी प्रकृति की हरियाली में, कभी उगते हुए सूर्य की लालिमा में, और कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, तो कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करते हुए हाथों में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास अनेक रूपों में होता है। जब दृष्टि में श्रद्धा और हृदय में प्रेम हो तो संसार का प्रत्येक कण परमात्मा की रचना दिखाई देने लगता है, और यही अनुभूति मनुष्य को अहंकार से दूर ले जाकर प्रेम करुणा मानवता के निकट पहुंचाती है। भजन केवल ईश्वर की आराधना नहीं करते, वे हमें अपने भीतर झांकने और अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नीति धर्म। जिस वस्तु से हमारे मन में अच्छे विचार उठते हों, वो हमारी नीति सदाचार का फल मानी जाती है। दुनिया के साधारण शास्त्र बताते हैं कि दुनिया कैसी है। नीति का मार्ग ये बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्ग के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि मनुष्य को किस तरह आचरण करना चाहिए। मनुष्य के मन के भीतर सदा दो दरवाजे होते हैं। एक से वो ये देख सकता है कि वो खुद कैसा है, दूसरे से उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन, तीनों को अलग अलग देखना समझना हमारा काम है।

इतना ही करके रुक जाएं, तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान, इन सभी का क्या फल होता है और जहां ये तीनों इकट्ठे हों वहां कैसी खराबी होती है, ये जान लेना भी जरूरी है। और जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जानकर आचरण करना है। नीति का विचार तो वास्तु विशारद के नक्शे के जैसा है, जो ये बताता है कि घर कैसा होना चाहिए। हम घर बना चुके हों तो नक्शा हमारे लिए बेकार हो जाता है, वैसे ही आचरण ना किया हो तो नीति का विचार नक्शे की तरह बेकार हो जाता है। बहुतेरे नीति के वचन याद करते हैं, उस विषय पर भाषण करते हैं, पर उसके अनुसार चलते नहीं और चलना चाहते भी नहीं। कितने ही तो यही मानते हैं कि नीति के विचारों को इस लोक में नहीं परलोक में अमल में लाना चाहिए। ये कुछ सराहने लायक विचार नहीं माना जा सकता। एक विचारवान मनुष्य ने कहा है कि हमें संपूर्ण होना हो तो हमें आज से ही नीति के अनुसार चलना है, चाहे इसमें कितने ही कष्ट क्यों ना सहन करने पड़े। ऐसे विचार सुनकर हमें चौंक ना उठना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर तदनुसार व्यवहार करने में प्रसन्न होना चाहिए। नीति मार्ग में नीति का पालन करके उसका प्रतिफल प्राप्त करने की बात आती ही नहीं। मनुष्य कोई भला काम करता है तो शाबाशी पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भलाई किए बिना उससे रहा नहीं जाता। खुराक और भलाई दोनों की तुलना करने पर भलाई ऊंचे प्रकार का आहार सिद्ध होगी, और कोई दूसरा आदमी भलाई करने का अवसर दे तो भलाई करने वाला अवसर देने वाले का एहसानमंद होता है, वैसे ही जैसे भूखा अन्न देने वाले को दुआएं देता है। ये नीति मार्ग ऐसा नहीं है कि उसकी बात करते हुए बिल्कुल ऊपर ऊपर से मनुष्यता आ जाए। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़े अधिक मेहनती हो जाएं, थोड़ा अधिक पढ़े लिख लें, थोड़ा अधिक साफ सुथरे रहने लगें इत्यादि। ये सब उसके अंदर आता है, पर इतने के मानी तो ये हुए कि हम महज सरहद पर पहुंच पाएं। इस मार्ग के अंदर इनके सिवा और बहुत कुछ मनुष्य को करना होता है, और वो ये सब समझकर करना होता है कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है, ये सोचकर नहीं कि वैसा करने से हमें कोई लाभ होगा।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने चने और मटर की उन्नत खेती, इस विषय पर राम दुलारे प्रसाद और राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, खेती किसानी में यहाँ समय में देखा जाए तो जौन बाटे है, जौन भी खेत खाली है हमार, वह में अगली जौन चना मटर बा आलू बा ई सब के लिए खेत तैयार करत बाटे न। आज जौन बातचीत के विषय बा वो चना और मटर के खेती के बारे में बा, कि चना मटर के खेती कैसे किसान भाई करें, ई सब बात करे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटन श्री राम दुलारे प्रसाद जी, जौन कि ई सब के जानकार बाटन। राम दुलारे प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। आप हमारे किसान भाई इनके बतावें कि चना और मटर के खेती करे चाहत हैं तो कैसे करें, बताएं आप।
2: चना व मटर की उन्नत खेती, दलहनी फसलों में चना व मटर का प्रमुख स्थान है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। दलहनी फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि उन्नत विधि से अगर खेती की जाए तो अधिक लाभकारी होगी।
1: अच्छा अच्छा, विधि बताओ।
2: हाँ, इसके लिए भूमि जो चाहिए वो चने के लिए दोमट व भारी दोमट भूमि, जहाँ पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था हो, सबसे अच्छी मानी जाती है।
1: मतलब कि पानी ना लगे चाहिए।
2: पानी नहीं लगनी चाहिए। खेत की तैयारी, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 6 इंच गहरी करनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर या हल से करके पटा लगा ले। अच्छा। और खेत तैयार कर लेना चाहिए।
1: जी जी।
2: अब एक कुछ प्रमुख जातियाँ हैं।
1: कौन कौन प्रजाति?
2: हाँ, एक है अवरोधी, इसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है।
1: बढ़ के 4 बीघा।
2: हाँ, इसकी जो अवधि है पकने की 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है।
1: अच्छा,
2: और यह असिंचित दशा में है,
1: यानी और यह पानी की सुविधा ना वहाँ
2: बोई जा सकती है।
1: अच्छा,
2: और यह उकठा अवरोधी भी है, यानी उकठा की बीमारी भी इसमें नहीं लगती है।
1: अच्छा।
2: प्रजाति है राधे, इसकी उपज भी 25 से 30 क्विंटल है, 140 से 150 दिन में तैयार होती है।
1: अच्छा।
2: पूर्वी या बुंदेलखंड के लिए यह बहुत ही उपयोगी प्रजाति है। चौथी प्रजाति है K850, यह 25 से 30 क्विंटल इसका उत्पादन है, 145 से 150 दिन में यह जो है तैयार हो जाती है,
1: पक के तैयार।
2: हाँ। और दूसरी प्रजाति एक पूसा 372, इस ये भी 25 से 30 क्विंटल उत्पादन है, 145 से 150 दिन
1: यानी यह तैयार हो।

0: या
1: देखा।
0: मैदानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: इसका दाना बड़ा होता है और ये भी अवरोधी प्रजाति है, बीमारी इसमें कम लगती है।
1: भैया हो, अभी सब प्रजाति के बुवाई के लिए कैसे करें बताएं आप।
0: हाँ किसान भाई, सबसे ज़रूरी यह है कि चना का बीज जो है कितना प्रयोग होगा,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, यानी
1: अच्छा
0: 4 बीघा में।
1: हाँ
0: बीज शोधन, जो भी हम बीज प्रयोग करें बिना शोधित के न करें, बीज शोधन के लिए एक दवा है थीरम, यह 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, यह न मिले तो एक मैंकोजेब है यह 3 ग्राम,
1: अच्छा
0: या
1: अच्छा
0: ट्राइकोडर्मा एक दवा है यह 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से शोधन करना चाहिए।
1: कैसे करें
0: अब
1: शोधन भैया।
0: किसान भाई, एक और ज़रूरी जानने बाद कि अब इसके कैसे नापेंगे, तो एक जो माचिस की डिब्बी होती है, अगर उस माचिस की डिब्बी में भर करके दवा जो है और ढक्कन बंद कर दिया जाए, तो 10 किलो बीज जो है वो हमारा शोधित हो जाएगा।
1: अच्छा
0: हाँ सबसे अच्छा माप है यह। अब उसके बाद शोधन के बाद बीज का उपचार भी ज़रूरी है।
1: हाँ
0: बीज
1: हाँ
0: उपचार करने के लिए है कि दलहनी फसलों का

0: कि अब इसके कैसे नापेंगे, तो एक जो माचिस की डिब्बी होती है, अगर उस माचिस की डिब्बी में भर करके दवा जो है और ढक्कन बंद कर दिया जाए तो 10 किलो बीज जो है वो हमारा शोधित हो जाएगा।
1: अच्छा
0: हाँ, सबसे अच्छा माप है यह।
1: अच्छा
0: अब उसके बाद शोधन के बाद बीज का उपचार भी जरूरी है।
1: हाँ
0: बीज उपचार करने के लिए है कि दलहनी फसलों का जो कल्चर आता है, जिसको राइजोबियम कल्चर के नाम से जाना जाता है,
1: जी
0: यह हर दलहनी फसल का अलग अलग होता है।
1: अच्छा
0: यानी चना का अलग होगा, मटर का अलग होगा, इसी प्रकार से अन्य दलहनी फसलों का अलग होगा। तो एक विशेषता यह है कि इसको शोधित करने के लिए, उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़ ले लें और आधा लीटर पानी में गुड़ को डाल के, अगर गुड़ उपलब्ध नहीं हो रहा तो 50 ग्राम चीनी ले लें और डाल करके उसको उबालें, और
1: अच्छा
0: पानी
1: अच्छा
0: जब खूब गर्म हो जाए तो उतार दें, और पानी जब ठंडा हो जाए तो 10 किलोग्राम बीज को ज़मीन पर फैला दें,
1: अच्छा अच्छा
0: और उसके बाद जो सिरा ये ठंडा हो जाए उस सिरे को उस पर डाल दें,
1: अच्छा और को मिला
0: उस
1: दें
0: अब
1: खूब।
0: मिला दें। उसके बाद जो 200 ग्राम का पैकेट है चना का है या मटर का है, जो भी है, जो प्रजात हम बो रहे हैं, तो उसमें उसको मिला करके, और लकड़ी से मिलावें,
1: अच्छा हाथ से
0: हाथ से
1: मिलाएं।
0: न मिलावें, क्यों हाथ से मिलाएंगे चिपक जाएगा, तो लकड़ी से मिला करके और उस बीज को, उपचारित बीज को छाई में सुखावें। और इसमें एक सावधानी और बरतनी है कि इसको धूप में कतई न सुखावें, नहीं धूप में सुखाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी।
1: और भैया करे आगे क्या
0: और
1: करें कि
0: उसके बाद
1: भाई।
0: एक आती है, और वो है PSB, एक कल्चर आता है, उसका भी उपयोग करें।
1: आगे क्या
0: अब
1: करें भैया करें।
0: अगले बाद उर्वरक है, नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से
1: तो ये
0: तत्व
1: हमें
0: के रूप में
1: सब
0: इसको।
1: बोवाई के पहले देख बे या बाद में।
0: हाँ, नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बेसल ड्रेसिंग में खेत में डाल करके तब बुआई करना है।
1: अच्छा
0: शेष जो आधी मात्रा नत्रजन की है वो पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग में प्रयोग करना है।
1: अच्छा अच्छा
0: बुआई के जो समय है कर है असिंचित दशा में अक्टूबर का द्वितीय और तृतीय सप्ताह, और सिंचित दशा में नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक, या पछेती अगर करना है तो दिसंबर के
1: तक
0: प्रथम
1: बुआई का।
0: सप्ताह तक हम
1: अच्छा
0: बुआई इसकी की जा
1: कैसे।
0: सकती है।
1: अच्छा।
0: बुआई की विधि है कि हल के पीछे कूड़ों में 6 इंच की गहराई पर बुआई करें, कुंड से कुंड की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: यदि वह मिट्टी भराव वाली है तो उसकी दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रखना है।
1: अच्छा अच्छा
0: उसके बाद आता है सिंचाई इसकी कब करें। बुआई के 45 से 60 दिन पर,
1: जमाव जब आ जाता है
0: हाँ
1: यह।
0: बुआई से तिथि से 50-60 दिन बाद प्रथम सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई जब फलियों में दाना पड़ने लगे उस समय अवश्य करना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा और भैया
0: उसके बाद जो है इसमें लगता है खरपतवार।
1: खरपतवार जाम जाते हैं।
0: हाँ, खरपतवार जाम जाता है, तो इसकी ज़रूरी है कि बुआई के 25 दिन बाद निराई व गुड़ाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए एक दवा आती है, 2.2 लीटर फ्लोरो क्लोरीन
1: अच्छा
0: 45 cc,
1: हाँ
0: आठ
1: हाँ
0: सौ से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें।
1: जी।
0: प्री इमरजेंस के लिए एक दवा आती है पेंडामेथिलीन, 30 cc को पानी में घोल करके 800 से 1000 लीटर में, और 72 घंटे के अंदर बुआई के, और इसको छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय ये भी सावधानी बरतनी है कि हमेशा पीछे हटना है, आगे तरफ नहीं जाना है।
1: अच्छा छिड़कत
0: हाँ,
1: छिड़कत पीछे तरफ
0: पीछे
1: जाए।
0: तरफ चलें, नहीं तो यहाँ पैर पड़ जाएगा, अगर आगे जाएंगे तो वहाँ पर खरपतवार जम जाएगा।
1: अच्छा ये तो
0: ये करीब,
1: खरपतवार की बात होगी। अब
0: हाँ
1: क्या
0: अगली बात अब
1: करें।
0: आता है मटर। ये तो चना के बारे में हो गया।
1: अच्छा
0: हाँ, अभी मटर है, तो मटर में के लिए जो है भूमि दोमट हल्की भूमि उपयुक्त होती है।
1: अच्छा
0: भूमि
1: अच्छा
0: की तैयारी यही है, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, और
1: अच्छा
0: दो तीन जुताई करें देसी हल से।
1: अच्छा अच्छा
0: प्रजाति कर है रचना, मालवी, अपर्णा, मालवी 15, पंथ मटर 5, शिखा, सपना, टाइप 163, प्रभात, प्रकाश, आदर्श हैं। एकर बीज है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से
1: बोवाई के
0: बोना
1: चल।
0: चाहिए।
1: अच्छा।
0: इसका भी शोधन भी है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से जो है थीरम से
1: यानी
0: शोधित
1: शोधन
0: करें।
1: का एक ही मटर बोवाई के चाहे।
0: हाँ
1: एम दोनों में रोग दो कुछ भी लागत ही ना।
0: हाँ
1: रोग
0: वह
1: दो
0: बहुत रोग
1: वगैरह
0: लगता है इसमें।
1: जैसे चना मटर में सामान्य रूप से कौन रोग लागत।
0: हाँ, इसमें देखिए रोग लगता है, एक तो उकठा रोग है, यह चनों में भी लगता है, मटर में भी लगता है।
1: अच्छा अच्छा
0: और इसमें मुरझा करके पत्ते जो है वो सूखने लगते हैं। एक उपचार यह है कि फसल चक्र

0: अपनाया जाए, यानी
1: लगातार
0: बदल बदल के
1: हाँ
0: जौने
1: लगातार
0: खेते में।
1: दलहनी खेती न करें या गेहूं है लगातार न बोवें तो
0: अच्छा,
1: फसल चक्र अपनाया जाए।
0: कीड़ा का लागत है भैया।
1: हाँ कीट भी इसमें लगते हैं, जो है इसमें लगता है एक फली छेदक कीट, इसकी कीड़ारें फलियों में छेद करके अपने सिर को फली के अंदर घुसा लेती हैं और
0: अच्छा,
1: खा जाती हैं।
0: पूरा पेड़ भैया खाए के बाद तो पूरा
1: हाँ फलियां खा जाएंगे
0: तो कोनो
1: तो
0: मतलब
1: उत्पादन
0: नहीं।
1: नहीं हो पाएगा। एकर उपचार ये है कि इंडोसल्फान 35 cc 1.5 लीटर या क्यूनाल फास 25 cc
0: अच्छा,
1: 1.5 लीटर दवा को
0: हाँ
1: 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो इससे जो है छुटकारा
0: निजात मिल जाए
1: जा
0: भैया। राम दुलारे
1: आराम मिला।
0: प्रसाद, हाँ, राम दुलारे प्रसाद जी, आप आयन चना मटर की खेती उन्नत तरीके से कैसे करें, किसान भाई के विषय में बताएं, किसान भाई आपके जानकारी के लाभ लें, आपका जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे चने और मटर की उन्नत खेती। इस विषय पर रामदुलारे प्रसाद से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इसमें सुनिए डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा की वार्ता, दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें।
1: दंत चिकित्सा में मरीज को कुछ ऐसी बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए जिसका अगर अनदेखा करें तो गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुंह का इलाज में क्रॉस इन्फेक्शन यानी एक मनुष्य की बीमारी दूसरे मनुष्य में आसानी से जा सकती है या संक्रमण फैल सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। कोरोना काल में दंत चिकित्सक बहुत अधिक प्रभावित रहे क्योंकि संक्रमण का 100% संभावना थी। ऐसे ही न केवल कोरोना बल्कि और ऐसी संक्रमणकारी बीमारी बड़ी आसानी से दंत चिकित्सक या मरीज की अनदेखी में फैल सकती है। संक्रमण टीबी का, एचआईवी का, हेपेटाइटिस का, साधारण इन्फ्लुएंजा आदि कई बीमारी हैं। ऐसे में डॉक्टर एवं मरीज ये सुनिश्चित करें कि क्या क्लिनिक में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट न केवल साफ हों बल्कि ऑटोक्लेव हों। ऑटोक्लेव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समाप्त हो जाते हैं बल्कि उनके स्पोर्स जिसमें क्षमता होती है कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवित रहने की, वो भी मर जाते हैं। अतः कोई भी इलाज करवाने से पहले इस बात की जानकारी पुख्ता कर लें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी की बीमारी खांसने और छींकने से निकलने वाले महीन लार के कण में मौजूद बैक्टीरिया से फैलते हैं, ऐसे में दंत चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट अगर ऑटोक्लेव ना हो तो यह संक्रमण फैल सकता है और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। ऐसे ही एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी भी फैल सकती है। इसलिए अनुरोध है, मुंह में किसी प्रकार का इलाज कराने से पहले सुनिश्चित करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो। साथ ही मरीज सुनिश्चित करे कि सुई नई हो, पुरानी या इस्तेमाल की हुई नहीं। दांत निकलवाने के बाद एक्सरे जरूर करवाएं जिससे ये भ्रम ना हो कि दांत पूरा निकला कि नहीं। कई बार छोटा सा दांत का बचा हुआ टुकड़ा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। दांत निकलवाने के बाद जो खून का थक्का जमने लगता है निकले हुए दांत की जगह, उसे संभाल कर परिपक्व होने दें। अगर खून का थक्का बोलने, खांसने, कुल्ला करते वक्त निकल जाए तो ड्राई सॉकेट नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो दर्द की दवा भी सही से काम नहीं करती और जो घाव 2-4 दिन में ही सही होने लगता है, अब 15 से 20 दिन या ज़्यादा समय भी लग जाता है। ऐसे में कोई लापरवाही ना करें। दांत निकलवाने के बाद अपना विशेष ध्यान रखें। दांत निकलवाने के बाद अगर खून बंद ना हो तो तुरंत ही कॉटन घाव के ऊपर रख कर दबा दें और 15 मिनट तक दबा कर रखें। अगर फिर भी बहे तो दंत चिकित्सक की सलाह लें। 24 घंटे सिर्फ ठंडा या नॉर्मल खाना ही खाएं। बार बार थूकना या कुल्ला ना करें। सुन्न का इंजेक्शन अगर नीचे के जबड़े में इलाज के लिए दिया है तो जुबान भी सुन्न पड़ जाती है। ऐसे में ज़्यादा बातचीत ना करें क्योंकि कई बार दांत में जुबान कट जाती है और सुन्नपन की वजह से उस वक्त तो पता नहीं चलता पर बाद में जुबान में घाव हो जाता है और बेहद पीड़ा सहना पड़ता है। अतः मुँह में किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो

0: और टांका लगा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टांका ना टूटे। अगर टांका टूट गया तो घाव सूखने में समय लगेगा और बेहद पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। मुंह की सर्जरी से पहले मरीज खाना अवश्य खाए। खाली पेट सर्जरी नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि मरीज सिंकोप या बेहोश हो सकता है और सर्जरी के बाद तुरंत कुछ खाया पिया भी नहीं जा सकता। इसलिए मरीज खाली पेट सर्जरी ना करवाएं। ध्यान देने बात यह है कि चूंकि लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो रही है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो 24 घंटे खाली पेट अनिवार्य है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान जिस दांत में इलाज हो रहा है उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कभी कभी दर्द होने लगता है और जिसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर दंत चिकित्सक से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी एक्सरे की कॉपी जरूर लें, भविष्य में दिक्कत होने पर या क्रॉस चेक करने में मदद मिल सके। ज़्यादातर दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट तभी होता है जब वो काफ़ी हद तक खोखले हो जाते हैं। ऐसे में दांत के ऊपर कैप जरूर लगवाएं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। ज़्यादातर आम धारणा है कि जब सारे दांत निकल जाएंगे तो ही बत्तीसी लगवाएंगे, या बचे हुए दो चार दांत निकलवा के बत्तीसी लगवाते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर एक भी दांत अगर मुंह में है तो उसे ना निकलवाएं, क्योंकि वो आपकी बत्तीसी को और अच्छे से काम करने चबाने में चमत्कारिक रूप से मदद कर सकता है। दांत निकलवाने से आंख पर कोई असर नहीं पड़ता। दांत की सफाई करवाने से दांत खराब नहीं होते, बल्कि मसूड़े स्वस्थ और दांत की उम्र बढ़ती है। साथ ही मुंह से बदबू और पैरिया से भी निजात मिल सकता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता, दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। शाम 3:30 से सुनिएगा गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं भक्ति संगीत कार्यक्रम की गांधी स्तुति एवं दर्शन समिति 30 जनवरी मार्ग नई दिल्ली से सीधा प्रसारण। और रात 10:00 सुनिएगा 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ 7:00 से, फिल्मों से भजन 7:10 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर, दोपहर 12:15 पर और रात 10:30 पर बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर होगा। फिल्म संगीत 9:00 और रात 10:20 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर अर्चना दास और शाम 7:45 पर आकांक्षा पाल से भजन और गीत सुनिएगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज 10:05 पर होगा। इसमें सुनिएगा न्यूट्रिशन डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में कलाकार होंगे रघुराज सिंह और साथियों से आज आप लोकगीत सुनेंगे। 11:00 सुनिएगा वर्तमान परिपेक्ष में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता। डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्र से भेंट की है नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय ने। दिन में 11:00। युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम होगा यूथ एक्सप्रेस 11:30 पर। अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा 12:30 पर। कलाकार होंगे, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी विशेष रूपक हिंद स्वराज। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर होगा। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम में सुनेंगे मेघना मिश्रा की वार्ता गांधी एक सोच। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अनिल कुमार यादव की वार्ता गांधी और शास्त्री, शांति सद्भाव और

कर्म में प्रतीक। और विनोवर शर्मा से सुरेश कुमार की बातचीत होगी राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन पर। शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी दर्शन, और रात 8 रूपक होगा स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत महात्मा गांधी। 8:30 पर अक्षय भट्ट कार्यक्रम में सुनिएगा चित्रगुप्त श्रीवास्तव से विनय श्रीवास्तव की बातचीत वृद्धावस्था और सामाजिक जीवन। गजलों का कार्यक्रम कहकशा होगा 9:30 पर। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौरवर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। स्वर था चतुर्सेन और राजेंद्र कचरू का, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। पहला भजन हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से, आवाजें हैं अजीज नजान और कंचन की।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में किशोर कुमार को। इस भजन को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से बचन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान से संचारी रोगों पर पाया जा सकता है प्रभावी नियंत्रण। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सह प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी चुनावों को लेकर पर की तैयारियां। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विविध आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोकभवन सभागार में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 7 पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है।
2: राज्य सरकार की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस नीति को यूपी पुलिस पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगी। वर्षों से, दशकों से जो मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस के भी कुछ कमिश्नरेट बनने चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 7 पुलिस कमिश्नरेट हम यूपी के अंदर बना चुके हैं और जो सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं आज देश को, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं।
1: श्री योगी ने बताया कि कार्यक्रम में 16 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार तथा 10 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी वीर पुलिस कर्मियों को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि संचारी रोगों के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी संबंधित विभागों और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान के माध्यम से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्री पाठक लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारम्भ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: इस अभियान के दौरान हम सभी घरों में दस्तक अभियान भी चलाएंगे। सबसे पहले जो गंदगी की सफाई करना है, फिर उसके उपरांत हमें मच्छर मारने की दवा की फॉगिंग करनी है। इसके अलावा लार्वा मारने के लिए भी हम दवाइयां डालेंगे।
1: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तथा दस्तक अभियान 12 से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण

0: करण संशोधन अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। वन विभाग आज से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह मनाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों पर आधारित मास्क मेकिंग, छद्म आवरण का अनुकरण एवं चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस, फेस पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी आदि प्रतियोगिताएं भी होंगी। प्रदेश के बच्चे वन्य जीव के संसार में अपने मनोभाव से रंग भरेंगे। इस अवधि में प्रतिभागी व 12 वर्ष तक के बच्चों का चिड़ियाघर में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कल लखनऊ में सह प्रभागियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठकर बूथों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखी। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि उनके दौरे के दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठन मजबूती पर विचार विमर्श होगा।
1: तावड़े भी संगठन के प्रभारी हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आना जाना उनका रहेगा ही, और चुनाव निकट है तो निश्चित तौर से हम लोग कार्यकर्ताओं का संगठन हमारा बूथ तक कैसे मजबूत हो उसकी चर्चा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक से स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
2: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
3: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
4: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
2: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश भर में आज इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपिता की स्मृति को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित स्वाधीनता संग्राम विश्व इतिहास में प्रेरणादायी उदाहरण है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान से संचारी रोगों पर पाया जा सकता है प्रभावी नियंत्रण। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सह प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनावों को लेकर परखी तैयारियां। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विविध कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन, राग है जौनपुरी।

ಮಾಡಿದ

Never,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन, राग था जौनपुरी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 8 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और

0: हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
3: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
4: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स There was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
3: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में

0: किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
2: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बनाए जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमईज के लिए और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोक सत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयर क्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार

0: हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अबीब जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv bound plane. Brave Indian pilot Smith Mazhar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi, Rajghat, in the national capital.

0: The Indian Express reports that five-time football world champions Brazil landed in Kolkata on Thursday night for their much-awaited friendly with India on Saturday. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. And India bags gold in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई इस्लाहात शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तेल अवीव जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार को इलाज के लिए अबू धाबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने खवातीन के रिकर्व तीरअंदाजी टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें योमे पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का अहतमाम किया गया है।

वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फूल नज़र किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अमन और अदम तशद्दुद का महात्मा गांधी का पैगाम दुनिया के कई हिस्सों में जंग और महाजाराई के माहौल में और भी ज्यादा इफादियत रखता है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी और उनकी नजरियात को दुनिया भर में बहुत एहतराम की नजर से देखा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर कहा है कि महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी सदाकत, अदम तशद्दुद, रवादारी और खिदमत का नमूना रही है। जनाब मोदी ने कहा कि बापू की तालीमात हर दौर में इंसानियत की राह दिखाती रहेंगी। जनाब मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि महात्मा गांधी का लाफानी पैगाम हम वतनों को बेहतर समाज और विकसित भारत की जानिब पेशकदमी में रहनुमाई करता रहे। बाबाए कौम महात्मा गांधी का योम पैदाइश मनाने के लिए गुजरात में कई सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल पोरबंदर में महात्मा गांधी की जाय पैदाइश कीर्ति मंदिर में एक दुआया जलसे में शिरकत करेंगे। इसी तरह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी सभी मजहबों के दुआया जलसे का अहतमाम किया गया है। पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिम भी चलाई जा रही है। इधर रियासती सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर खादी और पॉली वस्त्र तैयार करने पर 30% की खसूसी मार्केट तरगीबी इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार।

0: ये फैसला मुल्क के लिए खादी, फैशन के लिए खादी, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए से मुताबिकत रखता है, जो 31 दिसंबर 2026 से नाफिज होंगे। इस माली तरकीब का फायदा सीधे गाहक तक पहुंचेगा, जिन्हें सरकारी खादी फरोख्त मराकज पर खसूसी रियायत मिलेगी। आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान मकामी मसनूआत की फरोख्त की हौसला अफजाई के लिए गुजरात के बड़े शहरों में खसूसी खादी नुमाइश और फरोख्त मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: आज गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जा रहा है। इनमें हुक्मरानी की बड़ी तब्दीली वाली असलाहत और इकदामात पर गौरखोज किया जाएगा, जिनका मकसद पंचायतों को मुस्तहकम बनाना, अवामी खिदमात में बेहतरी लाना और मुल्क के देही इलाकों में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। देही तरक्यात की वजारत ने कहा है कि इन खसूसी प्रोग्राम ग्राम सभाओं के साथ साथ है अवामी मनसूबे की मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज किया जा रहा है। वजारत के मुताबिक मजकूरा मुहिम के तहत ग्राम पंचायतें लोगों की शमूलियत और शवाहिद पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के लिए अपने अपने ग्राम पंचायत तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगी। अवामी मनसूबे की मुहिम पर मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में 2018 से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके ज़रिए पंचायतों को जामे मरबूत और शमूलियत वाले तरक्याती मनसूबे मुरतब करने में सहूलत होती है। 2,55,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें अपने अपने मनसूबे तैयार करके इन्हें ई ग्राम स्वराज पर अपलोड करती हैं। ग्राम सभा में होने वाले तबादले ख्याल से शहरियों और मुकामी नुमाइंदों को सरकार की अहम स्कीमों और इकदामात के फ़ायदों और इनके नफाज का जायज़ा लेने का मौका मिलेगा। साथ ही वो मुकामी ज़रूरियात और किसी तरह की कमी की निशानदेही कर सकेंगे और अपने अपने गाँव की तरक्की के लिए तरजीहात के बारे में गौर व फिक्र कर सकेंगे। आज ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। लाल बहादुर शास्त्री कम उम्र में ही मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हो गए थे और उन्होंने 1921 में अदमताउन तहरीक में हिस्सा लिया। मुल्क की आज़ादी के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने से पहले शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल विजय घाट जाकर गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर विजय घाट जाकर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि स्कीम के ज़रिए किस तरह इस नज़रिए को अमली शक्ल दी गई है। पेश एक रिपोर्ट।
2: रामेश्वरम में नौ तामीर शुदा पामबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समंदरी पुल है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 6 अप्रैल को रामनवमी के पवित्र दिन किया था। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये रामेश्वरम की पवित्र धरती के लोगों को मुबारकबाद देने का मौका है।
3: द न्यू पामबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड is being connected by a 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
2: इससे पहले तारीखी पामबन श्रीलंका तक तजारती कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से तामीर किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मदुरई डिवीजन के रेलवे अफसर ने बताया कि पुल के ढांचे की हिफाजत के लिए सिर्फ 99

0: रनवे अप्रोच गर्डर्स की तामीर में ही 3000 टन से ज्यादा फौलाद का इस्तेमाल किया गया है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के माहिरीन ने नवंबर 2024 में इस डिजाइन की जांच की। पामबन पुल उन बड़े समंदरी तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहा जिन्होंने धनुष कोड़ी को तबाह कर दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम कर रहे लोगों के लिए हवाबाजी के हिफाजती तरीक़ेकार को आसान और सहल बनाने के लिए सिलसिलेवार इस्लाहात शुरू की हैं। नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने और कारोबार में आसानी से मुतालिक इस्लाहात के बारे में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन तब्दीलियों का मकसद तरीक़ेकार को आसान बनाना और सिक्योरिटी के आला तरीन मेयार को बरकरार रखते हुए जवाबदेही पर मबनी हुक्मरानी की जानिब मुंतकली है। वजारत ने बताया कि BCAS ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के तरीक़ेकार को आसान

0: ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आकाशवाणी प्रयागराज के अपने प्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है। भारत के इतिहास में ये तारीख दो महान विभूतियों की जन्म तिथि के रूप में सदैव याद की जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, दो ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन सादगी, सत्य, अनुशासन, त्याग और राष्ट्र सेवा का प्रतीक रहा। एक ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का परिचय कराया तो दूसरे ने कठिनाई परिस्थितियों में देश का नेतृत्व करते हुए सादगी और दृढ़ संकल्प की मिसाल कायम की। दो अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया जा सकता है। उनके लिए सत्य केवल बोलने की बात नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का आधार था। अहिंसा केवल किसी को चोट न पहुंचाने का विचार नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के प्रति सम्मान रखने का भी मार्ग था। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रहा। वहीं उन्होंने सत्याग्रह की शक्ति को विकसित किया और बाद में भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत आने के बाद चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक बना। किसान की समस्याओं को समझने और उनके पक्ष में खड़े होने के लिए गांधी जी ने चंपारण का रुख किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। 1930 का दांडी मार्च विशेष रूप से ऐतिहासिक था। नमक जैसे सामान्य पदार्थ पर लगाए गए औपनिवेशिक कर के बाद, मतलब इसके विरोध में गांधी जी ने जन भागीदारी के एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। और फिर आया वर्ष 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने देशवासियों के सामने स्पष्ट संदेश रखा कि करो या मरो, ये केवल नारा नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष का आह्वान था। तो श्रोताओं, गांधी जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था सादगी। वे मानते थे कि भारत की वास्तविक शक्ति गांवों और सामान्य लोगों में है। खादी, चरखा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता उनके विचारों के महत्वपूर्ण हिस्से थे। उनके लिए स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण थी। वे मानते थे कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। और आज हम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो गांधी जी का ये विचार और भी प्रासंगिक दिखाई देता है। तो 2 अक्टूबर को हम केवल गांधी जयंती के रूप में नहीं मनाते बल्कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी याद किया जाता है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, बात करेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री जी की। इस दिन इनका जन्म हुआ उस व्यक्तित्व का जिसने उन्होंने अपने छोटे कद के बावजूद अपने विशाल चरित्र से पूरे देश पर गहरी छाप छोड़ी। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में जन्मे शास्त्री जी का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही पिता का निधन हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा जारी रखी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उनकी सादगी ऐसी थी कि सार्वजनिक जीवन में बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में दिखावे को स्थान नहीं दिया। शास्त्री जी का जीवन एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि व्यक्ति की महानता उसके पद से नहीं बल्कि उसके चरित्र से तय की जाती है।

वे देश के रेल मंत्री भी रहे। एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। भारतीय सार्वजनिक जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व का ये उदाहरण आज भी विशेष रूप से याद किया जाता है। 1964 में वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उस समय देश के सामने अनेक चुनौतियां थीं, खाद्यान्न की कमी थी, आर्थिक कठिनाइयां थीं और राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा विषय था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व किया। इसी दौर में उनका प्रसिद्ध नारा गूंजा, जय जवान जय किसान। इस छोटे

वाक्य ने उन्हें भारत की दो महत्वपूर्ण शक्तियों को पहचान दी, देश की सीमा की रक्षा करने वाला जवान और देश का पेट भरने वाला किसान। देश में खाद्यान्न संकट के समय उन्होंने लोगों से संयम और बचत की अपील की। वे स्वयं भी सादगी का पालन करते थे और चाहते थे कि देशवासी कठिन समय में राष्ट्रहित को व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखें। यही कारण है कि आज भी ईमानदारी, सादगी और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन को साथ रखकर देखें तो दोनों के व्यक्तित्व में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाएं, तो शास्त्री जी ने अपने जीवन में कहा कि ईमानदारी और कर्तव्य को सर्वोपरि रखें। गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात की तो शास्त्री जी ने किसान और जवान की शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर आइए हम भी अपने जीवन में दो छोटे संकल्प लें। पहला, हम सत्य, अहिंसा और सद्भाव का रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे, क्योंकि महापुरुषों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका केवल उनके तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है। गांधी जी का चरखा हमें आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। शास्त्री जी का जय जवान जय किसान हमें देश की सुरक्षा और अन्नदाता के महत्व की याद दिलाता है, और दोनों का जीवन हमें एक ही बात कहता हुआ दिखाई देता है, देश पहले स्वयं बाद में।

श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश को याद करते हैं। शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करते हैं। आइए हम ऐसा भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं जहां विचारों में शांति हो, व्यवहार में विनम्रता हो और कार्य में ईमानदारी हो और हृदय में देश के प्रति सम्मान हो। इसी संदेश के साथ नमस्कार प्रयागराज के इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति। एक नए विषय और नई प्रस्तुति के साथ आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म मेरे वतन के लोगों से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है प्रदीप ने।

0: अभी आप सुन रहे थे हरिहरन को फिल्म रोजा में। गीत लिखा था पीके मिश्रा ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: और आइए सुनते हैं फिल्म स्वदेश का ये गाना। आवाज है एआर रहमान की, संगीत भी दिया एआर रहमान ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: रास रचाते श्री कृष्ण का अलौकिक साक्षात्कार किया। स्वामी हरिदास जी ऐसे संत थे जिन्होंने भारतीय संगीत को विशिष्ट पहचान दी। यह ब्रज की पावन धरा है, यहाँ पर किसी भी रूप से आने का मौका मिले ये राधा रानी की कृपा से संभव है। इस अवसर पर ब्रज विभूति संत मौनी बाबा महाराज, संत कमंडल बाले बाबा, भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नामदेव शर्मा, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, महेश अग्रवाल, उद्योगपति लोकेश, अनुप शर्मा, निखिल भारद्वाज, अनुपम शर्मा, अतुल श्रीवास्तव प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
1: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
2: सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वर्ड नगर यात्रा कानपुर देहात पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। चौबेपुर और सिवली होते हुए यात्रा टोली बैरी सवाई स्थित राम जानकी महाविद्यालय पहुंची, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री ने यात्रा टोली के सदस्यों से संवाद कर यात्रा के अनुभवों की जानकारी ली। यात्रा के माध्यम से लोगों तक सेवा, सुशासन, जन कल्याण और विकास का संदेश पहुँचाने के साथ नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कानपुर देहात में सेवा संकल्प अभियान के तहत आलापुर, जूनिया, गजनेर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया और अभिभावकों से संवाद किया। कार्यक्रम में पोषण, स्वास्थ्य, जागरूकता, हेल्थ, बेबी प्रतियोगिता और उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं का सम्मान किया गया। मंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित शुक्ल तालाब में सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक दीप प्रज्वलित कर देश की उन्नति और जन कल्याण की कामना की। हजारों दीपों की रोशनी से शुक्ल तालाब का पूरा परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी भी हुई, जिससे माहौल उत्सवमय हो गया। कानपुर देहात पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का गौरव देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। साध्वी निरंजन ज्योति प्रधानमंत्री के लंबे अनुभव और देश के प्रति समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री और अब 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है।
3: हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि देश के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व मिला हुआ है, जिसके कारण आज भारत में ही नहीं भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। लगातार 13 साल मुख्यमंत्री और 12वां वर्ष चल रहा है लगातार प्रधानमंत्री जी के रूप में, देश के सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इन कार्यों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
2: उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा, आज दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मान की नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और समर्पण के संदेश को जन जन तक पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। कानपुर देहात में भारी बारिश के बाद कृषि विभाग ने फसलों का निरीक्षण किया। उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव ने डेरापुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर फसलों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण में तिल की फसल को आंशिक नुकसान पाया गया। बीमित किसानों की फसल क्षति के आकलन के लिए राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी की संयुक्त टीमें लगाई गईं। अपर जिलाधिकारी दुष्यंत कुमार मौर्य ने सचेत और दामिनी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी। बारिश और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थान, पेड़, बिजली के खंभों और जल स्रोतों से दूर रहने की भी अपील की गई है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: का ये उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान के दो अजीम रहनुमाओं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री साहिबान का योम पैदाइश मनाया जाता है। यही तारीख आलमी योम अदम तशद्दुद के तौर पर भी जानी जाती है। ये दिन हमें अमन, मोहब्बत, सादगी, रवादारी और इंसानियत के उन आला उसूलों की बुनियाद याद दिलाता है जिनकी ज़रूरत बिलाशुबा आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होती है। सामीन, इज्जत माप महात्मा गांधी जी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद को जहां अपनी जद्दोजहद का बुनियादी उसूल बनाया, वहीं उनके नज़दीक किसी भी मसले का हल नफ़रत और तशद्दुद में नहीं बल्कि सच्चाई, सब्र, अखलाकी कुव्वत और पुरअमन कोशिशों में मुजमर है। इसके अलावा सामीन, इज्जत माब लाल बहादुर शास्त्री साहब की शख्सियत सादगी, दयानतदारी, फ़र्ज शनासी और कौमी खिदमत की नुमाया मिसाल है। उनका मशहूर नारा जय जवान जय किसान मुल्क के मुहाफिज और मुल्क के मेहनत कश दोनों की अहमियत को उजागर करता है। उनके यहाँ क़यादत सिर्फ इक्तदार नहीं बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी, बेलोस खिदमत और किरदार का नाम है। दोस्तों, आज दुनिया तशद्दुद, नफ़रत, अदम बर्दाश्त और मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ुआत का सामना कर रही है। ऐसे हालात में आलमी योम अदम तशद्दुद की अपने आप में एक मुनफरिद हैसियत बन जाती है। लिहाजा ऐसे मौके पर हमें यह सोचना चाहिए कि इख्तिलाफात को ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए, क्योंकि अमन का आगाज सिर्फ सरहदों से नहीं बल्कि हमारे घरों, महलों, तालीमी इदारों और माशरे से होता है। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक बातचीत का। मौजू है अमन, मोहब्बत हो और इंसानियत जिंदा रहे। इस उन्वान पर गुफ्तगु करने के लिए आज की उर्दू बज्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मस्त रहमानी साहब और जनाब रहबर प्रताप गढ़ी साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं और अब बग़ैर किसी तमीद व ताखिर जनाब मस्त रहमानी साहब से सवाल है। रहमानी साहब, आज के मौजू की मुनासिबत से अव्वलन महात्मा गांधी जी की शख्सियत, इब्तदाई ज़िंदगी और कौमी जद्दोजहद का मुख्तसर तारुफ पेश फरमाएं, नीज़ उनके अदम तशद्दुद के नज़रिए की बुनियादी खसूसियात क्या थी उनकी वजाहत फरमाएं।
2: आज 2 अक्टूबर है जो बड़ी खुशी का दिन इसलिए है कि हिंदुस्तान की अजमत रखने वाले और हिंदुस्तानियों की के सर को बुलंद करने वाले महात्मा गांधी जी का योम पैदाइश है जो 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ में पैदा हुए
1: जी।
2: उन्होंने इब्तदाई तालीम वहीं रहकर हासिल की, उसके बाद इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए गए। वहीं उन्होंने अफ्रीकियों की हालत को देखकर इंसानियत के लिए काम करने का अहद किया और वापस आकर उन्होंने यहाँ सबसे पहले जो तहरीक चल रही थी चंपारण की, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, गरीबों को उनका हक दिलाने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी की शख्सियत हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं कि ये सूफी संतों का मुल्क रहा है और उसमें गांधी जी जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने सियासत में रह के सूफियों की जिंदगी गुजार कर हमारे लिए एक नमूने की जिंदगी पेश की। उनका सबसे अहम कारनामा वो अदम तशद्दुद का था। कोई सोच नहीं सकता था कि अदम तशद्दुद के सहारे मुल्क आज़ाद हो जाएगा, लेकिन गांधी जी ने अपनी जहानत से हिंदुस्तान को अदम तशद्दुद के असरहे से आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में कोई ओहदा तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही सोचा

0: गरीबों की दुखियारों की मदद की जाए, और उन्होंने ये भी बताया कि सच ही जिंदा रहने वाली चीज है।
1: बहुत ही उम्दा बात कर रहे हैं मस साहब आप। बहुत ही आला अंदाज में आपने गांधी जी का तारुफ पेश किया कि महात्मा गांधी साहब ने सच्चाई, अदम तशद्दुद और पुरअमन जद्दोजहद को अपनी जिंदगी का बुनियादी उसूल बनाया और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। उनके अदम तशद्दुद का बुनियादी तसव्वुर यही था कि जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नफरत और तशद्दुद के बजाय सच्चाई, सब्र, अखलाकी कुव्वत और पुरअमन कोशिश से किया जाए। बहुत ही उम्दा बात आपने कही है। अभी आप अदम तशद्दुद के ताल्लुक से बात कर रहे थे मस साहब, एक और सवाल यहाँ पर यही करेंगे कि गांधी जी के फलसफाए अदम तशद्दुद और आज की डिजिटल दुनिया के दरमियान क्या कोई अमली ताल्लुक कायम किया जा सकता है? नीस साफ सफाई को लेकर गांधी साहब ने क्या खिदमात अंजाम दी हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
0: गांधी जी का खास मिशन ये था कि अदम तशद्दुद के बगैर यकजहती का पैगाम दिया जाए। अगर गांधी जी की तालीमात पर अमल किया जाए तो हमारे मुल्क के अंदर यकजहती, गरीबों से हमदर्दी, कमजोर लोगों की किफायत करने का जज्बा पैदा होगा और यही जज्बा आजाद हिंदुस्तान के लिए कारामद जज्बा होगा। गांधी जी का खास मिशन सफाई का था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक के आदमी का दिल, दिमाग, जहन साफ नहीं होगा तब तक के जाहिरी सफाई से कुछ हासिल नहीं होना, इसलिए उन्होंने सफाई पर जोर दिया।
1: तो बहुत ही उम्दा कहा मत साहब आपने कि आज की डिजिटल दुनिया में भी अदम तशद्दुद की बड़ी अहमियत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के ताल्लुक से आपने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत, गाली गलोच, अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी के बजाय शाइस्तगी, सच्चाई और एहतराम को फरोग देना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मजीद आपने कहा कि सफाई के मामले में गांधी जी का पैगाम बहुत वाज़े था कि सफाई सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये गांधी जी कहते थे, बल्कि हर शहरी का फर्ज है। वो खुद सफाई के काम में हिस्सा लेते थे और आवाम को अपने घरों, गलियों और आसपास के माहौल को साफ रखने की तरगीब भी देते थे। उनकी कोशिश थी कि सफाई को इज्जत और इज्तिमाई जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। ये बात आपने कही बहुत ही उम्दा कही। सामीन एक लेंगे वक्फा, वक्फे के दरमियान आपको सुनवाते हैं मशहूर शायर जनाब रहबर प्रतापगढ़ी साहब का गांधी जी के ताल्लुक से ये उम्दा कलाम।
2: समाअत फरमाएं।
3: सच

चरखा उसके वतन का ख्याल था। मजदूर हो किसान हो सब अपने थे उसे, मजदूर हो किसान हो सब अपने थे उसे, हर फर्द

0: सामिन, अभी आप जनाब रहबर प्रताप गढ़ी साहब से गांधी जी के हवाले से उनका ये उम्दा कलाम समाज फरमा रहे थे। सामिन, अभी हम आपको फिर उसी फिजा में लिए चलते हैं जहां हम जनाब मस्त रहमानी साहब से 2 अक्टूबर के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर में जहां गांधी जी की शख्सियत अपने आप में एक मुतारफ शख्सियत है, वहीं एक दूसरी शख्सियत भी अपना एक कमाल रखती है। उनका नाम आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री साहब। एक सवाल यहाँ पर शास्त्री साहब के ताल्लुक से करेंगे। मस्त साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ, नीज उनकी सादगी, दयानतदारी और उसूल पसंदी की नुमाया खसूसियात क्या थी, हमारे साथ अपनी बातों को साझा करें।
1: आज मुल्क की एक दूसरी अजीम शख्सियत आजहाने लाल बहादुर शास्त्री जी का यौम पैदाइश भी, जिनकी सादा मिजाजी ने एक तारीख रकम की है। जब वो रेलवे वजीर थे तो उनके जमाने में रेल

0: 2 अक्टूबर में जहां गांधी जी की शख्सियत अपने आप में एक मुतारफ शख्सियत है, वहीं एक दूसरी शख्सियत भी अपना एक कमाल रखती है। उनका नाम आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री साहब। एक सवाल यहां पर शास्त्री साहब के ताल्लुक से करेंगे। मस साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ, नीज उनकी सादगी, दयानतदारी और उसूल पसंदी की नुमाया खसूसियात क्या थी, हमारे साथ अपनी बातों को साझा करें।
1: आज मुल्क की एक दूसरी अजीम शख्सियत आजहाने लाल बहादुर शास्त्री जी का यौम पैदाइश भी, जिनकी सादा मिजाजी ने एक तारीख रकम की है। जब वो रेलवे वजीर थे तो उनके ज़माने में रेल का 1956 में एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफा देके ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि अगर किसी शख्स में कोई ऐसा हादसा या कोई बात होती है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसलिए आज हानि लाल बहादुर शास्त्री जी का यौम पैदाइश भी हम सबके लिए एक मिसाल है।
0: तो बहुत उम्दा कह रहे हैं मस साहब आप, के लाल बहादुर शास्त्री साहब हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम थे और अपनी सादगी, दयानतदारी, उसूल पसंदी और बेलोस खिदमत के लिए याद किए जाते हैं। वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे और कौमी जिम्मेदारी को जाती मफाद पर तरजीह देते थे। यह भी आपने जैसे रेलवे का तस्किरा किया उससे साफ वाज होता है। उनकी शख्सियत की एक नुमाया खसूसियत ये थी कि वो अपने उसूलों और जिम्मेदारियों के मामले में संजीदा और जवाबदेह रवैया रखते थे, जैसे आपने वाजे किया। बहुत ही उम्दा बात आपने कही। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री साहब के नज़दीक कौमी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिंदगी की क्या अहमियत थी, और उनका मशहूर नारा जय जवान जय किसान का क्या किरदार रहा। नीज आज की नौजवान नस्ल के लिए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री साहिबान की जिंदगियों का सबसे अहम पैगाम क्या हो सकता है, इस पर रोशनी डालें।
1: आज हानि लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी की जिंदगी गुजार के ये पैगाम दिया कि सब लोग अगर सादगी की जिंदगी गुजारें तो मुल्क जो है वो कभी दुश्वारियों का सामना नहीं करेगा। उनका नारा था जय जवान जय किसान। जब मुल्क में खानगी मामलात की दुश्वारी पैदा हुई तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये नारा भी दिया। खुद उन्होंने पूरे घर से एक दिन का व्रत रखा और व्रत रखने के बाद ये पैगाम दिया कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, यही इंसानियत का सबसे बड़ा कारनामा। वजीर आजम होते हुए उन्होंने अपना जाती मकान नहीं बनवाया, किराए के मकान पर उन्होंने जिंदगी गुजार दी। इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी सादगी से उन्होंने जिंदगी गुजारी जो हम सबके लिए एक मिसाल है, जिस पर हम सब लोगों को चलकर अमल करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत करीब से देखा। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो वो हमारे मकान सिटी स्टेशन सीतापुर के करीब में है, मैं स्टेशन पे मौजूद था और एक शख्स धोती बांधे हुए, टोपी लगाए हुए, सदरी पहने हुए थर्ड क्लास से बरामद हुआ। कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने नारा बुलंद किया कि लाल बहादुर शास्त्री जिंदाबाद। सब ये मालूम हुआ कि थर्ड क्लास में वो शाहजहानपुर से सीतापुर आए थे। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हमें ये देखना था कि हमारे गरीब भाई किस तरह सफर करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की शख्सियत हमारे आप सबके लिए एक नमूना।
0: बहुत ही उम्दा बात आपने कही कि लाल बहादुर शास्त्री साहब कौमी इत्तेहाद को मुल्क की तरक्की और मजबूती के लिए बुनियादी अहमियत देते थे। उनका मशहूर नारा जय जवान जय किसान मुल्क के दिफा और ज़राअत दोनों की अहमियत को उजागर करता है। आज की नौजवान नस्ल गांधी जी से सच्चाई, अदम तशद्दुद और रवादारी, जबकि शास्त्री जी से सादगी, दयानतदारी और कौमी खिदमत का सबक हासिल कर सकती है। यह आप अपनी बातों में कह रहे हैं और अपना तजर्बा भी आपने बताया, बहुत ही खूब बताया, बहुत उम्दा बताया। यहाँ पर एक मरतबा सामीन फिर लेंगे वक्फा। वक्फे के दरमियान सुनवाते हैं जनाब रहबर प्रतापगढ़ी साहब का लाल बहादुर शास्त्री साहब के हवाले से ये उम्दा कलाम।
2: शुक्रिया। नसम लादा फरमाए वतन।

ओ मन सबका सच्चा निगहदार था, जवानों का बाजू किसानों का साथी, वतन की तरक्की का मेमार था। लबों पर रहा जय जवां जय।

0: जिक्र हो, दिल में नफरत ना हो, ऐसा किरदार हो।
1: सामीन, अभी आप जनाब रहबर प्रतापगढ़ी साहब का अदम तशद्दुद के हवाले से ये उम्दा कलाम समाअत फरमा रहे थे। सामीन, आज की इस संजीदा और बामकसद बातचीत से ये हकीकत वाज़े होकर सामने आती है कि इज्जत माँ महात्मा गांधी और इज्जत माँ लाल बहादुर शास्त्री साहिबान के योम पैदाइश और आलमी योम अदम तशद्दुद के इस मौके पर हमें ये याद रखना चाहिए कि एक बेहतरीन मुआशरे और समाज की बुनियाद नफरत और तशद्दुद पर कभी खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि सच्चाई, अमन, मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत पर ही कायम हो सकती है। सामीन, और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब मस्त रहमानी साहब और जनाब रहबर प्रतापगढ़ी साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दी
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: तो थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अर्चना दास। पहले सुनते हैं इनसे भजन। रचना है मीराबाई की।

अर्चना दास के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित उनके समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अबीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें आबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और पूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकवर टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292

0: दशमलव 4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज में। आज वॉयस ऑफ प्रयागराज में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो उभरती हुई खिलाड़ी कयाकिंग और कैनोइंग में, जिन्होंने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और भविष्य में इनकी योजना है कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की। तो आइए स्वागत करते हैं आंचल और भूमि का। आंचल, भूमि, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
1: आंचल, आप बताइए, आपको कयाकिंग और कैनोइंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इस खेल में जाने की?
3: सर, अभी हम बचपन से स्विमिंग करते थे तो हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो इसकी वजह से स्विमिंग हमारा बंद हो गया था। तो फिर से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम स्विमिंग की, तो
1: यूनिवर्सिटी गेम्स की।
3: हाँ, तो फिर सर उसके बाद जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पर देखा तो कुछ नाव चल रही थी, क्योंकि वो पहली बार देखा था, ऐसा कभी गेम सुना भी नहीं और पहली बार देखा था। तो फिर वो गेम देख के लगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्विमिंग पूरे 12 महीने नहीं कर सकते, ठंड आ जाती है। फिर हाँ हुआ कि ये गेम करना है, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर गए, बगल में ही था जस्ट बोट क्लब प्रयागराज है कीड़गंज के पास, तो वहाँ पर गए हम। वहाँ कोच थे धवन सर, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे से आना, तो फिर हमने वहाँ पर ज्वाइन किया।
1: वहाँ से आपकी शुरुआत हुई?
3: जी सर।
1: तो जैसा कि आंचल ने बताया कि शुरुआत आप लोगों ने स्विमिंग से की थी, तो स्विमिंग कहाँ आप करती थी भूमि, स्विमिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्या शौक से करती थी या सीखने के लिए करती थी? तो कौन लेके गया आपको स्विमिंग के लिए?
4: मेरे फादर का नाम मिस्टर राजा बाबू सोनकर है, वो हमें शुरू से ही मतलब गेम में डालना चाहते थे, क्योंकि गेम में जितना हम लोग जाएंगे उतना ही खुल के रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को पहले टैकांडो सिखाया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। हम जब 5 साल के थे और ये 7 साल की थी, तब हमने टैकांडो किया था, तो फिर येलो बेल्ट करके हमने छोड़ दिया था। फिर 1 साल तक घर पे बैठे थे, कोई गेम नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे। फिर पापा मेरे रोज़ गंगा जी जाते हैं नहाते, तो उन्होंने देखा था कि हाँ वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि हम लोगों को कराते, तो एक दिन वो ले करके गए, बस दिखा करके आ गए। फिर उस दिन संडे था, उस दिन ऑफ था, हमें कुछ पता नहीं था। फिर अगले दिन हम खुद से गए, ये लगा था कि शौक के लिए कर रहे हैं। फिर स्कूल में गए तो पता चला कि हाँ एक कॉम्पिटिशन वगैरह होता है। फिर स्कूल स्टेट खेला, उसमें अच्छे रिजल्ट आए, मतलब पहली बार गए तो मेडल आए अच्छे खासे। फिर दूसरी बार 10th में गए, उसमें भी मेडल आए, लेकिन जब 11th में खेलने की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया, तो वहीं पे सब चीज रुक गई।
1: लॉकडाउन की बात, आप लोग
4: 2 साल एकदम रुक गया था,
1: 2 साल कुछ नहीं किया,
4: कुछ नहीं, घर पे ही थे,
1: पढ़ाई किया।
4: हाँ, फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा 12th कंप्लीट हुआ। 12th के बाद हम कॉलेज में एडमिशन भी लेना था, ये था कि स्विमिंग से अपना करेंगे आगे का, लेकिन स्विमिंग का ना यहाँ कोई फैसिलिटीज थी, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, स्विमिंग का कोई अच्छा कोच नहीं था, बहुत उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर बस हमने कयाकिंग कैनोइंग ज्वाइन किया।
1: आचल और भूमि, आप दोनों सगी बहनें हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? क्या कोई परिवार में पहले से स्पोर्ट्स में था, या फिर आप लोग ही पहले शख्स हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं?
4: सर, अभी तक मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और जहाँ से सर हम बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे बस्ती है।
1: आपके पिताजी क्या करते हैं?
4: हमारे पापा अभी चाय की दुकान है।
1: आपके पिताजी की चाय की दुकान है, वो अशिक्षित हैं, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, ये प्लान किया और ये प्रेरणा दी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई भी, लेकिन खेलकूद में आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो श्रोताओं, अभी हो चला है वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो भूमि और आंचल, आप लोग कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
4: कभी कभी अगर हम ऐसा डाउन्स होता है तो हम लोग एक गाना सुनते रुक जाना नहीं, वो गाना थोड़ा सा इमोशनली है, बट वो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करा
1: जाना नहीं तू कहीं हार। हाँ। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी आपको स्विमिंग के लिए ले गए गंगा जी में, जहाँ पे आपको किसी ने सिखाया और आपने उस समय शौक के लिए ही स्विमिंग सीखनी शुरू की, और कोविड के बाद आप लोग क्योकिंग और कैनोइंग में आए। तो वहाँ पे आपके कोच कौन थे, कैसे आप लोगों ने सीखना शुरू किया और शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई आप लोगों को?
1: पहले तो हम स्विमिंग में स्कूल स्टेट खेले थे तो इतना कुछ जानते नहीं थे। कैकिंग कैनोइंग में जब आए तो हर चीज़ एकदम नया था। मतलब वो ऐसा गेम था कि आज तक न देखा था और न ही तो सुना था। पहली बार देखा भी था, पहली बार सुना भी था। बस वो भी लग रहा था कि ऐसे शौक से होगा, ठंडी में छुट्टी होगी, लेकिन ये गेम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ असल में अब हम गेम में आए हैं। वो तो स्कूल स्टेट था इसलिए उतना कुछ लगा नहीं। फिर इधर जब आए तब गेम का अहमियत पता चली कि गेम क्या होता है। एक खिलाड़ी हम अगर बने तो कैकिंग कैनोइंग से बने, एक एथलीट हम अपने गेम से ही बने। बस स्विमिंग एक जरिया था हम लोगों को इस गेम तक पहुंचाने के लिए।
0: स्विमिंग माध्यम था जो आपको लेके गया कैकिंग और कैनोइंग में। तो आंचल ये बताइए कि जब आप लोगों ने कैकिंग और कैनोइंग शुरू की तो उसमें K1 होता है जिसमें एक ही प्लेयर पैडल करता है, और K2 होता है जिसमें दो होते हैं। तो आप लोग क्या शुरुआत में ही साथ में ही किया करते थे, K2 ही किया करते थे, कि शुरुआत में K1 और उसके बाद में फिर आपने टीम बनाई दो लोग मिलके K2?
2: नहीं सर, हम जब ये गेम ज्वाइन किए थे तो इसमें बोट में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: तो वो अकेले करते थे?
2: हाँ, तो कोई भी बच्चा होगा वो उस गेम में जो जो भी जाएगा तो उसमें उसको अकेले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उसकी बोट बैलेंस हो जाएगी, बोट चलने लगेगी, तब वो डबल और फोर पे बैठ के पैडल चलाता है।
0: तो आप लोग K1 में भी करती हैं, K2 में भी करती हैं। तो पहली ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें जाके आप लोगों ने कोई मेडल जीता हो या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को लगा हो कि नहीं हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं?
1: हम लोग ने अगस्त 2022 में गेम ज्वाइन किया था, तो और फिर नया नया गेम था उस समय, एक खिलाड़ी की तरह शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं थी, तो बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर दिसंबर 2022 में हमने अपना पहला नेशनल खेला था जो कि भोपाल में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हम 5 लड़कियां थी, तो मैं अकेले गई थी, K1 से खेला था हमने और इन्होंने K4 से खेला था। उस समय खेलो इंडिया हुआ था तो हम गए थे K1 से खेलने, मेरी 200 मीटर की रेस थी तो उसमें पलट गए थे। तो पलटने के बाद उसमें काफ़ी लोगों ने ऐसा कमेंट पास किया, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया कि हम उस समय मेरी बोट इन चारों से थोड़ी सी सही चल रही थी लेकिन फिर भी हम पलट गए थे। तो उस चीज़ को लगा कि ये चीज़ गलत है तो अब गेम पे ध्यान देंगे।
0: वहाँ से आपको जो सीखने को मिला, हाँ, सबक मिला, उसके बाद आपने मेहनत और ज़्यादा करनी शुरू की और इसको ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो आंचल आपको कब लगा कि भूमि तो अच्छा कर रही हैं, भूमि तो अब ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा गंभीरता से ले रही हैं, तो क्या आपने भी तभी से गंभीरता से लिया या आपने उस समय शौक से ही लिया?
2: सर उस टाइम तो हमारी बोट जब खेलो इंडिया हुआ था तो उस टाइम हमारा बैलेंस था, हम ढंग से पैडल भी नहीं मार पाते थे। तो फिर उसके बाद खेलो इंडिया खेल के आए, यूपी को फाइनल में पहुंचाया था, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट किया फाइनल में यूपी को। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, उसमें फिर गोल्ड आने चालू हुए। मेरा बैलेंस बहुत लेट से बना था बोर्ड पर, उसमें सबसे मुश्किल वर्क होता है बैलेंस बनाना।
0: बैलेंस बनाना
2: पर।
0: जैसा कि भूमि ने बताया कि वो उस प्रतियोगिता में अच्छा तो खेल नहीं थी लेकिन अचानक से उनकी बोट पलट गई, यानी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया। तो आप लोग बहने जब साथ में

0: करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ केटू में, जब
1: जी
0: केटू में आप
1: सर
0: लोग साथ में पेडल करती हैं, तो क्या आपस में थोड़ा सा लड़ाई होती है कि तुम ठीक से नहीं चला रही हो, तुम ठीक से नहीं चला रही हो?
1: हाँ सर, होती है
2: होती है
1: बहुत हद तक सर। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि जो अपना केटू पार्टनर होता है या भी कोई भी अगर अपना पार्टनर होता है, तो हम लोगों का माइंडसेट एक होना चाहिए एकदम एक, कि अगर एक आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वाले को बिना बताए पता चल जाए, इतना ज़्यादा माइंडसेट एक होना चाहिए। तो एक बार की तो ये चीज़ हुई नहीं सर, फिर हम केवन करते थे सर। केटू बस हमने ऐसे चलाना शुरू किया, लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम साथ में केटू चलाएंगे, बस ऐसे उतारा एक दिन केटू, वो सही चलने लगी। सही चलते चलते कंपटीशन करते करते एक एक्सपीरियंस मिलने लगा, और सर हमारा 3 साल के बाद मेडल पड़ना शुरू हुआ था।
0: पहला मेडल कब मिला आपको?
1: दिसंबर 2025 में
0: कौन सी
1: नेशनल
0: प्रतियोगिता
1: में
0: में?
1: आया था, खेलो इंडिया में।
0: खेलो इंडिया में, उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला
1: जी
0: 200
1: सर,
0: मीटर्स में।
1: जी सर,
0: तो जैसा कि आपने बताया, केटू में सबसे जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बना के रखना, क्योंकि घर में भी आप लोग साथ रहते हैं, तो घर में भी एक समन्वय बना के रखना पड़ता है, और खेल में भी आप लोग साथ हैं, तो इससे आपको एक सहयोग मिल जाता होगा, एक एडवांटेज मिल जाता होगा साथ में खेलने का, क्योंकि कोई और खिलाड़ी बाहर से आता, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता, तो आप समन्वय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग साथ रहती हैं। अब वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का, तो दोनों बहनें अब कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? आंचल आप बताइए।
2: दंगल मूवी का दंगल दंगल करके है।
0: ठीक है, आइए श्रोताओं सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
3: माँ के

0: दंगल फिल्म के इस प्यारे से गीत के बाद अब मैं भूमि आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्योकिंग और कैनोइंग, ये इस खेल के बारे में लोग कम जानते हैं और इस खेल में जो प्रशिक्षण के अवसर भी हैं प्रयागराज में कम है, बहुत कम खिलाड़ी होंगे, गिनती के खिलाड़ी होंगे जो आप लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो यहाँ कहाँ पे सीखती हैं, आपके कोच कौन है और कितनी सुविधाएं हैं, कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पे?
1: यहाँ पे हमारा बोट क्लब है प्रयागराज, जो ये केड़गंज चखंडी पे अपना सर, वहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया था। हमारे बोट में क्या होती है, जो यहाँ पे बोटें हैं वो कार्गो है,
0: कार्गो,
1: और जिससे हमारा कंपटीशन होता है वो नैलो है। और सर हमारा गेम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, हमारी केवल पैडल ही 50 से 60 हज़ार की आती है।

0: और बोर तो और ही ज़्यादा आती है, नए लोग नहीं आती है लैक्स टू लैक्स में। तो सर अपने पास नहीं है वो। सर हम 3 साल से यहाँ पे इसीलिए पीछे थे क्योंकि सर अपन यहाँ पे कार्गो चलाते थे, और वहाँ जाके नैलो एक बार की चीज़ अच्छी नहीं चलती जितना अपना कार्गो चल जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते थे। और सर यहाँ पे पैडल भी है लेकिन कम है, बच्चे अगर 50 है तो पैडल 10 है। तो सर अपने पास फैसिलिटीज़ भी कम थी, बस बच्चे मेहनत करते थे, मेहनत से भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते थे क्योंकि अपने गेम में डाइट भी बहुत ज़्यादा रहता था। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे घर पे रह के गेम करते हैं सर, वो उतना अच्छा डाइट तो ले सकते हैं सर, लेकिन जहाँ तक रिकवरी नहीं ले सकते सर। इसलिए गेम में थोड़ा सा अपने को रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सर फैसिलिटीज़ भी चाहिए।
1: तो आप लोगों को अभी डाइट रिकवरी या फिर जो प्रशिक्षण है वो कहाँ आप कर रही हैं अभी फिलहाल?
0: सर अभी तो हम भोपाल में कर रहे हैं, हमको 1 साल हो गया।
1: भोपाल
0: हाँ
1: में कहाँ?
0: भोपाल में जहांगीराबाद है अपना छोटा तालाब, वो मुख्यमंत्री आवास से पहले है, 1 किलोमीटर पहले, तो वहाँ पे छोटा तालाब है। और सर भोपाल में ये हमारे कैकिंग कैनोइंग का एक तरीके से हब है,
1: अच्छा
0: वहाँ के ऑल इंडिया के प्लेयर जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते अच्छा, वो हमारे क्लब पे आते हैं, मतलब भोपाल पे आके प्रैक्टिस करते हैं।
1: तो अभी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल रही
0: जी
1: हैं,
0: सर।
1: और जैसे आपने बताया कि यहाँ पैडल्स कम थे, आपको कार्गो बोट्स मिलती थी, वहाँ पे अलग बोट्स होती थी
0: नैलो बोट।
1: नैलो बोट्स, तो वहाँ पे वो बोट्स मिल रही
0: हाँ
1: हैं,
0: जी सर।
1: वहाँ पे आपको कोचेस भी अच्छे मिल रहे होंगे,
0: हाँ
1: सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होंगे।
0: वहाँ पे एक खुद का एसोसिएशन है।
1: अच्छा, ये एसोसिएशन है तो आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन की होंगी तो वो आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो आंचल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप पहली बार भोपाल में गई होंगी, आप लोग यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और ज़्यादा मेडल्स अचीव कर सकती हूँ?
2: सर एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जहाँ पे अभी प्रयागराज में गेम करते हैं सर, केवल हम ही बच्चे हैं सर, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो 50, लेकिन जहाँ सर हम भोपाल में आज प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सर कम से कम 500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कुछ जॉब वाली टीम है जैसे कि सर्विसेस है, SSB है, CRPF है, BSF है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं, और भोपाल में इंटरनेशनल कोचेस भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं।
1: वहाँ आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं और कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलेंगे तो आपके खेल में और निखार आएगा। तो इस मौके पर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे भूमि?
0: सर एक गाना है दिल ये जिद्दी है, क्योंकि सर एक खिलाड़ी का जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है, तो दिल ये जिद्दी है वो सुनना चाहते हैं।

0: इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आंचल और भूमि, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा आपके पिताजी से मिली। पिताजी ने आपको सबसे पहले स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एडमिशन कराया, आप लोग सीखने लगे गंगा जी के तट पे, वहां पे तैराकी में। उसके बाद आप लोग कायाकिंग और कैनोइंग में थे, तो और कहां से आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिला इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए?
1: सर, हमारे पिताजी के बाद तो हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने ही सब चीज़ किया। क्योंकि सर, अभी मैंने बताया कि हमारा गेम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और सर हम इतने कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, तो अभिषेक सर ने ही पूरा पूरा साथ दिया था। और सर, पेरेंट्स ने तो बस एक परमिशन दी है, बाकी पूरा गेम का हर चीज़ अभिषेक सर देख रहे हैं।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आंचल और भूमि, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, हम यही चाहते हैं कि आप न सिर्फ प्रयागराज उत्तर प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाएं और देश का नाम रोशन करें। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज इसमें अभी आपने सुना आंचल सोनकर और भूमि सोनकर से अभय कांत तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं रघुराज सिंह यादव और साथी। पहले सुनते हैं इनसे देवी गीत।

दई दयसी समाई माई माई दई दयसी समाई।

खड़क कैसी बुद्धि भय माता, अरे छत्री सुमन सूर्य वंशी, छत्री सुमन सूर्य वंशी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप लोकगीतों का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं रघुराज सिंह यादव और साथी। अब आइए सुनते हैं इनसे लाचारी।

रघुराज सिंह यादव और साथियों के गाए इस बारहमासा के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्र से नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय की भेंटवार्ता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि आज पूरा देश, पूरा विश्व महात्मा गांधी जी की जयंती को मना रहा है, और आज महात्मा गांधी जी के बारे में ही बात करने के लिए, उनके चिंतन के बारे में बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की एजुकेशन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरोज यादव जी को और एजुकेशन विभाग के ही प्रोफेसर डॉक्टर पतंजलि मिश्रा जी को, और हमारे साथ हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा जी। मैं सभी अतिथियों का आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
2: बिल्कुल, बहुत स्वागत आप दोनों का स्टूडियो में, अभिनंदन है आपका।
3: थैंक यू।
1: आज हमारा विषय है नेहा जी, महात्मा गांधी का चिंतन वर्तमान की कसौटी पर।
2: जी,
1: हम सब ने बचपन में गांधी को पढ़ा होगा, हम सबके अपने अपने हिस्से के गांधी हैं। कोई उनसे नफरत भी करता है, कोई उनसे प्यार भी करता है, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो पल कभी नहीं आएगा इस देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, जब आप महात्मा गांधी की शिक्षाओं को, उनके चिंतन को आप दरकिनार कर दें। सबसे पहले मैं डॉक्टर सरोज मैम के पास आऊंगा। मैम, आज पूरा विश्व एक तरह से देखा जाए तो अहिंसा में या पर्यावरण की चिंता में डूबा हुआ है। मैं सबसे पहले यही जानूंगा कि महात्मा गांधी अब हमें कितना याद आएंगे।

0: समस्याओं को देखते हुए?
1: देखिए, महात्मा गांधी जी को याद करना, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि हम अपने दैनिक व्यवहार के चीजों में उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को शामिल करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का विश्व अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं से गुजर रहा है। आज विश्व में हिंसा है, युद्ध हो रहे हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, पर्यावरणीय संकट है, सोशल टेंशन है और अविश्वास का वातावरण चारों तरफ तैयार हो रहा है। ऐसे में गांधी जी का चिंतन हमें केवल अतीत की स्मृति नहीं दिलाता है बल्कि वर्तमान के लिए एक नैतिक दिशा भी देता है। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि हमारे लिए जो साध्य है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको प्राप्त करने का साधन भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज जब सफलता को हम किसी भी कीमत पर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो हमें गांधी जी के सत्य, अहिंसा और नैतिक साधनों को भी समझना होगा। उनका सत्य बोलने का केवल बोलने तक सीमित नहीं था बल्कि उनके विचारों, वचन और उनके कार्यों में भी एक रूपता थी, और वो केवल कहते नहीं थे, अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में भी उसको दिखाई देते थे। और इस अनिश्चितता के इस दौर में हमें गांधी जी के चिंतन यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन हमें मानवीय गरिमा, सत्य, अहिंसा और न्याय जैसे जो हमारे वैल्यूज हैं वो अपनाने चाहिए। वो कभी अप्रासंगिक नहीं होते, आज के समय में भी वो बहुत रिलेवेंट है।
2: जी बिल्कुल, अभी जब आप कह रही थी डॉक्टर सरोज की गांधी जी ने जो भी काम किया वो किसी भी कीमत पे आज हम करना चाहते हैं और वो उनकी कीमत अलग थी। डॉक्टर पतंजलि, ये जो साधन की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं, गांधी जी ने हमेशा कहा कि आप किस कीमत पर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे आज़ादी हो या अपना अधिकार हो, आपके साधन पर, वो क्यों इस बात पर इतना जोर दिया करते थे?
3: देखिए, गांधी को यदि समझना है
2: जी
3: तो हम लोगों को उनकी दो रचनाओं को याद रखना होगा, एक तो हिंद स्वराज और दूसरा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ,
2: सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
3: सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इन दोनों पुस्तकों के अतिरिक्त यंग इंडिया के उनके कुछ लेख
2: जी।
3: गांधी बड़े अद्भुत व्यक्ति थे और गांधी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि गांधी असंभवों के समन्वय थे। बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजों को एक साथ अपने अंदर रखना और उनके बीच तारतम्य बनाए रखना, ये केवल और केवल गांधी ही कर सकते थे। गांधी में विचित्र किस्म का विरोधाभास भी था
2: जी।
3: यदि आप गांधी को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आज का जो संकट है, स्पेसिफिकली यदि हम बात करें कि इतनी सारी सूचनाएं हैं हमारे पास
2: जी,
3: लेकिन विश्वास नहीं है,
2: ये बात है।
3: और गांधी ने जो अपनी किताब 1909 में हिंद स्वराज लिखी उसमें वो कहते भी हैं, इस आधुनिक सभ्यता की बड़ी मुखर आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हमारी पराधीनता केवल राजनैतिक पराधीनता नहीं है, हमारी पराधीनता बहुत हद तक मानसिक पराधीनता भी। गांधी कहते हैं कि ये जो हमारे पास समस्याएं हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, चाहे संसाधनों के लिए संघर्ष हो या फिर सामाजिक अविश्वास हो, इन सब का समाधान गांधी सुझाते हैं, और वह समाधान अहिंसा में
2: जी,
3: वह समाधान सत्य में, वह समाधान संवेदना में, वह समाधान स्वराज में वो देखते हैं।
2: बिल्कुल दीपक जी, हम लोग 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हैं, अब जरा 100 साल पहले चलें, हमारा देश कैसा हुआ करता था, शायद बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी थाली में अन्न नहीं था, आज हमारी अलमारी में वस्त्रों की संख्या बहुत अधिक है, उस समय शायद 2 वस्त्र हर किसी के पास हो ये ज़रूरी नहीं था, है ना, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, आज लगभग लोगों के पास घर हैं। लेकिन उस समय जब ऐसे लोगों के पास जिनके पास सुविधाएँ नहीं थी उनको इकट्ठा करते हैं, उनके दिल में जगह बनाते हैं, और जबकि लोग ये कहते हैं कि गांधी जी की बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं थी जितनी कि हम आइंस्टीन की मान लेते हैं, जितनी कि ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की मान लेते हैं, तो फिर ऐसा क्या था कि लोग बरबस, उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो गांधीवाद में, गांधीपन से जुड़ जाते थे?
1: देखिए, जो नैतिकता थी वो गांधी जी में सत्यता के कारण थी। गांधी जी की शक्ति केवल राजनैतिक नेतृत्व से ही नहीं थी बल्कि उनके नैतिक बल, उनकी सत्यता, अहिंसा में थी। उनके लिए सत्य भाषण कोई विषय नहीं था बल्कि उनके जीवन जीने की एक क्रिया थी। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में उन्होंने ये सब

0: बताया भी है कि वे अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह से देखते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में हमेशा तैयार रहते थे। गांधी जी के जीवन में जो सत्य और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने आश्रम के जीवन में भी, वे अपने व्यक्तिगत आचरण में भी इसको शो करते थे। और 1915 में जब आश्रम में असत्य की बात हो रही थी, कुछ घटनाएं सामने आई थी, तब उन्होंने उपवास कर लिया था। आज जब हम सूचना तकनीकी की तरफ बढ़ रहे हैं और सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन हो गया है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे रोज कोई न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन हम उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन गांधी जी का नैतिक बल हमें ये प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है कि जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं उसका स्वयं पालन कर रहा हूँ या नहीं। यही गांधी जी के नैतिक बल की यही सबसे बड़ी कसौटी थी और वे आज के युवा वर्ग को इसे सीखने की आवश्यकता है।
1: आपने कहा कि गांधी जी का ये जो नैतिक बल है, वो कहीं ना कहीं उसका आधार, उसकी नींव, उनके अंदर जो सत्य का वास था, वो रहा। अब इस सत्य के प्रकाश से विंस्टर चर्चिल, ब्रितानिया हुकूमत के जो बादशाह थे, वो भी डरते थे। एक ऐसे बुजुर्ग जो हमारे भारत के हैं, गोलमेज सम्मेलन होता है और धोती पहन के जाते हैं, बाकी सारे सूट बूट टाई में सजे धजे, मतलब क्या इतना बल है पतंजलि जी कि उनके पीछे लोगों का भरोसा वो उस मेज पर बैठकर वो रखते हैं। और विंस्टर चर्चिल, जो कि खुद कहते उस समय कहते थे कि ब्रितानिया साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन उनसे वो घबराते थे। क्यों घबराते थे वो?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि आखिर गांधी में ऐसी क्या खास बात थी कि
1: मतलब बड़ा आदमी घबराता
2: हाँ क्यों घबराता था। ये सवाल, इसको समझने के लिए मैं यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का
1: जी
2: एक संदर्भ इस्तेमाल करूँगा, शायद उससे बात साफ होगी। उन्होंने लिखा कि क्राइस्ट फर्निश्ड द स्पिरिट एंड मोटिवेशन वाइल गांधी फर्निश्ड द मेथड। और गांधी ने जो तरीके अपनाए ना, वो तरीके सामने वाले को झकझोर देने वाले तरीके थे, और केवल संभव था गांधी के आत्मबल से। गांधी ने यह समझा कि सामूहिकता में बहुत बल है, गांधी ने यह बात समझा कि सत्य में बड़ी ताकत है, गांधी ने यह समझा कि अहिंसा के रास्ते भी हम ऐसे साम्राज्य को डुबो सकते हैं जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है। गांधी बड़े कमाल के आदमी थे। गांधी के लिए एक रूपक यदि मैं इस्तेमाल करूं तो गांधी इतिहास की दीवार पर टंगे कोई चित्र नहीं थे। गांधी एक ऐसा दर्पण थे जिसमें मानव सभ्यता अपने वर्तमान का चेहरा भी देख सकती थी।
1: आप कह रहे हैं कि वर्तमान का चेहरा हम देख सकते हैं, लेकिन खबरें ये भी आती हैं। हम कुछ आज के परिवेश से भी जुड़े सवाल पूछें। दीपक जी, आपने भी देखा होगा कि उनकी मूर्ति लगी रहती है और कुछ ऐसे लोग हैं जो आक्रोशित हो जाते हैं और अपशब्द भी कह देते हैं राष्ट्रपिता को।
2: देखिए
1: और वो शायद थोड़ा दिल दुखाने वाली बात होती है कि अब गांधी जी तरीकों की बात करते थे, शुद्धता की बात करते थे, और हम शायद अशुद्ध
2: देखिए
1: होकर
2: मैं बहुत अच्छी बात, एक मुझे कहीं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा किसी ने कि यदि आप गांधी की किसी बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको समझने का सहूर अभी आपको नहीं आया है। गांधी अपने आप में
1: जी
2: बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटर थे, बहुत बड़ा फलक था गांधी का। आपने साउथ अफ्रीका की चर्चा की,
3: जी
2: साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से निकाल कर गांधी को बाहर फेंक दिया गया तो जो गांधी ट्रेन से निकाल कर फेंके गए वो गांधी अलग थे, और जो उठ के खड़े हुए वो बिल्कुल अलग गांधी थे।
1: जी
2: और वो गांधी जब भारत लौट के आते हैं तो गोखले की सलाह पर पूरे देश का भ्रमण करते हैं, बनारस भी जाते हैं। बनारस जाकर वो देखते हैं कि इतनी गंदगी विश्वनाथ मंदिर के पास है। आज मैं सोचता हूँ कि गांधी होते और विश्वनाथ मंदिर को फिर से देखते दोबारा और
1: जी
2: वहाँ की साफ सफाई को देखते तो शायद गांधी का हृदय भर उठता। और गांधी, जहाँ से बात हमने शुरू की थी
1: जी जी
2: कि आखिर गांधी को क्यों नहीं समझा गया ठीक तरीके से। देखिए गांधी कभी नहीं कहते थे कि तुम मेरी बात पर सहमत हो। हमेशा गांधी का यह मानना था कि असहमति का अधिकार सबके पास है। आप हमसे असहमत होइए,
1: जी
2: बातचीत तो करिए,
1: क्या बात है
2: विमर्श के टेबल पर तो आइए।
1: जी
2: तो गांधी बहुत बड़े आदमी थे। गांधी को यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो

0: उनको समझने की कैपेसिटी अभी आप में आई नहीं है, वो पैदा करने की ज़रूरत है।
1: गांधी जी भारत लौटते हैं और आपने भी कहा, हम लोगों ने पढ़ा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के परामर्श पे वो पूरा भारत भ्रमण करते हैं। वो देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी बरतानिया हुकूमत को कैसे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। वो घर घर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं। उन्होंने नमक देखा कि यहाँ यही वो एक कुंजी है, ये एक वो तलवार है जिसको मैं चला सकता हूँ। एक ऐसी तलवार जिसमें पता नहीं कैसी धार है कि बरतानिया हुकूमत सच में उससे घबराती है। तो ये बताएं कि ये जो विजन था गांधी जी का कि नहीं, आप हर घर में सूत काता जाएगा, हर घर के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ये बात वो क्यों कहते हैं? क्या उनको लग रही थी कि इतनी बड़ी बरतानिया हुकूमत को झुकाने का ये प्रयास सबसे बड़ा साबित होने वाला है?
0: आपके सवाल के दो हिस्से हैं।
1: जी
0: सबसे पहले तो नमक आंदोलन, देखिए नमक आंदोलन बड़ा आंदोलन था गांधी का, और चंपारण में जो उन्होंने तीन काठिया
1: जी
0: आंदोलन था वो भी। देखिए नमक आंदोलन तो बहुत मैं क्लासिक आंदोलन मानता हूँ। उसका कारण ये है कि जब वहाँ समुद्र के किनारे गांधी ने केतली बैठाई और केतली से भाप निकला, तो ब्रिटानिया हुकूमत का गुरूर भी उस भाप में उड़ गया, और गांधी ने उस गुरूर को तोड़ा नमक बना करके, जो कि एक सरकारी फरमान था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं।
1: जी
0: उसी के साथ चंपारण में भी आप देखें तो गांधी ने तीन कठिया, कट्ठा एक जमीन का मापक होता है, 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी जरूरी हुआ करती थी, इंडिगो जिसको इंग्लिश में हम लोग
1: जी
0: कहते हैं,
1: जी
0: गांधी ने उसको भी तोड़ा। गांधी वो सारे भ्रम, वो सारे नियम जो कि जनता के विरुद्ध बनाए गए थे, उन सब के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब ब्रितानिया हुकूमत पर हमको निर्भर नहीं रहना है, हमको स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी अपनाने के लिए गांधी चरखे का सहारा लेते हैं, और चरखा क्या कमाल का रूपक है। जैसे आप हल देखते हैं
1: जी
0: तो आपको मेहनत कश लोग नज़र आते हैं, वैसे ही जब मैं चरखा देखता हूँ तो मुझे गांधी नज़र आते हैं। गांधी चरखे पर सूत काटते हैं, और वह केवल चरखे का सूत नहीं काटते हैं, उस सूत से वो आत्मनिर्भर भारत का सपना बुनते हैं। गांधी खादी को केवल वस्त्र ढकने का माध्यम नहीं बनाते हैं, गांधी खादी को भारत की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। और यह गांधी का विरोध, कई बार इसको हम लोग गांधी के मशीनीकरण के विरोध के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उस पर मेरी राय अलहदा है, थोड़ी जुदा है। लेकिन स्वदेशी का मतलब गांधी ये नहीं कहते थे कि पूरी दुनिया से आपको संबंध तोड़ लेना है। उनका मूल भाव था कि समाज के प्रति आप उत्तरदायी हों और आत्मनिर्भर बने, और गांधी ने चरखे का सूत कातना उस रूपक की तरह हम गांधी के इस चरखे को ले सकते हैं।
1: दीपक जी, जरा इस उत्तर में एक बात जरा देखें। आत्मनिर्भर बनाने की ये जो कोशिश थी,
0: जी
1: जो शायद हर दिन इंसान ये जो महसूस करता जा रहा था कि नमक भी हमारा होगा जी, जो परिधान पहनेंगे उसे भी हम स्वयं काटते, और शायद ये मनोबल जो छोटा छोटा, इसको कड़ी दर कड़ी देखें तो कैसे ये आज़ादी तक ले जाता है एक वो इंसान जो अभी उसके ख्वाब में भी नहीं है कि हम बैठ सकते हैं गद्दी पर। उसकी शुरुआत उन्होंने कैसे कहाँ से कर दी है, ये एक बड़ा आदमी समझ सकता है कि एक महिला को भी वो सिखाते हैं कि तुम भी आज़ाद हो सकती हो, तुम भी पढ़ सकती हो। ये एक बड़ी बात लगती है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर सरोज?
2: देखिए, गांधी जी का विचार था कि कोई भी हम नियम कानून बनाएं, वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के जो बहुत ही वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे अस्पृश्य हों, उन तक पहुंचे। स्वतंत्रता आंदोलन से लेके ग्राम स्वराज को देखिए, या सामाजिक समानता के लिए, स्वावलंबन के लिए, महिला सहभागिता के लिए, अस्पृश्यता के विरोध में जो उन्होंने काम किए, या सामुदायिक सद्भाव के लिए उनके जो चिंतन थे, उन्होंने भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और उनके विचार किसी निर्णय को लेते समय उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो कि सबसे पीछे है। यही अंत्योदय आंदोलन का भी यही प्रमुख आधार था। और आज हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वंचित वर्ग से हो, उसे शिक्षा का अधिकार मिले, उसे समाज में हम इंक्लूड करें। गांधी जी का चिंतन हमें विकास के साथ ये भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरणा देता है कि क्या विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

0: या नहीं। इसलिए भारतीय समाज में गांधी जी की प्रासंगिकता केवल हमें इतिहास तक नहीं सीमित रखनी चाहिए, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशन और मानवीय विकास के प्रश्नों में भी इसको हमें शामिल करना चाहिए।
1: डॉक्टर सरोज, आपने गांधी जी के विचारों को बताया कि उन्होंने समाज के हर पहलू के बारे में बात की, और आज भी हम देखते हैं, अगर मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बात की जाए तो नीति नियंता हमारे जब भी पॉलिसी बनाते हैं तो गांधी जी का वो जंतर जो है, जो उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी की पहली पुस्तक पहले पेज पे ही वो लिखा हुआ है कि जब भी आप नीति बनाएं, पॉलिसी बनाएं, हमेशा उस व्यक्ति का ध्यान रखिए जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है
2: जी।
1: मैं डॉक्टर सरोज मैम और डॉक्टर पतंजलि सर, आपसे दोनों लोग से जानना चाहता हूँ, 2 अक्टूबर आज के दिन जो है पूरा देश गांधी जयंती को मना रहा है, हम स्वच्छ भारत भी मना रहे हैं
2: जी।
1: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत का एक नारा दिया था, जो फ्रेम जो था वो गांधी जी के चश्मे को बनाया गया था, ये यूँ कहे कि वो गांधी जी के विचारों से ही ये प्रेरित हुआ था। इस देश में जहाँ इतनी गरीबी है और हम अक्सर देखते हैं कि स्वच्छता को लेकर हम उतने जागरूक नहीं हैं, तो मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के जो चिंतन है, जो उनकी बातें हैं, वो स्वच्छता के प्रति हमारे एटीट्यूड में किस तरह परिवर्तन ला सकती हैं, समाज को किस तरह परिवर्तित कर सकती हैं।
0: देखिए, गांधी जी के लिए स्वच्छता का ये केवल मायने नहीं था कि परिवेश स्वच्छ रहे, परिवेश स्वच्छ रहे, सड़कें, गलियां, मोहल्ले, हमारा घर स्वच्छ रहे, इसके साथ साथ हमारे विचारों में भी, हमारे आचरण में भी स्वच्छता रहे। उनका मानना था कि स्वच्छ समाज का निर्माण केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। आज हम स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी स्वच्छता माह मनाया जा रहा है, हॉस्टल्स में इनमेट्स जो हैं वो सफाई करने में लगे हैं, और ऐसे समय में हम गांधी जी का विचार हमें व्यवहार परिवर्तन और हमें नागरिक के रूप में जो जिम्मेदारी है उसके प्रति सजग करता है। और गांधी जी का स्वच्छता संबंधी चिंतन 3 बातों पे था कि स्वच्छ शरीर हो, स्वच्छ परिवेश हो, स्वच्छ विचार और आचरण हो।
2: क्या बात है।
3: देखिए, गांधी के स्वच्छता का जो गांधी का फ्रेम था उसको मैं 1901 के कलकत्ता अधिवेशन से जोड़ना चाहूँगा। 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें गांधी पहली बार देखते हैं भारतीय परिदृश्य में, और गांधी वहाँ जब जाते हैं तो गांधी वहाँ शौचालयों की स्थिति देख के बड़े दुखी होते हैं और वो खुद संकल्प लेते हैं और खुद शौचालय साफ करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ के स्वयंसेवकों से कहा तो उन्होंने अनिच्छा जताई और गांधी ने स्वयं साफ किया, और यह बात उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस बात का उल्लेख भी करते हैं। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति देश की स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहा था वो व्यक्ति शौचालय की सफाई में जो उसका कर्तव्य था उसमें भी हिस्सा बटा रहा था।
2: ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हर काम में वो हिस्सा बटाते रहे हैं, और शायद यही जीवन का उनका फलसफा है।
3: बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में श्रम की गरिमा को स्थापित किया
2: जी।
3: हम मानते हैं कि वही नौकरी सबसे बढ़िया है जिसमें हमारा कॉलर वाइट रहे, सुबह हम जाएं और शाम को लौट के आए तो
2: जी
3: हमारा कॉलर एकदम सफ़ेद रहे। गांधी खुद जुटते थे, खुद कहते थे, और गांधी संदर्भ में बहुत बड़े समर्थक थे। कई बार हम लोग गांधी को तकनीक विरोधी मानने का भ्रम हमारे मन में होता है। गांधी चाहते थे कि ये साफ सफाई, ये मैला ढोने का काम जो जिसके आधार पर हमने कुछ जातियों को अस्पृश्य घोषित कर रखा है, उन जातियों के लिए गांधी बड़ी मजबूती से खड़े होते हैं, और गांधी कहते हैं कि सब अपना शौचालय स्वयं साफ करें, और खुद वो एक मॉडल के रूप में आते हैं, और बाद में चल करके यह मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने देखा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि देश को स्वच्छ करना है, और उसका परिणाम हम देखते हैं। भारतीय रेलवे जिस तरह से, भारतीय रेलवे के स्टेशन पर जिस तरह से मानव मल भरा रहता था, और आज आप जाके देखें
2: हालात बदले हैं,
1: लोगों में सर एक एटीट्यूड भी बदला है।
2: बिल्कुल,
1: जो बात गांधी जी कह गए उसको धीरे धीरे जो है
2: अमल में ला रहे हैं,
3: और 50 करोड़ शौचालय सरकार ने बनवाए। लोग, आखिर गांधी का सपना साकार हो रहा था
1: जी।
3: ये संजोग की बात थी कि गांधी गुजरात से थे और प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, तो

0: ये संयोग भी कि एक गुजराती ने दूसरे गुजराती के स्वप्न को साकार किया जिसने भारत की तस्वीर बदली।
1: जी
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इस तरह से भी इस विषय को देखने की आवश्यकता है।
2: जी, एक और बात मुझे लगती है कि शायद गांधी जी इस बात को जानते थे कि अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी और जहन की सफाई रहेगी तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना भला स्वयं सोच सकेंगे। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे, चारों ओर गंदगी रहेगी और दिमागी में भी गंदगी पनपती रहेगी, तो कहाँ से हम एक सुंदर स्वप्न, सुंदर भारत का निर्माण कर सकेंगे? मुझे लगता है कि जब वो चिंतन करते रहे होंगे बैठ करके अपने कमरे में, जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वो साबरमती उस स्थान को भी कहते हैं, जब उस कक्ष में मेरा एक बार जाना हुआ दीपक
1: जी
2: जी, आज भी उस शांति को व्यक्ति महसूस कर सकते हैं। उनका चरखा रखा हुआ है, लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उनका ये जो विज़न है कि आसपास हम स्वयं सफाई करें और अपने जहन को भी सही रखें, तो शायद इस दम पर अगर बरतानिया हुकूमत झुक सकती है तो हम विश्व गुरु तो रहे ही हैं। वो दृश्य फिर से हम देखेंगे, है कि नहीं ऐसा?
1: जी नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि गांधी जी जो है उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को जो है झुकाया, उनको मजबूर किया और उनको नैतिक तौर पे पराजित भी किया। समय का इशारा ये हो रहा है कि हमारा समय जो है अब ख़त्म होने को है।
2: जी
1: हालांकि महात्मा गांधी के विचार और उन पे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अंत में
2: जी
1: मैं जो है डॉक्टर सरोज मैम और डॉक्टर पतंजलि सर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में आप लोगों लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय का मेरा मानना है कि शिक्षक जो है वो केवल विद्यार्थी को एक दिशा नहीं देता, वो पूरे समाज की एक दिशा को तय करता है। आज महात्मा गांधी की जयंती पर मैं आप दोनों से चाहता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए उन संदेशों को बताइए जो महात्मा गांधी के, जो हमें अपने जीवन में, हमारे समाज को अपने जीवन में उतारने चाहिए।
2: जी हमें महात्मा गांधी को केवल एक व्यक्ति के रूप में याद नहीं रखना है, उनके चश्मे, उनके खादी और लाठी के रूप में याद नहीं रखना है, बल्कि हमें अपने विद्यार्थियों को ये भी सिखाना है कि उनके जो मूल्य थे, उनके जो आदर्श थे, उनको अपने जीवन में हम उतार सकें। उनके किसी एक आदर्श को भी हम अपने जीवन में उतार सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम समाज को बहुत अच्छा योगदान दे सकेंगे।
0: देखिए, गांधी को केवल इतिहास की तस्वीरों में, इमारतों में, स्मारकों में तो याद रखना ज़रूरी है ही, लेकिन गांधी को सही अर्थों में, यदि गांधी को हम चाहते हैं कि गांधी को ठीक से समझें, तो गांधी ने जो कहा उस पर भी हमको अमल करना होगा। गांधी केवल इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज हैं, वो हमारे सामने बहुत सारे नैतिक प्रश्न रखते हैं। क्या हम सत्य के पक्ष में तभी तक हैं जब सत्य हमारे पक्ष में है, या हम तब भी जबकि अन्याय हमारे सामने बहुत बड़ा होकर खड़ा है, क्या तब भी हम सत्य के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? यदि हम यह समझते हैं तो ही मुझे लगता है कि गांधी के सपनों का भारत हम बना पाएंगे, और तभी हमें लगता है कि गांधी को हम सही अर्थों में अपने जीवन में, अपने समाज में उतार पाएंगे।
2: बिल्कुल ठीक, आप ये जो बात कह रहे हैं कि गांधी जी इतिहास के पन्नों में सिर्फ दर्ज ना रहे, मैं तो कह रही हूँ, मैंने नन्हे बच्चों को देखा है जब वो नोट देखते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए। मेरा बेटा भी पूछता है कि मम्मा ये बापू है ना, जहन में दर्ज है वो, और आज की पीढ़ियों, न जाने कितनी पीढ़ियाँ उनको संजोएंगी, गांधी बनना चाहेंगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ, ये देश गांधी का है, ये देश पटेल का है, ये देश नेहरू का है, ये देश सरोजनी नायडू का है, देश हम सभी का है। तो हम सभी क्यों ना मिल करके, वो जो वो बात कहते थे कि हाथ बढ़ाइए, हर काम हर व्यक्ति करे, तो न जाने हम कितनी दूर एक छोटे से समय में पहुंच जाएंगे। तो ये तो आज की बातचीत में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ये अवसर दीपक जी ने दिया।
1: धन्यवाद नेहा जी और डॉक्टर सरोज मैम, डॉक्टर पतंजलि सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और महात्मा गांधी के विभिन्न पहलुओं पर आपने बात की, उनके अनेक बातों को आपने जो है विस्तार से समझाया कि और सत्य और साधन की बात की। मैं अपनी तरफ से ये बात कहते हुए कार्यक्रम को जो है समाप्ति की तरफ ले जाता हूँ। डॉक्टर सरोज मैम, आपने पहले ही सवाल में बोला कि गांधी जी साधन और साध्य दोनों को पवित्र मानते थे, और आज हमारे युवा पीढ़ी को यही सीखना चाहिए कि लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए

0: ये जो हमारा साधन है उसकी भी पवित्रता रखनी होगी।
1: बिल्कुल, और ये पवित्रता हम बनाए रखेंगे और अगर भटकेंगे तो फिर से लौटेंगे, फिर से पढ़ेंगे, प्रेरणा लेंगे। जो आप कह रहे थे कि उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, तो हम भी इतना साहस रखेंगे कि हम फिर से अपनी गलतियों को देखेंगे और सभी से प्रेरणा लेंगे और सबको एक साथ ले चलेंगे। तो इसी के साथ एक साथ ले चलते हैं स्वच्छता की ओर, जहन की भी और जो हमारी परिस्थितियां हैं उसकी ओर भी। और इस कार्यक्रम में आप दोनों आए, बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद दीपक जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्र से नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय की भेंटवार्ता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।
5: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, प्रस्तुत कर रही हैं पूजा यादव।
1: आप सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हैं, पॉपकॉर्न की महक है, लाइट्स डिम हो चुकी है और स्क्रीन पर नेशनल एंथम के बाद एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर बार ये मैजिकल फील लेने के लिए आप फ्राइडे का ही वेट क्यों करते हैं? ऐसा क्या राज छुपा है शुक्रवार के दिन में कि करोड़ों रुपए का बिजनेस, लाखों फैंस का क्रेज और बड़े बड़े सुपरस्टार्स की किस्मत सब इस दिन पर आकर टिक जाती है? क्या ये महज एक रिवाज है या कोई सॉलिड बिजनेस माइंडसेट, या इसके पीछे छुपा है ऐसा कोई राज जिसे बॉलीवुड आज तक छुपाया आया है? आइए उठाते हैं पर्दा इस शुक्रवार के राज से। हाय, इट्स मी पूजा यादव और आप सुन रहे हैं यूथ एक्सप्रेस।

0: फ्राइडे रिलीज की कहानी शुरू होती है 1940 के अमेरिका से। उस दौर में फ्राइडे को वर्कर्स को उनकी हफ्ते भर की सैलरी मिलती थी। हॉलीवुड ने देखा कि पॉकेट में कैश होते ही लोग फ्राइडे नाइट को सिनेमा घरों की तरफ भागते हैं। बॉलीवुड ने भी इसी फॉर्मूले को 1950 में पकड़ा और 1960 की आइकॉनिक मूवी मुगले आजम को फ्राइडे को लॉन्च करके इस रूल पर मुहर लगा दी। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मूव है फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन। शुक्रवार को पहला शो चलता है, सैटरडे को दोस्तों में तारीफ फैलती है और संडे तक थिएटर हाउस फुल। मतलब पहले तीन दिन में ही प्रोड्यूसर्स अपनी लागत का बड़ा हिस्सा वसूल कर लेते हैं। बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स फ्राइडे द 13 को अलग ही मानते हैं। वैसे इस दिन फिल्म रिलीज करने से वो डरते हैं। और वहीं बात करें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे थर्सडे रिलीज काफी पॉपुलर है क्योंकि इसे लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है ताकि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हो सके।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

पता है फ्राइडे को सिर्फ आप और मैं वीकेंड के सपने नहीं देखते हैं, बल्कि बी टाउन के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की धड़कने भी फ्राइडे को ही फास्ट होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म पठान फ्राइडे को आ ही नहीं थी? तो ऐसा क्या हुआ कि फ्राइडे का नियम टूट गया? जानने के लिए सुनते रहिए यूथ एक्सप्रेस।

अब बात करते हैं उन बड़ी फिल्मों की जो फ्राइडे को रिलीज नहीं हुई। उसमें सबसे पहले हैं हमारे एसआर की यानी पठान 2023। ये फिल्म वेडनेसडे को 25 जनवरी को रिलीज हुई थी ताकि 26 जनवरी के नेशनल हॉलीडे का पूरा फायदा मिल सके। वहीं हमारे भाईजान सुल्तान 2016, सलमान खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म ईद के मौके पर वेडनेसडे यानी 6 जुलाई को रिलीज हुई थी। और एक था टाइगर 2012, ये फिल्म इंडिपेंडेंस के दिन वेडनेसडे यानी 15 अगस्त को रिलीज की गई थी। और फिर आते हैं हमारे रणवीर सिंह गली बॉय 2019, ये फिल्म वेडनेसडे के मौके पर थर्सडे यानी 14 फरवरी को रिलीज की गई थी। इतनी सुपरस्टार्स की बात हो गई, मतलब हमारे अक्षय पाजी कैसे पीछे रह सकते हैं भाई। अब बात होगी मिशन मंगल 2019, अक्षय कुमार की ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे पर थर्सडे यानी 15 अगस्त को रिलीज की गई थी। और फिर भरत 2019, ईद के मौके पर ये मूवी वेडनेसडे 5 जून को रिलीज की गई थी। एंड रोमांटिक फिल्म जब तक है जान 2012, ये फिल्म दिवाली के मौके पर ट्यूजडे 13 नवंबर को रिलीज की गई थी। तो बहुत बारी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स फ्राइडे का वेट नहीं करते हैं मूवी रिलीज के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप फ्राइडे का वेट बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि भाई फ्राइडे को होता है हमारा यूथ एक्सप्रेस।

हमने बहुत सारी बातें कर ली फिल्मी रिलीज की, उसके पीछे कहानी की, लेकिन जाते जाते अब क्यों ना थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश किया जाए और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की बात की जाए। सो द मिडनाइट पायनियर शोले फैक्ट, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर शोले 15 अगस्त फ्राइडे को रिलीज हुई थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसकी पहली स्क्रीनिंग थर्सडे और फ्राइडे की मिडनाइट रात 12 बजे रखी गई थी, जहां से मिडनाइट प्रीमियम का क्रेज शुरू हुआ। द वेडनेसडे मैजिक, पठान और सुल्तान, रिकॉर्ड्स कहते हैं कि मिड वीक बुधवार रिलीज होने वाली मूवीज का फिफ्थ डे एक्सटेंड वीकेंड नॉर्मल थर्ड डे वीकेंड से 40% ज्यादा कमाई करता है। द एंटी फ्राइडे रूल, द ओटीटी एरा, अब वेब सीरीज और डिजिटल मूवीज हमेशा फ्राइडे को नहीं आती, आमतौर पर थर्सडे नाइट को कंटेंट ड्रॉप करते हैं ताकि बिंज वॉचर्स पूरी रात बिंज कर सकें।

आज का शो सुन के आई एम मेक श्योर कि आप भी श्योर हो गए हैं कि हमारी यूथ एक्सप्रेस की यूएसपी है समथिंग क्रिएटिव समथिंग यूनिक, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम कुछ बेहतर लेकर आए आपके लिए। इतना सारा प्यार आपका हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ यूं ही और सुनते रहिए यूथ एक्सप्रेस।

0: तो ये था युवाओं के लिए कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, प्रस्तुत कर रही थी पूजा यादव। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति

0: ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, आईएनए, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Mashar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smith Machar has been transferred to Abu Dhabi. The Saudi press agency, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. According to SBA,

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी आप सुनेंगे रात 10 बजे। गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं भक्ति संगीत कार्यक्रम का गांधी स्तुति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली से सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे 3:30 बजे से। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन आप सुनेंगे 12:15 बजे। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। 1:15 पर बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में सुनेंगी विशेष रूपक हिंद स्वराज, स्वर नेहा गुप्ता और आशुतोष सुंदरम का होगा। NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए 2:30 बजे। 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी। इसमें हम आपको सुनवाएंगे मेघना मिश्रा

की वार्ता गांधी एक सोच। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अनिल कुमार यादव की वार्ता गांधी और शास्त्री शांति सद्भाव। 7:31 पर परिचर्चा सुनवाई जाएगी भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी दर्शन। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आकांक्षा पाल के गाए भजन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। रात 8 बजे सुनिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता। इस विषय पर डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्र से नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय की भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे, इसका पुनः प्रसारण। रात 8:30 अक्षयवट कार्यक्रम होगा जिसमें सुनिएगा चित्रगुप्त श्रीवास्तव से विनय श्रीवास्तव की बातचीत, वृद्धावस्था और सामाजिक जीवन। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9:30। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। रामरति पत्नी दीनबंधु सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री कासिया दिनांक 12 सितंबर 2026 से लापता हैं। इनकी आयु है 17 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9795631715। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग हिंडोल सारंग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग हिंडोल सारंग में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुने, हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं। तो राजेंद्र जी ने गुटनी गुंडा प्रतापगढ़ से हमें कॉल की है। तो राजेंद्र जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: उससे पहले आपको पूरे आकाशवाणी की परिवार के साथ साथ सभी देशवासियों को गांधी जयंती के ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत
0: जी जी जी बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उन्हें भी और उनके किए गए कार्यों को भी, उनकी देशभक्ति को, उनकी सादगी को हमें कभी नहीं भूलना है।
1: जी जी बहुत बड़ा योगदान था।
0: बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान था। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है जागृता।
0: अच्छा, उसका कौन सा गीत है।
1: दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, अवर मत के संत तूने कर दिया कमाल, धीम भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, अवर मत के संत तूने कर दिया कमाल।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
2: आदरणीय मधु दीदी जी को सादर सब प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप।
2: बिल्कुल ठीक है दीदी, राजू लबानिया बोल रहा हूँ आगरा उत्तर प्रदेश
0: जी
2: से।
0: जी राजू जी बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे और आगरा से अक्सर इनका कॉल आता रहता है अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए। तो राजू जी आज आपने कौन सा गाना चुना है।
2: गाने के बोल हैं, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल,
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
2: कर दिया कमाल, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। तो
0: दे दी हमें आजादी, ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हुआ था।
2: जी बिल्कुल, आजादी के समय का बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना गाना है
0: जी,
2: आशा जी ने गाया है इसको।
0: बिल्कुल आपकी पसंद का जो गाना है उसे हम जरूर सुनवाएंगे। और आपको किसी के नाम तो नहीं लेने हैं।
2: पूरी आकाशवाणी प्रयाग राज की टीम है हमारी दीदी सहित और सभी श्रोताओं के लिए।
0: जी, तो आपकी पसंद का ये गाना जिसकी फरमाइश हमारे एक और श्रोता है,
2: देखिए दीदी मेरा मानना ये है कि हम 4 या 6 या 10 नाम लें उससे अच्छा तो कोई हमारे अंदर शुभ विचार हो उसको रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता।
0: जी जी जी बिल्कुल आपने सही कहा है। और आपने जिस गीत की फरमाइश की, हमारे एक और श्रोता है उन्होंने भी इस गीत की फरमाइश की है, तो आप दोनों को हम सुनवाने जा रहे हैं ये गीत। लीजिए सुनिए।
2: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी कला बंधुकरा पवन निषाद बोल रहा मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: याराना फिल्म का
0: गाने के बोल बताइए।
1: तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना।
0: कहाँ ऐसा याराना, अमिताभ बच्चन की ये फिल्म थी।
1: जी मैम।
0: तो आपकी इस पसंद के गाने को सुनवाने से पहले किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते आप।
1: लेना है शारदा
0: जी बताइए।
1: प्रसाद प्रजापति हैं, महेंद्र कुशवाहा हैं, प्रेमचंद यादव, महेंद्र यादव, राजेंद्र जी हैं वहाँ प्रतापगढ़ के। हाँ,
0: जी,
1: नितेश आर्या।
0: आपको सुनवाते हैं याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी बहन प्रणाम।
0: नमस्कार।
1: तो ग्राम पपूका श्रीराम पडेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: लगे रहो मुन्ना भाई का
0: जी
1: सुना दे।
0: जी जी, आज गांधी जयंती के अवसर पर आपने जिस गीत को पसंद किया है उसे हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: जी सुशील कुमार बात कर रहा हूँ दीदी, प्रतापगढ़ जिले से, इंद्रा जबलपुर।
1: जी सुशील जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: जी मुझे स्वदेश फिल्म का गीत सुनना है दीदी, ये तारा वो तारा।
1: ये शाहरुख खान की फिल्म थी
0: जी,
1: बहुत बहुत फिल्म बहुत अच्छी थी। देखिए उसमें ये दिखाया भी गया है कि जो बाहर बसे हुए भारतीय हैं वो अपने भारत के लिए क्या कर सकते हैं, कितने अपने एफर्ट डाल सकते हैं
0: और कितने कितने मुश्किलों से गुजरते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत संदेशात्मक फिल्म थी। आपने इस फिल्म का जो गाना पसंद किया है इसे हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, तो चलिए सुनिए अपनी पसंद का स्वदेश फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम, मेरा नाम रतन टाटा है। फिल्म
0: जी बोलिए, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: का गाना सुनना चाहता हूँ।
0: उपकार फिल्म का गाना तो आपने सुनना है, उसके बोल भी बता दीजिए।
1: मेरे देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती।
0: मेरे देश की धरती, बहुत देशभक्ति गाना आपको पसंद है। चलिए, अच्छी बात है कि आपने उपकार फिल्म के गाने की जो फरमाइश की है उसे रतन जी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आइए सुन लें।

अभी आप सुन रहे थे अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरेसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एन मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद है। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smith Machar has been transferred to Abu Dhabi, UAE. The Saudi press agency SPA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian Embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SPA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday, with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. At 5:40 p.m., passengers continued their journey on a replacement Fly Dubai aircraft, while the crew returned to Dubai on a separate flight. The nation is paying homage today to two great leaders, the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital this morning. President Draupadi Murmu attended the Sabha and paid floral tributes to the father of the nation. President Draupadi Murmu also paid homage to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat this morning. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla,

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ तालीमी इदारे, सियासी और समाजी तंजीमें रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम कर रही हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर रियासत के लोगों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई और अदम तशद्दुद के जरिए महात्मा गांधी की क़यादत में आज़ादी की जद्दोजहद आलमी तारीख में एक मुतासिर कुन मिसाल है। इस मौके पर वजीर आला ने साफ सफाई, खादी और खुद इन्हसारी पर जोर दिया।
1: हर नागरिक स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, हर नागरिक स्वदेशी को अपने जीवन का मंत्र बनाए, हर व्यक्ति को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के लिए आत्मनिर्भर हर परिवार हो, इसके लिए जो बापू के उस समय के वचन थे वो आज भी एक मंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। पूज्य बापू के नेतृत्व संभालते ही या उनके मार्गदर्शन में ही भारतीय समाज अपनी स्वाधीनता की एक नई सुबह को देखने के लिए उत्साह के साथ उस आंदोलन का हिस्सा बन गया।
0: गांधी जयंती पर आज मुल्क भर में खुसूसी ग्राम सभा का इनेकाद किया जा रहा है। इन मीटिंगों में देही भारत में पंचायती राज को मजबूत बनाने, अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और देही ज़िंदगी के मेयार को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले इंतज़ामी असलाहत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक इन ग्राम सभा के साथ साथ अवामी मनसूबाबंदी मुहिम, सबकी योजना सबका विकास भी शुरू किया जाएगा। इस मुहिम के तहत ग्राम पंचायतें अवामी शराकत

0: और हकायक की बुनियाद पर माली साल 2027-28 के लिए अपने तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगी। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए महकमा सेहत के साथ तमाम मुतालिका महकमों और आम लोगों की इज्तिमाई शिरकत ज़रूरी है। सफाई, आगाही और बरवक्त बीमारी की निशानदही के ज़रिए मुतअद्दी बीमारियों पर मुअस्सर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। जनाब पाठक लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खसूसी मवासलाती बीमारी कंट्रोल मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब कर रहे थे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में यकुम से 31 अक्टूबर तक खसूसी मुतअद्दी बीमारी कंट्रोल मुहिम चलाई जाएगी और 12 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका सफ़र अवामी खिदमत के ज़रिए कौम की खिदमत के मंत्र से मुतासिर है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के इस विज़न के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ की सिमत में काम कर रही है। इस खसूसी सीरीज़ में हम इस बात पर बात करेंगे कि नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल जैसी यादगारों की तामीर के ज़रिए इस विज़न को कैसे अमली शक्ल दी गई है।
1: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
2: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहाँ पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पैदाइश और मौत का रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट कल से नाफिज हो गया है। ये एक्ट पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1979 में तरमीम करता है। इस एक्ट का मकसद पैदाइश और अमवात के इंदराज में ताखीर को रोकना और लोगों को बरवक्त इंदराज करने की तरगीब देना है। एक्ट ये फराहम करता है कि अगर किसी पैदाइश या मौत की इत्तला रजिस्ट्रार को एक साल से ज़्यादा पहले लेकिन 2 साल के अंदर दी जाती है तो उसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही रजिस्टर किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने चीनी ताजिरों के लिए ज़खीरा करने की मुद्दत को कम करके 15 दिन कर दिया है जो 15 अक्टूबर से लागू होगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहने अपना कार्यक्रम सुने गृह लक्ष्मी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली प्यारी सखियों को हमारा यानी हेम श्रीवास्तव का
1: और प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार।
0: सखियों, आज का दिन हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज हम दो महान संदेशों को अपने कार्यक्रम में समेट रहे हैं
1: जी।
0: कौन कौन से, प्रीति बताओगे?
1: दीदी, पहला तो आज का दिन जिनके लिए जाना जाता है और जो उनका संदेश है अहिंसा का संदेश,
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा भी उतना ही खूबसूरत है, सादगी ईमानदारी का जीवन दर्शन,
0: बिल्कुल।
1: इन दोनों बातों को आज हम समेट रहे हैं।
0: तो वे 2 अक्टूबर का दिन हमें दो महान व्यक्तियों की याद दिलाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी।
1: वैसे दीदी, जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो लगता है कि उन्होंने सिर्फ ना हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिखाया सत्य और अहिंसा का, जिस पर चलना गौरवपूर्ण है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हो, उन्होंने ये रास्ता दिखाया और उनका कहना था
1: जी
0: कि

0: सादगी, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और देश सेवा का जो अद्भुत उदाहरण अगर प्रस्तुत करना है तो आप अपने जीवन में उसे सार्थक कीजिए।
1: बिल्कुल सही कह रही दीदी। और जिनकी जिन दो महान विभूतियों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब लगता है कि उनका नाम भी लें तो कितनी बार प्रणाम करें,
0: प्रणाम करें।
1: तब जब राष्ट्रपिता की हम बात कर रहे हैं, जब हम अपने परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, आज पूरा परिवार उनको अपना हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं,
0: हमारी गृहलक्ष्मी परिवार की तरफ से हम लोग भी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर हम लोग चलें तो अपना जीवन जो है बहुत अच्छी तरीके से सार्थक रूप से जी सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी हम ये संदेश दे सकते हैं, है ना?
1: वैसे दीदी, जब उन्होंने ये संदेश दिया अहिंसा का, तब तो उसके कई मायने थे, पर आज का मायने अगर हम आज कहें तो अहिंसा का अर्थ आप कैसे समझाएंगे हमें?
0: भाई देखो, लोग सोचते हैं कि अहिंसा का अर्थ केवल लड़ाई झगड़ा है, तो ये बिल्कुल नहीं है।
1: मतलब हाँ, उससे दूर रहना
0: दूर
1: नहीं है।
0: हाँ भाई, अहिंसा हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा, हमारे विचारों में दिखाई देनी चाहिए।
1: जी
0: भाई, किसी को अपशब्द ना कहें, गुस्से में किसी को चोट ना पहुंचाएं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, जैसे आप चाहते हैं ना कि हमारा सम्मान हो, वैसे दूसरी की भावनाओं का भी करें। गलती होने पर तुरंत क्षमा कर जो माफी मांग लें,
1: हाँ।
0: और ये सॉरी या माफ कर दीजिए एक ऐसा शब्द है जो आपके मन को छू जाता है और आप फिर जो है नए सिरे से अपना जीवन जीने लगते हैं, और यही अहिंसा का सही रूप है।
1: यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझें कि भाई अगर हम अपने आज के जीवन में कैसे उसको उतार सकते हैं, जैसा कि हेम दीदी ने बताया ना, बस वही छोटे छोटे काम करने हैं और आपस के प्रेम को, आपस के प्यार को बनाए रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दीदी, जब आजकल हम ये देख रहे हैं, आजकल का समय ऐसा हो गया है कि हम लोग बाकी चीजों में तो बहुत समय दे देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव कर देते हैं। ऐसे समय में ये जो बातें आपने कही ना, छोटी छोटी बातें जो अहिंसा की बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को अपना कर हम आपस के रिश्ते बहुत सुधार सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारे रिश्ते सही रहेंगे तो हमारा समाज सही रहेगा।
1: सही,
0: भाई परिवार से ही तो शुरू होता है और समाज से फिर राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र जब बनेगा तो एक अच्छा, एक स्वस्थ जो वातावरण होगा और हम उसमें अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे। और बात जब हम दोनों महान विभूतियों की कर रहे हैं, तो भाई इनके बारे में ये भी बता दें कि उनका मानना था अहिंसा केवल एक हथियार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शक्ति है। आज के समय में जैसा कि प्रीति ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, तो भाई तब ये अहिंसा का संदेश हमें अपने परिवारों में देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और जब बात करें हम लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो भाई उनका जीवन जो एकदम सरल था, उनके अंदर बिल्कुल दिखावा नहीं था, और वही वो चाहते भी थे कि लोगों के अंदर दिखावा ना हो बल्कि अच्छे चरित्र को वो प्रदर्शित करें।
1: जी।
0: और जो है जब ये अच्छे चरित्र को प्रदर्शित करेंगे तो सामने जितने भी धन दौलत है वो दूर हो जाएगी और जो सामने वाला है ना, आपसे प्रेरित होके, प्रेरणा पाकर आगे अपना जीवन सफल बना लेगा।
1: बिल्कुल ठीक कह रही दीदी। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ।
0: भाई देखो, इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी भाग लिया था, क्योंकि वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर
1: चलना
0: चल रहे
1: थे
0: जी। और उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया कि अहिंसा ही परमो धर्म लेकर चलें और ऐसा व्यवहार अपने जो है उसमें लाएं और लोगों को सामने प्रस्तुत करें।
1: और देखिए ना दीदी, वो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया और उन्होंने देश को आजाद होते हुए भी देखा और समय आने पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उनका नेतृत्व इतना बढ़िया था कि उनके दिए हुए संदेश को आज भी हम अपने दिल में संजो के रखते हैं।
0: और उनका एक नारा था
1: वही
0: जय जवान जय किसान।
1: जी,
0: तो भाई जय जवान और जय किसान, उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं
1: जी,
0: एक जो सीमा पर लड़ रहे जवान हैं और एक जो खेतों में अनाज बोते हुए
1: किसान है।
0: तो भाई दोनों को उन्होंने रखा और यही नारा दिया, जय जवान और जय किसान।
1: वैसे दीदी, देखिए हम दोनों के ऋणी हैं। अगर जो सेना है, जो हमारे जो सैनिक हैं, उनके लिए भी हमारे लिए हमारे मन में उतना ही आदर है और हम उनके लिए भी उतना ही गौरवान्वित होते हैं जितना कि हम अपने देश में अनाज उगा रहे किसान के लिए।
0: तो भाई हम तो अपनी गृहलक्ष्मियों से कहेंगे, सखियों से कहेंगे
1: जी
0: कि आप भी इस संदेश को अपनाइए।
1: हाँ।
0: और हमारे किसान जो खेतों में जो मेहनत करते हैं, उन वो घरों में जो आपकी अनाज आता है ना, तो उसको वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी, ये तो आपने इतना अच्छा संदेश दिया कि इस पर हम सबको पालन इसका करना चाहिए। हाँ। कि जो सही होता है ना, आप किसी की रिस्पेक्ट कैसे आप दिखा सकते हैं, तो इसी तरह से दिखा

0: सकते हैं कि भैया अनाज को बिल्कुल भी बर्बाद ना
1: और
0: करें।
1: यही अनाज जब सीमा पर खड़े हुए जवान होते हैं उनके पास जब नहीं पहुंचता है तो सोचो क्या होता है।
0: कितनी दिक्कत।
1: तो भाई रिस्पेक्ट हर चीज की करनी चाहिए, और हम बात जब इस विषय में कर रहे हैं तो कुछ
0: कुछ बिल्कुल आज का दिन है, इतनी बातें हो गई, और तो फिर क्यों ना अपने सखियों को सुनवा दें ये प्यारा सा।
2: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो,

0: दीदी देखिए, ये संदेश तो हम सबको मिल गया कि भाई ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है और ना बुरा कहना है।
1: कहना है तो इसी पर एक विशेष और भी कार्यक्रम है।
0: अच्छा
1: हाँ, विशेष कार्यक्रम है जो कि है हिंद स्वराज के ऊपर ही है
0: जी,
1: और
0: बातचीत कर रहे हैं
1: नेहा गुप्ता जी ने और आशुतोष सुंदरम जी ने।
0: हाँ, और दीदी ये बहुत रोचक बातचीत है, आप सुनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो
1: और ये विशेष अनुरोध पर आज हम लोग सुना रहे हैं,
0: तो ये विशेष है तो हम सब लोग इसको सुनते हैं और फिर इस पर हम और बातें करेंगे।
2: श्रोताओं, मेरे हाथों में गांधी जी द्वारा लिखी हिंद स्वराज

0: पुस्तक है। गांधी जी ने मूलतः इस किताब को गुजराती भाषा में लिखा था। उसका अनुवाद कुछ दिनों बाद अमृतलाल ठाकुर दास नानावटी जी ने किया। इस किताब के पहले पेज पे बहुत ही सुंदर गांधी जी जो सोचते थे, जो असल में वो अपने व्यवहार में किया करते थे, वो लिखा हुआ है। वो कुछ इस तरह है, यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इस पुस्तक के पन्ने जब मैं पलटती हूँ तो प्रस्तावना में गांधी जी ने लिखा है कि शायद मैं ये जो बातें कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कोई इसे ढिठाई समझ सकता है या दुस्साहस समझ सकता है, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। वो आगे इसमें लिखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो बातें हैं, जो मैं कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वही सच्ची हैं। अगर ये बातें सच्ची नहीं हैं, कोई और तर्क पेश करता है, तो मैं अपनी बातों को वापस लूँगा। मैं उससे पकड़ करके नहीं बैठूँगा, क्योंकि अंततः सत्य ही सामने आना चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ आशुतोष सुंदरम जी भी हैं। आशुतोष जी, ये जो किताब है, ये जो
1: जी
0: पुस्तक है, ये प्रश्न और उत्तर वार है।
1: अच्छा
0: मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ,
1: जी
0: वैसे तो बड़े सारे प्रश्न हैं, मैं प्रश्नों का पाठ करूंगी और
1: जी
0: गांधी जी ने जो उत्तर लिखे हैं,
1: जी
0: बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगी आपसे कि उनके ही द्वारा लिखे गए उत्तर का पाठ आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा।
1: और मुझे लगता है कि गांधी जी की इन बातों को सुनकर जो उन्हें उत्तर के रूप में दी है,
0: जी
1: हमारे श्रोता जरूर प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में अपनाएंगे।
0: जी शुरू करें।
1: जी
0: इस पुस्तक में गांधी जी ने अशांति और असंतोष पर भी बात की है। किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल किया, वो सवाल इस तरह है, तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना, उससे फैली हुई अशांति को ठीक समझा जाए या नहीं?
1: इंसान नींद में से उठता है तो अंगड़ाई लेता है, इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है। उसे पूरा भान आने में कुछ वक्त लगता है। उसी तरह अगरचे बंग भंग से जागृति आई है, फिर भी बेहोशी नहीं गई है। अभी हम अंगड़ाई लेने की हालत में हैं, अभी अशांति की हालत है। जैसे नींद और जागने के बीच की हालत जरूरी मानी जानी चाहिए और इसीलिए वह ठीक कही जाएगी। वैसे बंगाल में और उस कारण से हिंदुस्तान में जो अशांति फैली है वह भी ठीक है। अशांति है ये हम जानते हैं, इसलिए शांति का समय आने की शक्यता है। नींद से उठने के बाद हमेशा अंगड़ाई लेने की हालत में हम नहीं रहते, लेकिन देर सवेर अपनी शक्ति के मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह इस अशांति में से हम जरूर छूटेंगे। अशांति किसी को नहीं भाती।
0: आशुतोष जी, जब आप इस उत्तर का पाठ कर रहे हैं,
1: जी
0: मैं 1909 के परिदृश्य दिमाग में घूम रहे हैं,
1: जी
0: तो ऐसा लगता है गांधी जी की समझ कितनी गहरी है ना, वो लोगों को मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते
1: मूलतः
0: थे।
1: जहाँ तक मुझे समझ में आता है,
0: जी
1: गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और बाकी जो कुछ उन्होंने सामाजिक रूप में हमें उनके कार्य व्यवहार क्रियाकलाप देखते हैं वो सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं। और इसीलिए गांधी जी का दर्शन जो मानव का मूल स्वभाव है उससे जुड़ता है और उसके उत्तर भी उसी में निहित हैं।
0: बिल्कुल, जैसे किताब के पहले पेज पर
1: जी
0: जो 4 लाइनें लिखी हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो बल है, जो सबसे बड़ा शस्त्र है, वो आत्मबल है। अगर आपके पास आत्मबल है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और उन्होंने शायद इस आत्मबल के सहारे ही हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी भी दिलाई।
1: बिल्कुल ये सही बात है। जितने भी बल के प्रकार हैं, चाहे आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल, उसमें आत्मबल सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो बाकी सारे बलों का आधार है।
0: जी
1: इसीलिए गांधी जी ने कहा कि किसी भी कार्य के संपादन के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मबल होना जरूरी है। अगर आप

0: आत्मबल है, तो आप अपने को उस स्थिति का सामना करने के लायक बना सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, गांधी जी के समक्ष एक व्यक्ति ने स्वराज से संबंधित प्रश्न किया। वो व्यक्ति कहते हैं, यह भी बेकार सवाल है, हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें दे देंगे तब अपना ही झंडा रखेंगे, जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। फिर देखिए गांधी जी ने क्या उत्तर दिया इस बात का।
0: ये तो आपने अच्छी तस्वीर खींची, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते, मतलब ये हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वो हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा लेकिन सच्चा इंग्लिशतान कहा जाएगा। ये मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है।
1: गांधी जी की बात जो 1909 में उन्होंने कही आज भी कितनी परफेक्ट, मैं कहूँ एग्जैक्ट मुफीद जान पड़ती है कि हम कॉपी कर सकते हैं लेकिन हम अपने मूल स्वभाव को बहुत ज़्यादा दिनों तक छुपा करके नहीं रख सकते।
0: यहाँ पे जो एक जिसे कहेंगे कि ड्यूअलिज्म, उसके बारे में गांधी जी ने इंगित किया है कि आप किसी भी चीज़ को मूल रूप में स्वीकार करना चाहते हैं और अपना मूल स्वभाव भी बनाए रखना चाहते हैं, ये संभव नहीं है।
1: बिल्कुल, हम किसी अन्य देश की राह पर क्यों चलें जब हमारे देश के लोगों की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी भाषा है, वेशभूषा है, उनके अपने हुनर हैं। हम दूसरों के पथ को देखें जरूर लेकिन हम दूसरों के पथ को अपना पथ क्यों बना लें।
0: और यहीं से गांधी जी का भी वो सिद्धांत भी निकलता है कि हमारा जो साध्य है वो तो पवित्र होना ही चाहिए, साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। अपवित्र साधन से हम पवित्र साध्य नहीं उसकी संकल्पना कर सकते।
1: जी, आशुतोष जी, बात यूं ही आगे बढ़ रही थी
0: जी,
1: तब किसी ने गांधी जी से सभ्यता के दर्शन पर प्रश्न किया। प्रश्न इस तरह से था, मैं शब्दशः पढ़ रही हूँ, अब तो आपको सभ्यता की भी बात करनी होगी, आपके हिसाब से तो यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। तो गांधी जी कहते हैं,
0: मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी ये सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं, वहाँ सभ्यता के खिलाफ मंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है, उसमें उसने ये साबित किया है कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है। मेरा ख्याल है गांधी जी का यहाँ आशय अंग्रेजी सभ्यता से है।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनको हमेशा, जब मैं इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिख रही थी
0: जी,
1: तो उन्होंने ये बात कही कि आप बहुत सारी संख्या में जो अस्पताल बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत तकनीकों का प्रयोग करते जा रहे हैं, वो शायद लोगों के भले के लिए जो मानव प्रकृति है उससे साम्य नहीं रखती, क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वो स्वस्थ रहना है। गांधी जी ने कहा कि उन चीजों पर बल दीजिए जो हमें अच्छाई की ओर ले जाती हों, सिर्फ आप जो प्रॉब्लम को बनाए रखे उस तरह की संस्थाओं के वो हिमायती नहीं थे। ये बड़ी बात है आशुतोष जी।
0: जी, गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था कि मानव जीवन का प्रकृति के साथ साम्य होना चाहिए और इसी साम्य को बरकरार रख के हम अपना विकास कर सकते हैं, सही मायने में विकास। सिर्फ सभ्यता का विकास ही विकास नहीं है, इसी पे वो बल देते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी मानवीय सभ्यता का संरक्षण करना है और उसी के हिसाब से उसी के अनुकूल वातावरण तैयार करके मानव सभ्यता का विकास होना चाहिए।

0: गांधी जी से ये सब बातें हो ही रही थी
1: जी।
0: सभ्यता के दर्शन पर। अगला सवाल पूछते हैं, इन सब बातों को हम गहरे तौर पर क्यों नहीं जानते? तो गांधी जी कहते हैं,
1: इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ निकालेंगे। यह वे जानबूझकर करते हैं। ऐसा भी नहीं है वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यूं एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है।
0: आशुतोष
1: जी,
0: ये बात जरा सोच करके देखिए, हम लोग 2023 में हैं और ये बातें 1909 में हुई। वो कहते हैं कि एक आदमी अपने खिलाफ बात करने से कतराता है, आज भी बिल्कुल सच है।
1: ये शाश्वत बातें हैं, शाश्वत सत्य जिसे हम कहते हैं, वो 19वीं सदी में भी उतनी सच थी, 20वीं और 21वीं सदी में भी वैसी ही हैं, और आगे भी ये अपना मूल्य नहीं खोएंगी ये बातें।
0: हम बौखला जाते हैं ना जब हमारे खिलाफ ही कुछ बात होने लगती है,
1: क्योंकि हमारे अंदर एक जो भाव है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है या वैसा ही होना चाहिए, इससे हम ग्रसित रहते हैं, इसलिए हम बौखला जाते हैं।
0: यहाँ पर मुझे ओशो की कही हुई बात भी याद आ रही है। वो कहते थे कि पता है इंसान अपनी हिमायती अपनी चीजों के प्रति क्यों पकड़ बनाए रखता है? उसको भय होता है कि कहीं कुछ खो न जाए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, और इस भ्रमजाल में वो कुछ पकड़ के बैठना चाहता है।
1: ये जो आत्ममुग्धता की स्थिति होती है,
0: हाँ,
1: वो तकरीबन यही स्थिति है, और गांधी जी ने एक तरीके से सचेत किया है कि हमें इससे मुक्त होना चाहिए, बचना चाहिए,
0: शायद तभी जीवन पूर्ण होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, जीवन की पूर्णता इसी में है कि हम मानव जीवन के लक्ष्य को समझें और उसके लिए क्या श्रेष्ठ है उस हिसाब से आगे बढ़े।
0: सभ्यता पर चर्चा के बाद जब मैं इस पुस्तक के पन्नों को पलटती रहती हूँ, ये पृष्ठ संख्या 87 है, यानी 87, शिक्षा की बात लिखी हुई है। गांधी जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपने इतना सारा कहा परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की जरूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी को हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लाजमी तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने अपने राज्य में लाजमी शिक्षा शुरू की है, उसकी ओर सबका ध्यान गया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझी जानी चाहिए? तो गांधी जी कहते हैं,
1: अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे धुरंधर नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनका हेतु निर्मल है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते। शिक्षा तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही हो तो वह तो एक साधन जैसी ही हुई। उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। एक शस्त्र से चीरफाड़ करके बीमार को अच्छा किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर ज्ञान का भी ऐसा ही है। बहुत से लोग उसका बुरा

उपयोग करते हैं ये तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक या प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है, उसे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है। अपने माँ बाप के साथ कैसे बरतना, अपनी स्त्री के साथ कैसे बरतना, बच्चों से कैसे पेश आना, जिस देहात में वो बसा हुआ है वहाँ उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इस सब का उसे काफ़ी ज्ञान है। वो नीति के नियम समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वो अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में

0: जिस देहात में वो बसा हुआ है वहां उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इस सब का उसे काफी ज्ञान है। वो नीति के नियम समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वो अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ती करेंगे? क्या उसकी झोपड़ी या उसके हालात के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने ये बात चलाई है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे पीछे की बात सोचते ही नहीं। अब ऊंची शिक्षा को लें। मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या यानी आकाश के तारों की विद्या सीखा, बीज गणित, एलजब्रा भी मुझे आ गया, रेखा गणित, ज्योमेट्री का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी मैं पी गया, लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने ये ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान हक्सली, उन्होंने शिक्षा के बारे में यूं कहा।
1: आशुतोष जी, जब आप गांधी जी के उत्तर का पाठ कर रहे थे
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि मैंने खगोल विद्या सीखी, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ा, लेकिन इतने से भी भला ना हुआ। शायद वो संपूर्ण शिक्षा पर बल देते थे, वो शिक्षा जो समझ पर आधारित है, वो शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं जब हम किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को हीन होने के भाव से उसको भावना ग्रसित ना करें कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना?
0: बिल्कुल सही। उन्होंने देखिए शुरू में ये कहा कि अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है
1: जी,
0: और इसका उन्होंने कहा भी कि इससे कोई फायदा नहीं है। फिर उन्होंने दृष्टांत भी दिए, जो जैसा कि आपने भी बताया। तो वो व्यवहारिक शिक्षा के पक्षपाती थे, ऐसी शिक्षा जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, जिससे जिसमें मानव कल्याण समाया हो, इस पे उनका जोर रहा।
1: तो आज के दिन क्यों ना हम अपने श्रोताओं से यह विनम्र आग्रह करें कि हम सभी अपने बच्चों को समझ आधारित शिक्षा दें जो उनके साथ साथ सभी के भले के लिए होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा का जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें जो भेड़चाल है, जो तनाव है, वहाँ पे गांधी जी की ये सीख, इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, बहुत अमूल्य है। और अगर हम इसको व्यवहारिक तरीके से अपनाएं तो बहुत सारी हमारी मानवीय समस्याओं का समाधान हो सकता है।
1: जी आशुतोष जी, दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक में कई सारे प्रश्न हैं। आज हम इतने ही प्रश्नों का पाठ कर रहे हैं, फिर वक्त आएगा, फिर पाठ होगा और गांधी जी के दृष्टांतों का, गांधी जी की लिखी बातों पर फिर चर्चा होगी।
2: तो सखियों, अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम हिंद स्वराज यानी पुस्तक हिंद स्वराज के अंश
1: जी,
2: और इस पर बातचीत कर रही थी नेहा गुप्ता और आशुतोष सुंदरम जी।
3: और दीदी, जब मैं इसको सुन रही थी तो मेरे मन में इच्छा जगी कि मुझको भी ये पुस्तक पढ़नी चाहिए।
2: बिल्कुल पढ़नी चाहिए, सभी को पढ़नी चाहिए।
3: और जैसा कि इन्होंने बातचीत के अंत में कहा ना कि जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे जो हमारे जीवन में चल रही है।
2: बिल्कुल।
3: और बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हम सीखेंगे और हम अपने जीवन में उसका अनुकरण करेंगे तो हम स्वयं भी कुछ अच्छा कर पाएंगे।
2: सही बात है, क्योंकि देखिए अच्छी चीज तो सभी को सीख लेनी चाहिए।
3: सही कह रहे
2: है ना। और ये सोचना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है।
3: और दीदी देखिए, कहते भी है ना कि सीखने के लिए जब भी आपको जहां से भी जो कुछ भी अच्छा मिले, जब मिले तब सीख लेना चाहिए।
2: ये सोच के बिल्कुल मत बैठिए कि मेरी तो उम्र हो गई, अब सीखने की जरूरत नहीं है। तो उम्र के उस पड़ाव तक भी आप सीखते रहिए, क्योंकि जीवन जो सीखने का नाम है, तभी आप अपनी जीने की कला को सीख पाएंगे, अच्छी तरीके से रख पाएंगे, है ना।
3: और जब हम अपने आज के दिन की बात कर रहे हैं, इस विशेष दिन की बात कर रहे हैं, दो महान विभूतियों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे कुछ बहुत ही सुंदर गीत हैं जिनमें हम इनको याद भी करते हैं।
2: तो चलिए, देरी ना करो, तुरंत सुनवा दो।
3: चलिए

0: भाई गीत के बाद अब पहल की बारी है।
1: तो पहले पहल सुन लेते हैं। हाँ। वंदना राठौर और नेहा गुप्ता जी की ये पहल हम सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे।

0: अच्छा एक बात बताइए
1: जी। नेहा जी पूछिए, एक ही बात पूछनी है ना।
0: फिलहाल तो मन में एक ही बात चल रही है
1: जी।
0: हम खुद को जब अच्छे लग रहे होते हैं तो हमें पता होता है।
1: हाँ नेहा जी, अगर हमने अपने आप को ये महसूस किया कि हम ठीक से तैयार हुए हैं तो हम खुद को अच्छे लगने लगते हैं।
0: लगने लगते हैं
1: जी।
0: अच्छा, आप ये जो कह रही हैं कि जब हम खुद को ठीक से तैयार कर रहे होते हैं, यानी बहुत लोग खुद को ठीक से तैयार कर ही नहीं रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। ये भी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, समय की शॉर्टेज किसी को लगती है, कभी कभी कुछ आपाधापी में लोग तैयारी करते हैं, कहीं जल्दी से निकलना होता है, उनके पास समय नहीं रहता है, सारा ध्यान फिर हमेशा बाहर निकलने के बाद हमको ये लगता है कि अरे हमारी साड़ी ठीक है कि नहीं, हमारा मेकअप ठीक है नहीं, हमारे बाल ठीक है कि नहीं, तो सारा ध्यान, सारी कश्मकश अंदर ही अंदर चलती रहती है कि हम ठीक से तैयार नहीं हुए, पता नहीं हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं।
0: सुधीर श्रोताओं, ये बात नोट कर लीजिए कि जब हम तैयार हो रहे हों, तमाम बातें दिलो दिमाग में आए, कुछ दिन चलें तो ठीक है, हमेशा नहीं। क्योंकि वंदना जी ये जो बात कह रही है ना कि बाद में जब उस तैयार होने के फेज से हम बाहर आ गए, अब प्रस्तुतिकरण का समय है या किसी से मिलने का समय है या कुछ खरीदने का समय, कुछ भी, उस समय हमारा ध्यान उस प्रस्तुतिकरण में भी ना लग करके अंदर ये बात चलती रहती कि आज कुछ रह गया, तो तैयार होते समय ज़रूर अपने ध्यान को अपने ऊपर ले आएँ, अपने बालों को अच्छे से कंघी कर सकते हैं ना, हमारे पास जो भी है उसे अच्छे से पहन सकते हैं, है ना। तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि तमाम आपाधापी चल रही हो, घर है, परिवार है, ये जाहिर

0: सी बात है, कोई साड़ी खींच रहा होता है बच्चा, कभी कोई आवाज़ लगा रहा होता है, ऐसे में कैसे एकाग्र होकर तैयार करें?
1: नेहा जी देखिए, बात ये होती है कि जब हम व्यवस्थित ढंग से जीना सीख जाते हैं और हम ये दिमाग में बिठा के चलते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जब हमको हो सकता है अचानक कहीं बाहर जाना पड़े
0: जी,
1: तो इसका ध्यान, इसका भान अगर हमारे दिलो दिमाग में पहले से रहता है, उसकी सारी प्लानिंग हम बना के रखते हैं, तो हम एक अलमारी जो अपनी रखते हैं तरतीब से, जो कपड़ों की होती है,
0: सो गुड,
1: अपने कुछ सामान और जो ज़रूरत के होते हैं उसको भी रखते हैं, जो तैयारी में हमारा सहयोग देते हैं, तब क्या होता है कि अगर हमको कुछ भी समय मिलता है पलों का भी, तो भी हम अच्छे से तैयारी अपनी कर लेते हैं, इतनी तो कर ही लेते हैं कि हम अपने आप से जो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है जब हम ठीक से तैयार नहीं होते हैं और हमको ये फील होता है कि हम सच में लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या कहीं काली गुची तो नहीं है, या जैसे पहले ही बताया कि कुछ अधूरापन सा लग रहा है।
0: ये एक और मुद्दा पहलू जो बहुत ध्यान रखने योग्य है कि उसी समय अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि महीने में ऐसा दो पल आए जब हम अपने परिधान को व्यवस्थित कर लें पूरे महीने भर के लिए, अपनी जो चूड़ियाँ हैं, अपने जो बाल में लगाने वाले क्लचर्स हैं, अपनी कंघी है, बिंदी है, कुछ भी हो सकता है, अगर मेल पर्सन हैं तो उनकी शर्ट हो सकती है, बच्चे का कपड़ा हो सकता है, घर में बड़े लोग हैं उनकी भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये खाली समय का सदुपयोग भी हो गया ना।
1: खाली समय का सदुपयोग हो गया और ये आपकी जो एक मानसिकता होती है कि चीज़ों को इकट्ठा करके या व्यवस्थित रूप देना, वो जो एक टाइम मैनेजमेंट के जरिए भी आता है, हमारे आदत में जब हम उसको शामिल कर लेते हैं तब वो चीज़ और डेवलप होती है। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा देखने को मिलता है नेहा जी कि सब कुछ अस्त व्यस्त, और जो सामने वाली शख्सियत होती है वो खुद भी, उसके विचार भी अस्त व्यस्त, उसकी बातें भी अस्त व्यस्त आपको नजर आएंगी, उसका परिधान भी आपको अस्त व्यस्त ही नजर आएगा, क्योंकि उसका जो रोज़मर्रा का जो रूटीन है उसमें ये चीज़, ये अस्त व्यस्तता वाली जो बात है वो शामिल है। इसलिए
0: तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि हर दिन कोशिश करनी होगी खुद को अस्त व्यस्त से सुसज्जित करने, साज अपना ठीक करने के लिए,
1: जी,
0: नहीं
1: बिल्कुल,
0: कि ये जो हमारा तैयारी का ढंग है वो अच्छा हो। और पहली बार जब ये बातचीत शुरू हुई थी सुधीर श्रोताओं कि जब हम अच्छे लग रहे होते हैं उसके क्या फ़ायदे होते होंगे, जब अंदर से हमें पता है कि आईना देखा और लगा कि नहीं आईने ने कुछ कह दिया।
1: नेहा जी ये तो देखिए सर्वविदित है कि जब हम खुद को अच्छे लगते हैं तो हमें लगता है कि जो भी नज़रें हमको देख रही हैं वो सराह रही हैं, एक कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, हमारी चाल में वो आपको नज़र आएगा, हमारी बातों में वो बात नज़र आएगी, हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं चाहे वो काम हो या ना हो लेकिन एक अनुभव साथ में लेकर हम आएंगे, क्योंकि हमारी जो सोच होगी वो पॉजिटिव सोच होगी।
0: जब भी सुधीर श्रोताओं आप तैयार हों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि इससे फर्क पड़ता है और हम खुद को अच्छे लगे ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम खुद को अच्छे लगते हैं उस वक्त हम निर्णय भी बहुत अच्छे करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, तो ये ध्यान रखिए और ये पहल कीजिए इस पहल के अंतर्गत कि आप अपना वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल है उसको व्यवस्थित करके रखेंगे।
0: और सुधीर श्रोताओं आज वंदना जी बहुत अच्छी लग रही है इसीलिए मैंने पहल का आज का जो विषय यही रखा, तभी उनसे मैंने कई प्रश्न किए और जवाब में उत्तर स्वरूप इतनी सुंदर चीजें निकली कि वो अच्छी क्यों लग रही हैं।
2: तो भाई पहल में हम लोगों ने समझा कि व्यवस्थित
3: रहने
2: की आदत
3: और
2: अब
3: और दीदी मैंने आपकी बात काटी
2: नहीं, नहीं
3: बस मैं ये कह रही थी ये जो आपका सुंदर सा दुपट्टा है ना, मेरी नजरें बार बार इस पे टिक रही थी, ये कितनी सुंदर कढ़ाई है।
2: हाँ भाई ये देखो डोड़ा कढ़ाई है ये, है ना।
3: अच्छा?
2: हाँ और ये जो ये मेरी माँ की है।
3: अच्छा।
2: हाँ और मैं आज ओढ़ के आई हूँ इसको, मैंने देखा था कि भाई ये कढ़ाई पे हम लोग बातचीत करेंगे तो
3: अच्छा।
2: मैंने कहा प्रीति जरूर पूछेगी इसलिए मैंने इसको ओढ़ा है।
3: तो और यहाँ की तो नहीं है?
2: नहीं नहीं प्रीति ये राजस्थान गुजरात की है।
3: अच्छा।
2: है ना। हाँ तो वहीं पर गए हुए थे हम लोग तो हम लोग ले आए थे अपनी माँ के लिए।
3: अच्छा।
2: हाँ
3: तो दीदी जैसे मैंने देखा कि ये कॉटन पे बनी हुई है तो क्या ये कॉटन पे ही रहती है या बाकी इस पर सिल्क वगैरह?
2: नहीं नहीं सब पे रहती है भाई ये। हाँ ये जो है खादी पे भी बनती है, सिल्क पे भी बनती है, सब पे बनती है ये, है ना। और जानते हो इसमें सुई धागे से ये की जाती है कढ़ाई इसमें।
3: हाँ।
2: और इसमें डिजाइन ऐसी होती है जैसे फूल पत्तियां ऐसे काढ़े जाती है, शीशे की कढ़ाई होती है कि उभरी उभरी सी होती।
3: हाँ,
2: है
3: मैंने देखा।

0: में बड़े सुंदर हाँ, फूल हैं
1: और रंग बिरंगे धागे लगते हैं
0: और इतने अट्रैक्टिव हैं सारी वो।
1: तो भाई देखो जब अगली बार जाऊंगी तो तुम्हारे भी लेके आऊंगी। अब घड़ी हमें घर चलने के लिए कह रही है ना,
0: चलिए
1: अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहनों, तब तक के लिए नमस्कार
0: नमस्कार।

अभी बहनें अपना कार्यक्रम सुन रही थीं गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: A silver medal in the mixed recurve team archery event, the Indian duo of Kumkum Mohor and Dheeraj Bommadevra finished runners-up after losing 3-5 to China in a closely contested final. In sailing, Netra Kumanan won the bronze medal in the women's dinghy event. The 29-year-old Indian sailor finished third with overall 14 points. With these performances, India climbed to sixth position in the overall medal standings. The country's medal tally rose to 72 medals, comprising 12 gold, 25 silver and 35 bronze. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai, Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की. उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया. दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना. एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की. उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी. कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला. प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है. प्रधानमंत्री ने स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं.
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ.
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया.
3: मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था. मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मैं कुछ नहीं किया, जब मैंने चेक गिरा हुआ था.

0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा

0: विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहे हैं, मोदी कुर्ता पहन रहे हैं। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजीली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी।

0: शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा देंगे।
1: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए NCRT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का,
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश।

0: से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं।
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है। ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
0: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
1: श्रोताओ, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
0: जी,
1: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
0: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
1: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
0: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
1: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
0: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
1: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रतापूर्वक साफ इनकार कर दिया
0: जी।
1: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
0: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
1: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था।
0: जी,
1: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
0: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए
0: जी,
1: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।

0: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ, और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
1: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: गांधी। नमस्ते
4: नमस्ते।
5: हमारी खुशनसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
6: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता

0: खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकह लगाया और फरमाया,
1: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी चार देसी चीजों में अपनी उसी पांचवीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था।

0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी चार देसी चीजों में अपनी उसी पांचवीं चीज का ख्याल आ जाता। ১৯৪৫ का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 150,000 रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
1: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
2: जी बापू।
1: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
1: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
1: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
1: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल सही।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: लड़की तंग आकर रो पड़े। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था, उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करें। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं,
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना।
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था, उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई, दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू बापू, ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर देख जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो।
2: मुझे भी लीमू दो ना।
1: ये लो।
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं

0: आश्रम के रसोई घर में।
1: अरे बापूजी के आने का समय आने वाले हैं। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
2: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
1: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
2: क्या?
1: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
2: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
1: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
2: ठीक है चंपा, ठीक।
3: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट। हाँ,
2: मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
1: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
2: नमस्कार बापू।
3: प्रणाम बापू।
4: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
2: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
1: बापू सब्जियां काट रहे थे।
4: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
1: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
4: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
1: जी बापू।
4: अच्छा जाओ।
1: जी।
4: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
2: जी।
1: चलो चलते हैं।
2: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
3: बापू बापू ये देखिए।
4: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
3: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
4: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
3: जी।
4: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
3: हाँ।
4: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
3: जी बापू।
4: हाँ, समझ गई ना?
3: जी।
4: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
3: जी बापू, धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें, लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
5: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
4: अरे सुधीर, नहीं अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
5: हाँ?
4: अभी तो इसे और चमकाना है।
5: ओ।
4: देखो इसे और चमकाता हूँ। ये लो, अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
5: चमकने भी लगा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं

0: उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
1: हाँ जी बापूजी।
0: हाँ शाबाश।
2: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं, और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। 3:30 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भक्ति संगीत कार्यक्रम का गांधी स्तुति दर्शन समिति नई दिल्ली से सीधा प्रसारण।
1: दर्शन समिति नई दिल्ली चलें।
2: नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति 5-30 जनवरी मार्ग बलिदान स्थल से मैं अशोक शंगारी, अपनी साथी कमेंटेटर पूनम आहूजा और कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप अग्रवाल, आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
3: जी हाँ, तो इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गांधी स्मृति में, जहां आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। सच कहें तो गांधी स्मृति का ये परिसर आज एक अलग ही भाव से भरा हुआ है। वातावरण में एक ओर श्रद्धा और शांति है तो दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथि हम देख पा रहे हैं। गणमान्य व्यक्ति हैं, सम्मानित हस्तियां हैं और इन सबकी उपस्थिति इस अवसर को और गरिमामय बना रही है। श्रोताओं, ये वही धरती है जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और जहां से उनकी स्मृतियां आज भी हमें सत्य, सेवा, सादगी और अहिंसा का संदेश देती हैं। और आज इस विशेष अवसर पर हम सभी, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कृतज्ञ होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू को याद कर रहा है, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज यहाँ से सजीव प्रसारण लेकर हम आकाशवाणी की ओर से आप सबके समक्ष हैं और बहुत ही एक सुंदर यहाँ वातावरण बना हुआ है। चारों ओर हरा भरा बगीचा, स्कूली बच्चों का उत्साह, बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे, सर स्कूलों के बच्चे बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल बहुत सुंदर बना हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद रंग की टोपी और उस पर बहुत ही जी। तो हम जिक्र कर रहे हैं।

0: यहाँ आज भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी होगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे भाई बलदीप सिंह, सुप्रसिद्ध गायक। उनके भजन होंगे और थोड़ा सा हम इस परिसर के बारे में आपको परिचय दे दें। ये पहले पूर्व में जीडी बिरला हाउस, जिसे बाद में के बिरला जी ने भारत सरकार को सौंप दिया और महात्मा गांधी जी का ये अंतिम 144 दिन महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने, यहीं पर बिताए। प्रतिदिन यहाँ पर प्रार्थना सभाएं होती थी और ऐसे में ही एक दिन आया, एक पल आया, जब शाम को 5:15 पर 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी।
1: तो अशोक जी, हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम की रूपरेखा दे देते हैं कि यहाँ पर दिल्ली और एमसीआर के 50 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आए हैं संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसके बाद धार्मिक ग्रंथों से प्रार्थना का क्रम रहेगा। सबसे पहले बौद्ध प्रार्थना होगी, फिर बौद्ध प्रार्थना तिब्बती होगी, फिर ईसाई प्रार्थना, पारसी प्रार्थना, बहाई प्रार्थना, यहूदी धर्म प्रार्थना। ये लीजिए, बच्चों ने ये जो क्रम है शुरू कर दिया, बच्चे यहाँ संगीत में श्रद्धांजलि देना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ और ये भाव, जैसे बापू को अपने मन में बसाया हुआ है जी। सीताराम, जय सीताराम, मधुर ध्वनि, मधुर स्वर और साथ ही बांसुरी की ये धुन, आइए इसे सुनते हैं।
0: बिल्कुल पूनम, यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर, वातावरण सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वातावरण पूरी तरह गांधीमय हुआ है।

0: तुम आशा विश्वास हमारे, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और शुरुआत इस संगीत में श्रद्धांजलि के इस भजन के साथ, जो मन में विश्वास को फिर से जागृत करता है, उम्मीद को लेकर आता है।
1: स्कूल के बच्चों की ये प्रस्तुति और इसके बाद हम अगली प्रस्तुति के साथ अपने श्रोताओं को वाकिफ करेंगे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनके सपनों का भारत, विकास की नई राह पर चलता भारत, नई राह नई डगर पर हम हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारा आज के दिन संकल्प होना चाहिए।
0: बिल्कुल यही संकल्प होना चाहिए अशोक जी। और ये देखिए अगली प्रस्तुति जो है वो और सुंदर, बच्चे इतने उत्साह से और इतने प्रेम से बैठे हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है ये

0: On the keyboard we have.
1: इंसाफ की डगर पे बच्चों चलो और दिखाओ, ये देश है हमारा, नेता हो आप सभी के, और आने वाला समय इन्हीं बच्चों का है, ये देश इनका है। इसीलिए गांधी जी जो हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी जोर देते थे, उनका उद्देश्य था ऐसे नागरिक तैयार करना जो आत्मनिर्भर हों, जिनमें नैतिकता का मूल्य हो, श्रमशील हों और सामाजिक रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी हों। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार नैतिकता और चरित्र निर्माण था। इस शिक्षा व्यवस्था में हाथ, हृदय और मस्तिष्क तीनों के समन्वित विकास पर जोर दिया गया था।
2: बिल्कुल, और यहाँ पर इस समय दिल्ली और NCR के 50 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे हैं जो इस संगीत में श्रद्धांजलि के माध्यम से हम सबको याद दिला रहे हैं वही नैतिक मूल्य, वही भाव और जीवन में उसे अपनाना। एक और प्रस्तुति, अगली प्रस्तुति।

0: मीठी सी हवा है जहाँ, फूलों की सभा है जहाँ, वही धूल मेरे लिए सोना है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही मीठे
1: May I request our distinguished gathering to kindly
0: स्वर में बच्चों ने इसे गाया। ऐसा लग रहा है जैसे सारा वातावरण इनकी आवाज का साथ दे रहा है। पेड़ों से छनकर आती शाम की हल्की धूप, फूलों की सुगंध और शांत परिसर जैसे इस ऐतिहासिक स्थान की स्मृतियों को अपने साथ लिए हुए है। और हर तरफ इन बच्चों के इस मधुर गान के साथ जो अतिथि हैं वो मंत्रमुग्ध नजर आते हैं, जैसे इस आवाज में वो खो गए हैं। बहुत ही शांत वातावरण, श्रद्धा का भाव, साथ ही कुछ लोग आपस में बात करते हुए जैसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कहीं बापू की स्मृतियां हैं, कहीं पर नैतिक चिंतन, और कहीं पर सिर्फ शांत रहकर इन बच्चों को सुनना।
2: जी पूनम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सभी हृदय की गहराइयों से पल पल प्रति पल नमन कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।

0: for this wonderful prayer of peace by the children. I request everybody to kind of
1: इस समय स्कूल के बच्चों ने वातावरण एकदम संगीतमय कर दिया है. धारा अनंत है, वसुंधरा अनंत है, आकाश अनंत, क्षितिज अनंत, प्रणय अनंत हो, यही है प्रार्थना प्रभु की. विश्व शांति हो, हमें ये आस दो, हमें विश्वास दो. हमारी आस्था, हमारी मानवता डिगे नहीं, झुके नहीं, सदा बुलंद हो.
2: जी बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता भी है, कहीं उनके मन में ये जो विचार हैं वो उमड़ते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन विचारों को अपने जीवन में ढाला कैसे जाए. पर हर कोना यहाँ का आज एक कहानी कहता महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि हर कोई अपने आप से शायद ही प्रश्न कर रहा है कि बापू केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है या आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है. और आज जब बच्चे ये नमन कर रहे हैं, अतीत को नमन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके मूल्यों को जीवंत रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उसी पल में जैसे ठहर गए हों.
1: जी बिल्कुल, भक्ति संगीत के शुरू में यहाँ का वातावरण, जोश और जज्बा बहुत ही सुंदर हो रहा है, और कुछ ही पलों में हमारे आज के गणमान्य माननीय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और अन्य गणमान्य सभी यहाँ पर पधारने वाले हैं. संगीत में ये वातावरण कुछ ही पलों में भक्ति संगीत में भी डूब जाएगा. भजन प्रस्तुत करेंगे भाई बलबीर सिंह. और अब सभी धर्मों के जो उनके गुरु हैं यहाँ पधार चुके हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पधार चुके हैं. अब ये वातावरण एक दूसरा रंग, एक दूसरा रूप लेने जा रहा है. यहाँ पर सभी धर्म गुरु अपने अपने धर्म से बहुत ही सुंदर पाठ, ग्रंथ और अन्य संगीतमय भजन प्रस्तुत करेंगे.
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने अशोक, और हम सभी जानते हैं, हम सभी इस बात के साक्षी हैं, अनुभवी हैं कि जहाँ बापू शब्द आत्मीयता को दर्शाता है, अपनेपन का पर्याय है, मर्म है, वहीं महात्मा यानी महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है. और इस समय यहाँ पर हम देख
1: रहे हैं

0: हमारे गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी अपने कर कमलों से सभी कलाकारों को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करते हुए उनका स्वागत करते हुए।
1: जी हाँ, और ये स्वागत का क्रम जारी है और वो आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह हैं, जो आज की यहाँ भक्ति संगीत और रामधुन की प्रस्तुति करेंगे, उन्हें भी उन्होंने सम्मानित किया और अब उनकी टीम की तरफ आगे बढ़ते हुए सभी, और बहुत ही सौम्य है वातावरण और प्रोग्राम का ये सिलसिला आगे चलते हुए।
0: बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री विजय गोयल जी
2: दोस्तों,
0: जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम यहाँ पर, जिनकी देखरेख में और अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री की होती है,
2: आप सबका स्वागत है।
1: और वो सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत,
2: महात्मा गांधी का 157वां ये जयंती है, जिसमें आज हमारे कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। जो लोग पहली बार आए हैं उनको मालूम होना चाहिए, गांधी स्मृति वो स्थान है जहाँ गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे। गांधी जी यहाँ नहीं ठहरना चाहते थे, गांधी जी ठहरना चाहते थे बिरला मंदिर के पास, एक हरिजन कॉलोनी है, हरिजन बस्ती के अंदर ठहरना चाहते थे। पर उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिंता हुई कि बाबा अगर वहाँ ठहरेंगे तो उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा है और हम उनसे मिलने जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बड़े प्रबंध करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सरदार पटेल को भेजा शाहदरा रेलवे स्टेशन पर आप गांधी जी को समझा बुझा के लिवा लाओ, और ये जो बिड़ला हाउस है जहाँ सेठ घनश्यामदास बिड़ला रहते थे, उनसे आग्रह करो कि वो यहाँ ठहरे। गांधी जी के साथ बिड़ला जी के संबंध अच्छे थे, गांधी जी ने उनको बहुत मना किया, सरदार पटेल ने उनको बहुत समझाया, फिर अंत में उन्होंने कहा महात्मा जी यहाँ पर आप देखो कितने दंगे हो रहे हैं और उस समय वहाँ आपकी सुरक्षा को बड़ा खतरा है। जब गांधी जी नहीं माने तो उन्होंने कहा वो हिंदू कॉलोनी है, वहाँ मुस्लिम आपको मिलने नहीं आ पाएंगे, आपकी भजन जो संध्याएं होंगी उसके अंदर जाते हैं। और फिर आप साहब जानते हो 30 जनवरी 1948 को इसी स्थान पर, जहाँ आज हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, गांधी जी जब अपने उस सामने बिल्डिंग से कमरे तक कुछ ही पग यहाँ पर पार करके आए होंगे, तब वो यहाँ पर शहीद हो गए थे जाते। तो ये गांधी स्मृति और वो गांधी दर्शन जो राजघाट के साथ है, इसमें 8 म्यूजियम्स हैं। मैं आप सबको आग्रह करूँगा जिस दिन भी आपके समय हो परिवार के साथ आइए, एंट्री भी फ्री है और गाइड भी फ्री है। आज के इस भजन कार्यक्रम में भाई बलदीप सिंह जी हमारे बीच के अंदर हैं, ध्रुपद गायक हैं, और तो और इन्होंने म्यूज़िक के हेरिटेज को बचाने के लिए बहुत बड़े काम किए हैं, देश विदेश के अंदर अनेकों इनके कार्यक्रम हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत हो जाए, और आज जब उनका गायन होगा तो आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। पहली बार है हमने उनको आमंत्रित किया है, और वो राम भजन भी ऐसे गाते हैं कि आदमी पूरा वातावरण जो है वो राममय हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं सभी धर्मगुरुओं का भी बहुत स्वागत करता हूँ। महात्मा गांधी की जय।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार आप हमसे साझा किया आपने। Readings from the holy scriptures are as follows: Buddhist prayer Japanese, Buddhist prayer Tibetan. Readings from the holy Bible.
1: धार्मिक ग्रंथों से प्रार्थना का क्रम शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले बौद्ध प्रार्थना होगी जापानी, उसके बाद बौद्ध प्रार्थना तिब्बती, फिर ईसाई प्रार्थना, पारसी, बहाई, यहूदी धर्म प्रार्थना, कुरान शरीफ से पाठ, गुरु ग्रंथ साहब से पाठ, जैन प्रार्थना, शबद कीर्तन और गीता का पाठ।

0: बौद्ध प्रार्थना तिब्बती।
1: नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा

0: नेम सबसे उत्तम मार्ग, ये पाठ बाइबल में मिलता है, नए नियम में पौलुस रसूल की पत्री पहला कुरिन्थियों के नाम
1: ईसाई
0: तेरहवां अध्याय उसके पहले पद से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता और पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता।

0: परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी हैं, परंतु जब सर्व सिद्धि आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, यह परमेश्वर का वचन है।
1: जोराशियन पारसी प्रिय प्रार्थना बनामे यजत बक्षायन्ते बक्षायज्ञ मेहरबान रजिष्ठियाओ चिष्टियाओ मजदात्याओ अशोन्याओ दैन्याओ अंगयो मास्दयस्नो ईश दिन विरास वधरो के खुदा बरखलक फरिश्ता दे इन हस्त के जर्थोस्त अवर्द हस्त दीन दीन जर्थोस्त दीन जहुरम हस्त दादे जर्थोस्त स्पितमान यथा वेरियो यथा रतुस असाचित अच्छा वंगेयोस दस्ता मनिंगोस शौत्रिन नाम इंग्योस वस्ताय शौत्रिन चा औराय आयम दरिगोप्यो ददद वास्तारे यथा वेरियो यथा रतुस असाचित अच्छा वंगेयोस दस्ता मनिंगोस शौत्रिन नाम इंग्योस वस्ताय शौत्रिन चा औराय आयम दरेगोप्यो ददद वास्तारे अशेम भव वैष्टेम अस्ति उस्तास्ति उस्तामाय यत अशाय वैष्टाय शेम। द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश मे अहोरम अस्द वी प्लीज इन द नेम ऑफ गॉड द बेनिफिशियंट द फॉरगिवर द काइंड मे देयर बी प्रेज फॉर द नेम ऑफ अहोरम अस्द हु हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड एग्जिस्ट एंड विल एग्जिस्ट वन of his name is God, the beneficent spirit, the most spiritual among the spiritual ones. One of his name is Aura Mazda, the omniscient Lord. He is the Lord, great, mighty, wise, creator, nourisher, protector, supporter, righteous, forgiver, holy dispenser of all powerful good justice. In Hindi, it is Anuvad in Hindi. Parmeshwar के नाम पर जो अत्यंत दयालु क्षमाशील और कृपालु है, अहोरा मज़दा के नाम की स्तुति हो जो अनादिकाल से विद्वान है, विद्वान रहेगा।
2: बहाई प्रार्थना।

प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सुनी अरदास स्वामी मेरे,

0: गुर नानक की वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 157वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित गांधी स्मृति के द्वारा शहीद स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में जैन प्रार्थना नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सब्बे सिंह पद्मं हवई मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। भगवान महावीर कहते हैं, जो सहसम सहसानम संगामे दुजे जिने एगम जिने जप्पाणम एस से परमोह, जो युद्ध के मैदान में लाखों को जीतने वाले से भी परम विजय उसकी है जिसने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान महावीर कहते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहानी है सुहानी है अप्पा मित्तम मित्तम चे दुपट्टी है सुपट्टी हो, हमारी आत्मा ही हमारी मित्र है, हमारी आत्मा ही शत्रु है। जब श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न होती है वो हमारी आत्मा मित्र है, जब दुष्प्रवृत्तियों में संलग्न होती है तब शत्रु है। सदैव हम श्रेष्ठ कर्म करें। भगवान महावीर कहते हैं, कम्मुणो बम्मुणो होई कम्मुणो होई खत्तियो कम्मुणो वैसो होई शुद्धो हवई कम्मुणो, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए हम सदैव श्रेष्ठ कर्म करें। ओम शांति शांति शांति।
2: रमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री ऋषभ देव, जय श्री महावीर। जैन प्रार्थना।

0: In the year 2007, Shanti, the United Nations declared 2nd October Gandhi Jayanti.
1: Rashtrapita Mahatma Gandhi ji ke is pavan sthal se.
2: और अब वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया, तो उसी उपलक्ष्य में भारत के संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महामहिम श्री स्टीफन प्रेसनर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव माननीय श्री एंटोनियो गुटेरेस का संदेश पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संयुक्त राष्ट्र संघ के
3: महासचिव, फेथ लीडर्स, डियर चिल्ड्रन, नमस्ते। It is my honor, on behalf of the United Nations in India, to share the message of United Nations Secretary General Antonio Guterres on this momentous occasion. And I quote, on this International Day of Nonviolence, we pay tribute to the extraordinary life and legacy of Mahatma Gandhi. Throughout his life, Gandhi set an inspiring example of how to create deep, lasting change while holding fast to the principles of peace. He showed that the best way to counter injustice is not to mirror the cruelty and violence of systemic discrimination and oppression, but to employ instead the tools of dialogue and non-violence to build bridges of understanding, deliver dignity, and create lasting change. In this time of rising division, tension, and conflict, Gandhi's lessons speak to us with renewed urgency. People are suffering. Poverty and inequality are driving a wedge between the haves and have-nots. And the very foundations of peace and development, the UN Charter, human rights, international law, and diplomacy and dialogue are being ignored and flouted with impunity. In these highly charged times, let's summon the courage, empathy, dignity, and shared humanity that Gandhi exemplified throughout his life. Let's work to heal divisions through genuine dialogue and diplomacy, end suffering, and build a peaceful world through non-violence. I thank you.
1: भारत के संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महामहिम श्री स्टीफन प्रिसनर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव माननीय श्री एंटोनियो गुटेरेस का संदेश पढ़कर सुना रहे थे।
2: और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। श्रोताओं कहते हैं कि भगवान या इष्ट देव या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के
1: प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह द्वारा अब भक्ति संगीत का

माध्यम है, स्वरों के साथ साथ शब्दों का भी एक ऐसी शक्ति जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। आइए आनंद लेते हैं इस भक्ति संगीत का, जिसके लिए आज यहाँ पर हैं प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह, जो ध्रुपद गायक है और देश विदेश में अलग अलग जगह प्रोग्राम करते हैं, राम भजन गाते हैं।

0: ओम तत्सत प्रार्थना भी आपने सुनी होगी और सभी तालियां बजाकर इस प्रार्थना के बाद स्वागत कर रहे हैं भाई बलदेव जी का जो द्रुप गए थे और आज यहाँ पर और अब वो इस प्रार्थना का अर्थ यहाँ पर समझा रहे हैं। एक ऐसी प्रार्थना जो कर्णधनी है, वेदांत तत्व का सार है, ईश्वर का संबोधन है, अज्ञान दूर करने वाले गुरु और आत्म तत्व को संबोधित करने का एक माध्यम है।
1: It talks of Mauli Dharti, Maulaya Akas, Ghati Ghati, Maulaya Atam Prakas. It's about blooming.

0: कबीर जी का दुख का तिपदा आपने सुना, राग बसंत। और इसकी प्रस्तुति के लिए आज यहाँ पर हैं ध्रुपद गायक भाई बलदीप सिंह, और अब बढ़ रहे हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
1: प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह अपने सहयोगी कलाकारों के साथ अगली प्रस्तुति लेकर

साहब कहते हैं कि वेद पढ़े पढ़ी अंत न पाया, सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ी ब्रह्म में जन्म गवाया। हरि का बिलोव ना बिलोव मेरे भाई, सहज बिलोव जैसे तप्त न जाए।

इस समय प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह और उनके सहयोगी कलाकार भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कुछ ही पलों में हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पधारने

रचना है, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण वाणी सुजस पूर राखो मन सुमधुकर करो चरण हृदय धरो रसन अमृत नाम।

0: साहब का कहना था कि मैं मीराबाई जी को भी गाऊं, और उन्होंने जो मैंने दो पदे चुने हैं उनकी खास फरमाइश पे
1: तो अभी आप सुन रहे थे संत रविदास का राग धनासरी, और अब आगे बढ़ रहे हैं संत रविदास की तिरागों में रचित प्रसिद्ध रचना गुरुग्रंथ साहब के अंक 93 में जो दर्ज है, और इसमें कहा गया है कि प्रभु तुम में और मुझ में क्या अंतर है, हम तो दोनों एक से हैं जैसे सोना और सोने के कंगन या पानी और पानी की लहर। बहुत ही सुंदर।

0: मैं हरि बिनु क्यों जीऊं रे माई। मीराबाई का प्रसिद्ध पद भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य और गाढ़ भक्ति को समर्पित। जब वो अपनी माँ यानी माई से कहती है कि हे माँ, मैं भगवान के बिना कैसे जीवित रह
1: सकती,
0: और अब मैं गिरधर आगे नाचूंगी। बहुत ही सुंदर पद। और यहाँ पर प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह और उनकी जो सहयोगी कलाकार हैं वो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस प्रस्तुति को सुनते हैं।

0: मैं गिरधर आके नाचूंगी, संत मीराबाई का प्रसिद्ध पद अभी आप सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनन्य भक्ति समर्पण और समाज के मंत्रों से मुक्ति का प्रतीक, और ये क्रम अभी आगे चल रहा है।
1: भाई बलदीप सिंह भक्ति संगीत का बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: जित ग्रह गुण गावते हरि के गुण गावते, बहुत अद्भुत रचना है। 16th century composition।

0: हरि राम बोलो हरि लाल
1: सुंदर प्रस्तुति
0: हरि राम
1: और हरि नाम का उच्चारण
0: हरि राम
1: भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आज के वातावरण को और सौम्य
0: बनाना है।

0: लीडर नरेंद्र मोदी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए
1: प्रधानमंत्री
0: और अब
1: श्री नरेंद्र मोदी जी
0: श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री।
1: नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब परिक्रमा की ओर अग्रसर होते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
0: नतमस्तक होता हृदय, नम होती आंखें, रोम रोम में कृतज्ञता। प्रत्येक भारतवासी की ओर से, करोड़ों लोगों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि और परिक्रमा। और अब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हुए बच्चे कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अपने स्थान पर विराजमान हुए।
1: कलाकारों का अभिवादन किया और कलाकारों ने माननीय प्रधानमंत्री का अभिवादन किया हृदय की गहराइयों से।

बच्चों का उत्साह और उमंग अपने प्रधानमंत्री को देखकर देखते ही बनता है।

प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित की, बलिदान स्थल की परिक्रमा की और अपने स्थान पर विराजमान होकर बलदीप सिंह और उनके सहयोगी कलाकारों का भक्ति संग

0: बहुत ही विनम्र भाव से इस संगीतमय प्रस्तुति का आनंद लेते हुए, इसमें सम्मिलित होते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं। नमन पुष्कर प्रणाम के बाद अपना स्थान ग्रहण कर वो यहाँ पर इस सभा में सम्मिलित हैं।
1: बच्चों के चेहरे की मुस्कान अपने प्रधानमंत्री को देखते हुए उनका उत्साह बच्चों का दुगना हो चुका है।
2: हरि के जन साधु हरि राम बोल, हरि राम बोल, सब पाप गवा दूं।
0: भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: काम हो जन नानक हरि से मिले हरि भगत तोरा। गुरु रामदास साहब की अद्भुत हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है, उससे आगमन है सत्यता।
3: अब बच्चों द्वारा प्रस्तुत है महात्मा गांधी जी को समर्पित उनकी अहिंसा के पथ के प्रतीक दे दी हमें आजादी बिना खरक बिना डाल।
1: उपराष्ट्रपति
3: साबरमती के संत
1: माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी बलिदान स्थल की ओर आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी जी के स्थल को नमन किया, पुष्प लिए और पुष्पों को अर्पित करते हुए अपनी पुष्पांजलि देते

भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री महोदय की ओर आगे बढ़ते हुए उनका अभिवादन किया माननीय प्रधानमंत्री ने, और साथ ही साथ अभिवादन उनका स्वीकार किया।

0: दे दी तूने आजाद बहुत बिना खड़ग बिना ढाल।
1: अब आइए पुनः
0: शांति भाईचारे सामंजस्यता और समर्पण को प्रासंगिक बनाते सिद्धांत हमेशा हर एक भारतवासी का मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। देश के आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ श्रद्धांजलि आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से।

0: बापू की हर सभा में साक्षी होने वाले गांव थे।
1: और कार्यक्रम समापन की ओर
2: आज की बहुत ही प्रार्थना सभा हम समाप्त करते हैं।

0: भक्ति में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी कार्यक्रम में पूरी तरह से तल्लीन है।
1: और अब दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए अभिवादन करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, विनम्रता से सबकी ओर बढ़ते हुए प्रार्थना सभा में जो सम्मिलित थे वो सभी हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सभी सम्माननीय धर्म गुरुओं का और साथ ही साथ सभी कलाकारों का, बलदीप सिंह जी का और उनकी सहयोगी टीम की ओर आगे बढ़ते हुए उनको सम्मान देते हुए, और सभी बहुत मंत्रमुग्ध हैं। बच्चों का उत्साह आज के इस कार्यक्रम में अलग से बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है।
1: और अब भाई बलदीप जी से कुछ वार्ता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर, बच्चे उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो इस ओर मुड़े, उनकी ओर देखें।
0: बिल्कुल पूनम, प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही पलों में बलदीप जी और उनके सहयोगी कलाकारों से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए और बलिदान स्थल से आगे बच्चों के बीच पहुंचते हुए,
1: बच्चे अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए हैं, जैसे कि सभी बच्चे बस एक बार उनके नज़दीक जाना चाहते हैं।
0: जी जी,
1: और अनुशासन बनाए रखने के लिए जो अधिकारी हैं वो बच्चों से कह रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं और उनकी ऊर्जा देखने को बनती है।
0: बच्चे एक्चुअली चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से सभी मिलने, उनमें होड़ मची हुई है। बहुत लोकप्रिय हैं हमारे प्रधानमंत्री। कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, सिक्योरिटी के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा बच्चों से रूबरू होते हैं। उसी प्रकार से एक बार फिर हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति।
1: जो देखिए बच्चे बस एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नज़दीक पहुंच सके, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ अभिवादन कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
0: सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, उनका अभिवादन करते हुए और साथ ही साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बच्चों में अब आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे खिलखिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनके 2 घंटे के प्रोग्राम में ये पल हमेशा के लिए यादगार बनने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल अशोक जी, और ये जो पल है ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकेंगे जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें, उनके सिद्धांतों का अनुकरण कर सकें, मानव सेवा को ईश्वर सेवा मान सकें।
0: बिल्कुल, ऐसा लगता है बच्चे ना जाने कब से आज 2 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज वो यहाँ आएंगे, अपनी प्रस्तुति रखेंगे और बाद में प्रधानमंत्री जी से उनका मिलना होगा।
1: साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति और बच्चे अपने अनुशासन को भूलकर दोनों से मिलने को उत्सुक आगे बढ़ रहे हैं।
0: सुरक्षा अधिकारियों के लिए थोड़ा मुश्किल समय, लेकिन वो भी अपने कार्य में बिल्कुल हमेशा कर्मठ रहते हैं, पराक्रमी हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री एकदम बच्चों के बीच में चले जाते हैं और काफ़ी समय तक उनके बीच में रहते हैं, वही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है।
1: मुस्कुराते हुए बच्चे, खिले हुए चेहरे, उत्साह और ये यादगार पल।
0: अब विदा लेते हुए और हमारे बीच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधा कृष्णन जी यहाँ से प्रस्थान करते हुए।

0: आज का एक क्षण बार बार याद दिलाता है बापू के सिद्धांतों को, बापू के व्यवहार को, कि उनके एक एक आह्वान पर सौ सौ जन दौड़े आते थे। सत्य अहिंसा दो शब्दों के अद्भुत अस्त्र उठाते थे। वो मौन सत्य का आग्रह था जिसमें हिंसा और रक्त नहीं, मानवता के अधिकारों की थी बात शांति से कही गई।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर 5-30 जनवरी मार्ग बलिदान स्थल पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आप आंखों देखा हाल सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग रहा SD ध्यानी, कमल सिंह, किरण पाल और मोनिका का। अब मैं अशोक शंगारी, अपनी साथी कमेंटेटर पूनम आहूजा, कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप अग्रवाल, सहायक केंद्र निदेशक प्रमोद कुमार और अपनी पूरी टीम के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।
0: नमस्कार।
2: अभी आप गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं भक्ति संगीत का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अशोक शंगारी और पूनम आहूजा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
7: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, मेरे यानी उन्नति
1: और मेरे यानी पूजा यादव के साथ।
0: 2 अक्टूबर का दिन सिर्फ दो ग्रेट लीडर्स की बर्थ एनिवर्सरीज का ही कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक विजनरी ट्रायंगल बनाता है।
1: ये दिन हमें एक क्लियर रोड मैप देता है कि कैसे गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मिलकर मॉडर्न डे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और पर्सनल लाइफ स्टाइल को नया आकार दे रहे हैं।
0: गांधी जयंती सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल की एनिवर्सरी नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को अवेकन करने का एक एनुअल रिमाइंडर है।
1: जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल क्राइसिस पर बहस कर रही थी, तब गांधी जी का थॉट, नेचर के पास हमारी नीड के लिए सब कुछ है पर ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं।
0: फिर दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती प्रैक्टिकल रियलिज्म, सिंप्लिसिटी और नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है। जहां गांधी जी का थॉट आइडियलिज्म की हाइट्स को छूता है, वहीं शास्त्री जी की जयंती हमें ग्राउंड लेवल रियलिज्म और एक्शन से जोड़ती है।
1: बिल्कुल, शास्त्री जी ने प्रूव किया कि पीस लविंग होने का मतलब वीकनेस होना नहीं है।
0: फूड शॉर्टेज के क्राइसिस के वक्त उन्होंने सिर्फ जय जवान जय किसान का स्लोगन ही नहीं दिया, बल्कि खुद वीकली फास्टिंग स्टार्ट करके पूरे नेशन को सेल्फ रिलायंस का मंत्र दिया।
1: मॉडर्न पॉलिटिक्स में जहां पावर ईगो लाती है, वहीं शास्त्री जी की पर्सनल इंटीग्रिटी और पब्लिक लाइफ में जीरो

0: ईगो एटीट्यूड हर पब्लिक लीडर के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है।
1: बिल्कुल। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ग्लोबल पीस और मॉडर्न डिप्लोमेसी। 2007 में यूएन द्वारा 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर करना इस बात का प्रूफ है कि गांधी शास्त्री फिलॉसफी किसी नेशन स्टेट की बाउंड्रीज में बाउंड नहीं है।
0: डिजिटल एज में जहां हेट स्पीच और ऑनलाइन टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ये डे वायलेंट बिहेवियर के अगेंस्ट एम्पैथी, डायलॉग और पेशेंस को एक वेपन की तरह प्रोजेक्ट करता है।
1: बिल्कुल।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर, और अब बात करेंगे एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसके पास ना कोई बड़ा काफिला था ना दिखावे की चमक, लेकिन जब देश मुश्किल में था तो उसकी आवाज़ में पूरा हिंदुस्तान बोलता था। एक ऐसा नेता जिसने देश के जवान को सलाम किया, जिसने सत्ता को सुविधा नहीं जिम्मेदारी माना और खेत में मेहनत कर रहे किसान को भी उतना ही सम्मान दिया।
6: नाम लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं। उन्हीं मुश्किलों ने उनके भीतर आत्मनिर्भरता और दृढ़ता पैदा की।
5: फिर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद सादा रहा। आज जब हम नेतृत्व को अक्सर बड़े पद, बड़ी गाड़ी और बड़े कद से जोड़ते हैं, तो शास्त्री जी हमें ये याद दिलाते हैं कि नेतृत्व की असली ऊंचाई व्यक्ति के पद में नहीं बल्कि उनके चरित्र में होती है।
6: और बात जब चरित्र की हो तो हम महात्मा गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं।
5: बिल्कुल,
6: उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार के भी एक साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है।
5: गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी,
6: क्योंकि वहां उन्होंने भेदभाव का सामना किया और शायद वहीं से एक ऐसा सवाल जन्मा जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया।

0: टूट रहा है अब विश्वास, 5 वर्ष धुंधला आकाश, कौन द्वार हम खटकाएं, कौन से वादे दोहराएं।
1: दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक्स हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं, जो कि है
2: yuvvanialdi@gmail.com।
1: इसी के साथ मुझे यानी उन्नति
2: और मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन

0: स्मिथ मच्छार से बात की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

आज रात 10 बजे सुनिएगा 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी, इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:38 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे रघुराज सिंह और साथियों के स्वर में लोकगीत। आकांक्षा त्रिपाठी की वार्ता, साहस और समर्पण के प्रतीक श्री लाल बहादुर शास्त्री। और विनोवर शर्मा से सुरेश कुमार की बातचीत, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन। 7:31 पर सुनिएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में गार्थी दर्शन, ये परिचर्चा। आकांक्षा पाल के स्वर में भजन सुनाएंगे सुगम संगीत में। 8:00 सुनिएगा डॉक्टर पतंजलि मिश्र से नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय की बातचीत, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता। अक्षय वट कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज हम आपको सुनाएंगे चित्रगुप्त श्रीवास्तव से विनय श्रीवास्तव की बातचीत, वृद्धावस्था और सामाजिक सरोकार। गजलों का लुत्फ उठाएगा कहकशा में 9:30 पर। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद गुलाम अली खां का ख्याल गायन का।

और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल रात 9:30 पर सुनेगा पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आराधना कार्यक्रम होगा 6:05 पर। स्वास्थ्य चर्चा में 6:45 पर कल आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता, दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीक। कृषि जगत कार्यक्रम होगा 6:45 पर। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का 78वां भाग सुनेगा सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और 12:15 पर सुनेगा शाहिद परवेज का सितार वादन। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर। अंशुला सिंह के स्वर में गीत और भजन सुनाएंगे सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में, और शाम 7:45 पर कलाकार होंगे पंकज श्रीवास्तव। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी 10:05 पर होगा, और दिन में 2:30 पर आप सुन सकेंगे लोकगीत। सुबह 10:05 पर जिन कलाकारों को आप सुनेंगे वो हैं रश्मि टंडन, दुखी राम और साथी, और दिन में 2:30 पर जिन कलाकारों को आप सुन सकेंगे वो हैं पंचम लाल यादव और साथी, शशि बाला जैन और मुकेश बेगाना और साथी। शाम धरती के गीत कार्यक्रम से शुरू होगी हमारी सभा, दूसरी सभा 5 बजे, कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम होगा हमारे संग्रहालय से, इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा भारतीय चिंतन धारा में मानवीय मूल्य। प्रतिभागी होंगे सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत सुनेगा 11 बजे। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीत आप तक पहुंचाएंगे हेलो फरमाइश के साथ 12:30 पर, प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर बहनें सुनेंगी डॉक्टर शिप्रा से नेहा गुप्ता की बातचीत, कैसा हो धात्री का आहार। हेम श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत, और रसोई घर से अंक में बताएंगे परवल की मिठाई की रेसिपी। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर। कल आप सुनेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर केंद्रित प्रेरणा पुंज। पंचायत घर में 6:30 पर सुनाएंगे कमला प्रसाद पाल और साथियों के स्वर में लोकगीत। हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर सुनेगा डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल की वार्ता, भारतीय ज्ञान में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। और सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। 6:20 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्।

0: प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। अथ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मिथ मच्छार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। शीघ्र स्वास्थ्य लाभाय च तस्मै शुभकामनाः अयच्छत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे आयोजितस्य जीविंशति व्यापार मंत्रिणां सम्मेलनं पृथक् फ्रांस कनाडा सऊदी अरेबिया दक्षिण कोरिया देशानां स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। कृतज्ञ राष्ट्रम् अद्य महात्मा गांधिने पूर्व प्रधानमंत्रिणे लाल बहादुर शास्त्रिणे च तयोः जन्म जयन्त्यवसरे श्रद्धांजलिम् अर्पयति। अपि च एशियन गेम्स क्रीडा महोत्सवे अद्य भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्णपदकानि विजितानि। पदकताल्यां भारतं 75 पदकानि अर्जित्य पञ्चमस्थाने विद्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मिथ मच्छार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सह चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तेल अवीव नगरं प्रति गच्छतां 80+100 यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मच्छार इत्यनेन प्रधानमंत्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृतं विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहसः कुतः प्राप्तमिति अपि कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्णं राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथासमयम् उचितनिर्णयेन क्षमतया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापसमये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमंत्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः अपि तेन प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य उपरि आक्रमणस्य अभियुक्तः सहचालकः अबुधाबिरी नगरं प्रति स्थान्तरितः। सऊदी प्रेस एजेंसी इत्यनेन सऊदी गृहमन्त्रालयस्य अधिकारिकस्रोतस्य उद्धरणं कुर्वता सूचितं यत् चिकित्सकीय अनुमतिं प्राप्य उभौ विमानचालकौ अबुधाबी नगरात् देशं त्यक्तवन्तौ। अबुधाबी स्थितः भारतीय दूतावासः ह्यः सूचितवान् यत् कैप्टन मच्छारः संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्तः, अथ च स्मितः शीघ्रम् अनारोग्यं प्राप्नोति। राष्ट्रम् अद्य राष्ट्रपितुः महात्मगान्धिनः 75+100 तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां राजघाटस्थले महात्मगान्धिनः समाधिस्थले सर्वधर्मप्रार्थनासभा आयोजिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रातः सर्वधर्मप्रार्थनासभायां भागं गृहीत्वा महात्मगान्धिने समाधौ पुष्पाञ्जलिं समर्पितवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च महात्मगान्धिनः समाधौ श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु

0: पर बोतल या चाय का कप इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम राम।
1: आहो लल्लन भैया, का हाल चाल बा? खेती किसानी कहो, बड़े दिनक बाद मिला भैया।
0: हाँ भैया बैजू, देखा हम खेती किसानी में ज्यादा आजकल व्यस्त रहे तो यह से समय कम मिल पाएस, और खेती किसानी बढ़िया चला था।
1: नहीं बहुत
0: और
1: बढ़िया भैया, हम तो कही कि खरीफ का मुख्य फसल जो धान बा उसमें तो बाल उलाई गई होए भैया,
0: बाल उलाई के बा और बढ़िया से एकदम हरियरान बा सब कुछ, और देख के जौन बा ना अपने खेती के इतना आनंद आवत है कि किसान लोग तो यही बात बा कि भैया उनका अगर खेती अच्छी बा ना तो उनका सब कुछ अच्छा बा।
1: भैया कहा गया बने, खेत में हरियाली तो घर में खुशहाली,
0: घर में खुशहाली
1: भैया हो यही नाते ज्यादा अच्छा बा धान की फसल की यहाँ साल बराबर पानी बरसा गवा, जरूरत नहीं पड़ा कि अलग से दही जाए,
0: अलग से दे के
1: जब भी पानी जरूरत रहा बरसा गवा
0: बरसा गई। तो बहुत अच्छी बात कहे कि भगवान का भी कृपा रही है बार किसानन के ऊपर। तो खेती
1: एक बात भैया लल्लन ना कि हम कही देखा, अब तो धान का जोन खरीफ का मुख्य फसल धान कुछ जनेक भाई बाल नहीं करत, वो कुछ जनेक पाकत भी बाटे है, जेकर जैसे प्रजाति रहे जैसे जे लगाए रहा ओकर तैयारी कर धन कटाई मड़ाई के साथे साथे जोन खेत खाली है भैया रबी की तैयारी चलत, खास करके चना मटर आलू बोवे के लिए ओकर तैयारी भी चलत बे, तो ये सब तो बात होते ही रहा। तो हो लल्लन हम कही देखा आज न एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जवन बाटे है अपने देश में, देखा समय समय पे ऐसा महापुरुष पैदा भए न जी अपने कर्म से अपने उपदेश से नाम कई गेन, देश का नाम रोशन केहन, देश के आज़ादी के लिए बहुत कुछ केहन, उनके देखा जाए तो उनकर कर्म उनकर उपदेश उनकर जोन शिक्षा आज भी प्रासंगिक बाटे अगर वो पे अमल किया जाए तो।
0: बहुत सही बात कहे हो बैजू भैया, और आज के दिन बहुत विशेष बा कि आज 2 अक्टूबर हवे, और 2 अक्टूबर भारत के 2 महान विभूतियन का जो बा जन्मतिथि हवे, एक तो महात्मा गांधी जी का और एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये दोनों लोगन के देश के स्वतंत्रता दिलावे में, उकरे बाद देश के स्थिर करे में, देश के विकास में बहुत ज्यादा योगदान बा, और इनकर जौन योगदान बा ना वो केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी बहुत गौरव के रूप में मनावा जाता।
1: सही कहे भैया, तो हम कही ना हम तो भाई जयंती मनावे के मकसद तब पूरा हुए जब उनके कर्म के उनके शिक्षा पे उनके उपदेश जौन कुछ केहरन भैया उनके पग चिन्ह पे चल ही अपने देश के आजादी के अक्षुण बनाए रखी है, और जोन बाटे है देश के विकास में योगदान दे
0: भी। सही बात बाकी भैया, देखा जो जितना भी महान विभूति हैं तो केवल उनके दुई जैसे आज जयंती बा तो केवल एक दिन के रूप में मत मनाओ,
1: नहीं नहीं भैया
0: उनके भैया जोन कर्म बना वो हमेशा के रूप में कि जोन वो अपन जीवन में कार्य किए हैं देश के एक करे में, देश के हिंसा मुक्त करे में, देश के स्वतंत्रता दिलावे में, तो ओकर जोन बा अच्छे से उनके मनावे चाहे, लोगन के ध्यान रखे चाहे, उनके योगदान के भुलावे नहीं चाहे, और लोगन के बीच में उनके योगदान के बतावे चाहे।
1: कहे न भाई महात्मा गांधी के कितना बड़ा योगदान रहा जोन बाटे देश के आजादी में भैया, चाहे नील विद्रोह वाला भाई चंपारण
0: चंपारण से शुरुआत कहे रहे
1: रहे
0: बाद भैया खेड़ा में भ फिर अहमदाबाद में
1: अहमदाबाद में
0: भरे बाद लगातार जोन बा उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जोन चला ना, असहयोग आंदोलन फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर भारत छोड़ो आंदोलन,
1: उकरे बाद देश के देखा जाए तो नमक आंदोलन में अकेले चला रहे धीरे धीरे इतना लोग हो गए तो अंग्रेज ही ली गए जब केतली में पानी बनाए के उबाल के नमक बनाए रहे, नमक आंदोलन दांडी मार्च आज भी प्रसिद्ध बात
0: आज भी प्रसिद्ध। और भैया इही तरीके से लाल बहादुर शास्त्री भी देश की स्वतंत्रता के बाद

0: जो उनकी बहुत आर्थिक रूप से देश संपन्न नहीं रहा,
1: ना ना
0: वह समय
1: नहीं
0: बड़ी आर्थिक स्थिति खराब रही, भुखमरी की स्थिति रही, लेकिन
1: कहे
0: हरित
1: ना कहे।
0: क्रांति
1: हाँ
0: के बाद जो
1: हाँ
0: नारा दे रहे हैं जय जवान जय
1: जय
0: किसान,
1: किसान भैया।
0: ये जय किसान के जो नारा रहे लाल बहादुर शास्त्री का ना, आज भी किसान लोगों के याद रखते हैं कि जो योगदान रहा उनकर, और आज जो देश अपन खाद्य में आत्मनिर्भर भव बा ना,
1: हाँ कहीं
0: ओमन
1: ना कहीं वहीं से जोन
0: वहीं से
1: बाटे,
0: शुरुआत
1: खास
0: भव।
1: करके जोन पंचवर्षीय योजना चलिन, धीरे धीरे आत्मनिर्भर भवा देश, देश का विकास भवा। हम तो कही लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी, कर्मनिष्ठा आज भी प्रेरित करत
0: आज
1: जोन
0: भी
1: बा।
0: प्रेरित करत
1: भाई
0: है।
1: प्रधानमंत्री होते हुए भी इतना ईमानदार रहन जोन बाटा, एकदम सादगी भरा जीवन रहा, कहा भी ना जा सकत और के बारे में
0: सही
1: जोन।
0: बात तो भैया कि जौन महान विभूति रहन, सबके चाहे कि इनके जीवन से प्रेरणा ले, अपने जीवन में उकर उपयोग करे और उके लोगन के भी उनके योगदान के बतावे।
1: सही कहा भैया। तो आज के दिन संकल्प ले चाहे कि हम सब उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलब जोन बाटे।
0: बजू भैया
1: हाँ
0: चलते एक अपने किसान के लोग गीत सुनवा दिया जाए।
1: सही कहा भैया। तो देखा गीत गौ नहीं सुनवाई जाए, कार्यक्रम के बारे में कुछ बताई दे आगे का का सुनवाई जाए।
0: हाँ बताई
1: तो
0: देता हूँ
1: भैया
0: पहले।
1: हो देखा स्वच्छता का जोन काम बा भैया, में गांधी जी के बड़ा योगदान रहा जोन बाटे, अस्पृश्यता उन्मूलन से लेके। तो आज ऐसे एक ठीक कार्यक्रम जाए राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का, किसान भाई सुनिए, साथे साथे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही थी, साहस और समर्पण के प्रतीक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पे एक वार्ता बाटे, एका सुनवाओ उन पहले वही बताओ दे भाई, छूछ पै लगी जो झन
0: हाँ
1: गीत
0: तो एक
1: गौनाई
0: लोकगीत
1: हो।
0: बा जोन
1: हाँ
0: रघुराज सिंह और साथी का, ये पहले विकास गीत ही सुनवाओ जाए, ओकरे बाद
1: हाँ बात
0: बात
1: बात
0: कई
1: कही
0: होत रहे।
1: सुने किसान।

जैसे चमक गगन में चांद गोरिया

0: की एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: भैया हम कहीं देखा ये जौन गौनई भी हो गई रघुराज सिंह संघाती के साथ में सनेश किसान भाई सुने ना
3: सुन ले हन।
2: अब देखा हम बात बत कही कहते रहे साफ सफाई स्वच्छता के बारे में भाई कि स्वच्छता बहुत जरूरी भी काफी कुछ बेरामी तो भाई गंदगी से हो तो एक राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के रूप में अपन सरकार शुरू कह रही है तो का कुछ है देखा एक जानकारी दे बटे राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन पे बिनोवर शर्मा जी से सुरेश कुमार के बात बत कही भाई वे किसान भाई का सुने
4: साफ सफाई स्वच्छता का बड़ा महत्व होते भैया देखा चाहे गांव होए चाहे शहर होए अगर साफ सफाई बढ़िया बना रहते तो नाना प्रकार के जौन रोग होते वह रोग से भी छुटकारा मिलत है। तो आज अपने कार्यक्रम में भैया राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन भैया इकाबा इस विषय में जानकारी दे खातिर अपने बीच श्री बिनोवर शर्मा भैया आए हैं जौन भैया देखा ये साफ सफाई और तरह के बहुत विशेषज्ञ हैं जानकार हैं तो अपने कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे पहले ये जानना चाहते थे कि ये राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन इकाबा और ये बारे में आप फरिया कि बताओ
5: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन
4: हाँ
5: को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है
4: हाँ
5: जबकि स्वच्छ भारत अभियान या राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन कोई नई चीज नहीं है
4: हाँ।
5: इससे पहले भी भारत में स्वच्छता अभियान लागू था
4: जी
5: लेकिन तब इसे निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता था
4: हाँ।
5: वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
4: हाँ।
5: द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से हुई थी
4: हाँ।
5: इस अभियान को भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था
4: हाँ।
5: इसका लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जन्मतिथि पर देश को स्वच्छ बनाना है
4: अच्छा
5: जो कि गांधी जी का सपना था
4: हाँ।
5: इसमें योजना का विशेष रूप से परिचय इस अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना
4: हाँ।
5: देश में प्रदूषण को कम करना
4: अच्छा।
5: तथा देश की नदियों को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनाना
4: हाँ,
5: शामिल है
4: अच्छा
5: साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना
4: हाँ,
5: भी है ताकि वो स्वच्छ रहें। स्वच्छता का स्वास्थ्य से गहरा

0: संबंध होता है, और
1: जी
0: स्वस्थ नागरिक ही उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी
1: अच्छा
0: बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन की शुरुआत की ताकि देश को एक स्वस्थ देश बनाने के साथ साथ एक उन्नत राष्ट्र भी बना सकें।
1: अच्छा तो भैया अपने देश में जौन है ये राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की जरूरत काहे को पड़ी ताकि जौन है यह राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन बने।
0: देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की आवश्यकता दूरदृष्टि के आधार पर पड़ी है।
1: हाँ हाँ
0: जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है
1: जी
0: और प्रगति की राह पर अग्रसर है।
1: हाँ
0: अगर भारत को इस राह पर बिना रुकावटों के आगे बढ़ना है
1: हाँ हाँ
0: तो उसे अपने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार करना होगा।
1: अच्छा
0: इस क्षेत्र में सुधार कर इस क्षेत्र में लगने वाले अतिरिक्त पैसों को विकास के क्षेत्र में लगाना होगा।
1: जी
0: ये संभव हो सकता है केवल स्वच्छता और उससे जुड़ी आदतों को अपनाकर हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर सकते हैं।
1: हाँ
0: आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में इस अभियान के पहले लगभग 60

0: की जौन है यह राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन बने?
1: देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की आवश्यकता दूरदृष्टि के आधार पर पड़ी है।
0: हाँ,
1: जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है
0: जी,
1: और प्रगति की राह पर अग्रसर है।
0: हाँ,
1: अगर भारत को इस राह पर बिना रुकावटों के आगे बढ़ना है तो उसे अपने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार करना होगा।
0: अच्छा,
1: इस क्षेत्र में सुधार कर इस क्षेत्र में लगने वाले अतिरिक्त पैसों को विकास के क्षेत्र में लगाना होगा
0: जी।
1: ये संभव हो सकता है केवल स्वच्छता और उससे जुड़ी आदतों को अपनाकर हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर सकते हैं।
0: हाँ,
1: आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में इस अभियान के पहले लगभग 60% लोग खुले में शौच करते थे
0: जी।
1: ये बीमारियों को खुला निमंत्रण है।
0: हाँ,
1: जिसके कारण गंभीर बीमारियां भारत में तेजी से बढ़ती जा रही हैं।
0: हाँ हाँ,
1: इसी कारण भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक थी
0: जी।
1: सिर्फ यह नहीं, भारत के हर कस्बे, नगर तथा महानगरों में कचरा सड़कों पर यूं ही पड़ा रहता है,
0: हाँ
1: जो
0: हाँ,
1: बीमारियों को पनपने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। इसीलिए मैंने स्वच्छता को स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने वाले खर्च को कम करने का साधन बताया था।
0: अच्छा,
1: दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, मुंबई जैसे महानगरों में सीवेज की समस्या आज भी है, जो विश्व में भारत की छवि को भी खराब करता है।
0: जी,
1: इन समस्याओं से निपटने के लिए ही देश को स्वच्छ भारत अभियान या राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की जरूरत पड़ी है।
0: अच्छा भैया, हम आपके जौन है ये राष्ट्रीय मिशन के जौन जरूरत बा अपने देश में, साथे साथ पूरे देश दुनिया में, कि भैया देखा अपन चारी ओर, चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, चाहे अड़ोस हो चाहे पड़ोस हो, सब जगह साफ सुथरा बना रहे ताकि कोनो तरह के रोग बिरामी न घेरे। साथे साथ हम आपसे यह जानना चाहे थे कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के पूरा पूरा और का उद्देश्य बा?
1: जी, इसमें उद्देश्य में इस मिशन का पहला और प्रमुख उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना है।
0: अच्छा,
1: देश में सड़कों पर यूं ही कचरा फैला रहता है जो प्रदूषण और बीमारियों को पनपने में मदद करता है
0: जी,
1: इसे दूर करना है।
0: हाँ,
1: देश में खुले में शौच की समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।
0: हाँ,
1: देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाना ताकि वायु प्रदूषण और उससे होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके।
0: जी,
1: हाथों से मल एवं सीवेज साफ करने की कुप्रथा को दूर करना है।
0: हाँ हाँ,
1: देश के नागरिकों की स्वच्छता संबंधी आदतों में सुधार कर इसे जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाना है।
0: हाँ हाँ,
1: विश्व में भारत की छवि का सुधार करना भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है।
0: जी, साथ साथ हम आपसे एक बात और ये जानना चाहते कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन से लाभ कौन कौन बा?
1: इससे हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ है। इस मिशन का पहला लाभ यह ही है कि देश में स्वच्छता की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।
0: हाँ हाँ,
1: इस अभियान के तहत पेड़ लगाने की वजह से देश के वन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी।
0: हाँ हाँ,
1: भारत के महान नगरों की जो वर्तमान स्थिति है वो मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है
0: जी,
1: इस मिशन के बाद इनकी स्थिति में सुधार होगा।
0: हाँ,
1: अतः अंत में सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस अभियान से देश की छवि विश्व में एक स्वच्छ, सुंदर और उन्नत राष्ट्र की होगी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी भैया। देखा कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन से लाभ है लाभ बा, साथे साथ हम आपसे एक बात और ये जानना चाहे थे कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के जौन बा सहयोगी जौन है कुछ शाखा बा, तो ये कौन कौन से शाखा?
1: इसमें राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत चलने वाली अभियानों के नाम इस प्रकार से लिया जा सकता है, जैसे दरवाजा बंद अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, स्वच्छ भारत अभियान शहरी, स्वच्छ विद्यालय अभियान। उसके साथ साथ वर्तमान सरकार सभी विभाग को सम्मिलित कर अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है
0: जी।
1: जैसे कृषि व स्वास्थ्य विभाग में संचारी रोगों पर नियंत्रण हेतु सफाई अभियान चलाना है।
0: हाँ,
1: ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चलने वाले अभियान हैं। दरवाजा बंद अभियान राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का एक ही अंग है
0: जी।
1: 30 मई 2017 को ये शुरू किया गया था।
0: हाँ,
1: देश भर में खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इसे शुरू किया गया
0: जी।
1: ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे आरंभ किया गया था।
0: हाँ,
1: इसका उद्देश्य लोगों

0: में शौचालय से संबंधित व्यवहार में परिवर्तन लाना है,
1: जी
0: क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों सरकार के शौचालय बना के देने के बावजूद उसका उपयोग नहीं करते हैं।
1: जी
0: इन्हीं आदतों को बदलने के लिए ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी थे। ये अभियान राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का एक ही हिस्सा है।
1: जी साथ ही साथ हम आपसे और ही जानना चाहते हैं कि और भी शाखाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में जो अपन गांव गिराव के भैया देखा एक अभियान सहयोग की भावना से, अगर किसान भैया बहनी हरेन और सब मिलजुल के हम चाहते कि अगर साफ सफाई करें अपने गांव के गलियारा माँ रास्ता माँ, साथ ही साथ जो नाली नाला हैं, तरह तरह के जो उन पानी के बयार जो उन है कि और तरह तरह के कीचड़ भी जो उन है जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये कीचड़ से मुक्ति मिले बदे और साथ ही साथ ये कीचड़ से तरह तरह के जो उन है कीटाणु वायरस मच्छर भी पनपत हैं, तो हम समझे थे कि बहुत तरह के रोग फैलत हैं और अपने गांव गिराव के बीच में यहाँ तक कि गंदगी अपने घर में जौन है वो कब भैया देखा अपने श्वास नली से जौन है ग्रहणों करत हैं, तो ऐसे तरह तरह की बिरामी फैलत है। तो भैया हम आपसे जानना चाहते कि अपने जौन है ग्रामीण भैया बहनी हर इनका का योगदान है, कैसे करें इस बारे में बताएं।
0: जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं कि ये अभियान भारत के ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ है।
1: जी
0: इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का प्रबंध करना और प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्षारोपण करना है।
1: हाँ हाँ।
0: ग्रामों में शौचालयों का निर्माण करना और लोगों को इनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना।
1: जी
0: इसके अलावा गाँव में कचरा प्रबंधन करना तथा लोगों को इससे जोड़कर रोजगार मुहैया कराना है।
1: हाँ हाँ।
0: इसके साथ साथ जो शहरी में है, तो जैसे आप इसके नाम से मालूम है कि ये शहरी योजना है, ये अभियान शहरी इलाकों से जुड़ा हुआ है और शहरों में कचरे का प्रबंधन करना और सड़कों पर फैले कचरे का निदान करना इस अभियान के अंतर्गत आता है।
1: जी
0: शहरों में सीवेज की समस्या का समाधान करना तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान की प्रमुख बातें हैं।
1: जी
0: उसी तरह से स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया जा रहा है, तो विद्यालय में स्वच्छता का ऋण है बच्चे।
1: जी
0: जो हमारे बच्चे हैं, सही मायने में यह अभियान स्वच्छता अभियान की प्राणवायु है।
1: हाँ हाँ।
0: क्योंकि इसे बच्चे संचालित करते हैं।
1: जी
0: और वहीं देश का भविष्य भी है।
1: हाँ।
0: यानी आने वाले समय में स्वच्छता समाज में एक अहम स्थान हासिल करेगी।
1: हाँ।
0: जो किसी भी विकसित देश की पहचान होती है।
1: जी और साथ ही साथ भैया हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अपने गांव गिराव में होए चाहे देखा शहर में होए, इस राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के देखा समक्ष बहुत तरह की चुनौतियों भी हैं।
0: जी जी
1: उस चुनौतियों में तरह तरह के अड़ंगा आवत है, तरह तरह के समस्या आवत है, तो इस समस्या और इस चुनौतियों से कैसे सामना होए और इसे कैसे जौन है आगे मुक्ति मिले, तो यह बारे में अपन सुझाव बताऊँ।
0: जी ये चुनौतियाँ जो है, जैसे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान की पहली चुनौती है।
1: जी
0: क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत से लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है।
1: हाँ हाँ।
0: यही वजह है कि भारत में खुले शौच करना एक आम बात है।
1: जी
0: खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ लोग शौचालय के प्रयोग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: बात अगर शहरी क्षेत्रों की करें तो वहाँ भी लोगों की मानसिकता में भी ज्यादा फर्क नहीं है।
1: हाँ।
0: वो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं और शहर को साफ रखने का काम नगर पालिका या नगर निगम जैसी संस्थाओं का काम समझते हैं।
1: जी
0: लोग स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं, यही सबसे बड़ी चुनौती इस अभियान के समक्ष है।
1: अच्छा, साथ ही साथ ये चुनौतियों से समाधान बदे हम आपसे जानना चाहते थे कि कौन बातन का ध्यान रखें ताकि इसके समाधान हो सके।
0: समाधान है तो लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ही इसकी पहली समस्या का समाधान है।
1: हाँ।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण करने के लिए सरकार की सहायता और साथ में शौचालय का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना।
1: जी
0: इसके अलावा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना और हाँ। साथ ही पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।
1: अच्छा।
0: साथ ही शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना कि अपने शहर को गंदा ना करें। यदि इन सब बातों पर अमल किया जाए तो यकीनन ही इस राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन कामयाब होगा, हमारे देश का एक स्वस्थ एवं उन्नत राष्ट्र बनने का सपना

0: साकार होगा। राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी का सपना था,
1: जी
0: जिसके संकल्प को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं
1: हाँ।
0: और संभवतः सफलता की ओर बढ़ भी रहे हैं हम लोग।
1: भैया देखें आपन देश और हम सब भैया बहनी हरिन की कर्तव्य कि हम सब लोग मिलजुल के इस राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन अभियान जो चलावा जा रहा है इस मिशन में सब लोगन का बढ़ चढ़ के भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव गिराव घर के अगल बगल जौन भी खाली जगह हों ऐसे जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा अपन पेड़ पौधा लगावें और साथ ही साथ जौन भी गंदगी होए अपने घर से भीतर से लेके बाहर तक की उनका सबका साफ सफाई करें। भैया श्री विनोबा शर्मा जी आप हमारे कार्यक्रम में आएं और राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के बारे में जौन फरियाए की जानकारी दें ये जानकारी दे खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया देखा बड़ा बढ़िया से विस्तार से विनोबा शर्मा और राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के बारे में कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का हुआ
3: और कब से चला ये जोन बा है।
2: हाँ उकरे अलावा जोन बंद दरवाजा कार्यक्रम रहा भारत सरकार का निर्मल भारत अभियान रहा वो कैसे स्वच्छता मिशन के रूप में परिणित
3: वाला।
2: हाँ जो स्वच्छता मिशन भारत सरकार शुरू कह रही है 2 अक्टूबर के शुरू कह रही
3: है
2: ऐसे भी एक महत्वपूर्ण
3: और राजघाट से गांधी जी के जयंती के अवसर पर जो है तो हम तक कई भैया हो कि साफ सफाई बहुत जरूरी बा चाहे स्कूल हो चाहे गांव हो घर गलियारा हो अगर जितना साफ सफाई रखबा भाई काफ़ी कुछ बीमारी से दूर रहा
2: निश्चित रूप से
3: भैया हो काहे से कि जितना भी रोग पैदा करे वाले जीवाणु कीटाणु वायरस जौन भी हो थिन मक्खी भैया गंदगी पर बैठा थी वो जाए के कहूँ खाना पर बैठा थी कहूँ कुछ बैठा थी तो उससे बीमारी हो तो भैया तो जरूरी बा कि साफ सफाई रहे और खास करके जौन हमारे पानी पिए के स्रोत हैं भैया ओकरे आसपास गंदा पानी ना जमा हो कहे से वह जात था तो वह पिए के पानी आवत और नुकसान करा था
2: निश्चित रूप से भैया वो और नुकसान करा था। अच्छा जो एक और वार्ता बा
3: हाँ।
2: साहस और समर्पण के प्रतीक श्री लाल बहादुर शास्त्री ये आकांक्षा त्रिपाठी जी का वार्ता बा आवे किसान भाई की सुनवावा जाए आज।
3: हाँ हाँ सुनवाए भैया
2: फिर बात कही हुए।
4: नमस्कार आज मैं जिस महान व्यक्तित्व पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं, उनका जीवन भारतीय इतिहास में सादगी ईमानदारी साहस कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र सेवा का अद्भुत उदाहरण है। वह महान व्यक्तित्व हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है शांति और साहस के प्रतीक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जब हम किसी राष्ट्र के महान नेताओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने उनके बड़े बड़े पद भाषण और राजनीतिक उपलब्धियां आती हैं, लेकिन शास्त्री जी का व्यक्तित्व हमें एक अलग संदेश देता है कि महान बनने के लिए पद बड़ा होना आवश्यक नहीं बल्कि चरित्र बड़ा होना आवश्यक है। उनका जीवन हमें बताता है कि सादगी कमजोरी नहीं है, विनम्रता कमजोरी नहीं और शांति का अर्थ कायरता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी अत्यंत दृढ़ और साहसी निर्णय ले सकता है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका जीवन आर्थिक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। उनके पिता का निधन उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था और उनकी माता ने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। इन परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व में संघर्ष आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता का गुण विकसित किया। शास्त्री जी बचपन से ही राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित थे। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी महात्मा गांधी के विचारों और उनके जीवन से गहराई से प्रभावित हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल की यातनाएं भी सही। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि व्यक्ति का संकल्प उनकी दिशाएं निर्धारित करता है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर यही उपाधि उनके नाम का स्थायी हिस्सा बनी। शास्त्री जी केवल राष्ट्रीय आंदोलनों में ही भाग लेने वाले नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई।

उनके लिए जेल जाना व्यक्तिगत कठिनाई नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का हिस्सा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उनका जीवन सत्ता और सुविधाओं का जीवन नहीं बना। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कर्तव्य के प्रति उनके निष्ठा। उनका जीवन यह बताता है कि राष्ट्र सेवा केवल बड़े पदों पर बैठकर नहीं की जाती है बल्कि अपने प्रत्येक दायित्व को ईमानदारी और निष्ठा से निभाकर की जाती है। शास्त्री जी के जीवन में ईमानदारी और नैतिकता की भूमिका विशेष थी। रेल मंत्री के रूप में कार्य करते समय एक गंभीर रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह घटना आज भी सार्वजनिक जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व का उदाहरण मानी जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल सफलता का श्रेय लेना नहीं बल्कि असफलता की स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना भी है। नेतृत्व की वास्तविक पहचान इसी बात से होती है कि व्यक्ति अपने पद और अधिकार का उपयोग किस प्रकार से करता है। शास्त्री जी ने अपने आचरण में यह सिद्ध किया कि नैतिकता केवल भाषणों का विषय नहीं है बल्कि व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के पश्चात 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। यह वह समय था जब भारत अनेक चुनौतियों से गुजर रहा था। देश में आर्थिक कठिनाई, खाद्यान्न संकट और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर था। ऐसी कठिन परिस्थिति में शास्त्री जी ने अत्यंत सरल और दृढ़ नेतृत्व प्रदान किया। वे कम बोलते थे लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में स्पष्टता और उद्देश्य होता था। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व की आवाज ऊंचाई से नहीं बल्कि विचारों की दृढ़ता और कार्यों की विश्वसनीयता से होती है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे प्रसिद्ध संदेश जय जवान जय किसान, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि उस समय राष्ट्रीय आवश्यकता की अभिव्यक्ति थी। जवान देश की सुरक्षा का आधार है और किसान देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश में सुरक्षा और खाद्य दोनों मोर्चों पर आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। ऐसे समय में शास्त्री जी ने सैनिक और किसान दोनों के योगदान को समान रूप से महत्व दिया। उनके इस संदेश का व्यापक अर्थ यह था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं बनती बल्कि किसानों, सैनिकों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, युवकों और सामान्य नागरिकों के सामूहिक योगदान से राष्ट्र मजबूत होता है। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में शांति और साहस का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वे शांति में विश्वास रखते थे लेकिन शांति को कमजोरी नहीं मानते थे। 1965 के युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के संबंध में उन्होंने दृढ़ नेतृत्व प्रदर्शित किया। साथ ही युद्ध के बाद शांति और सामान्य संबंधों की दिशा में कूटनीतिक प्रयासों को भी समर्थन दिया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा का हस्ताक्षर हुआ। इस घोषणा में दोनों देशों ने सामान्य और शांतिपूर्ण संबंध बहाल करने और विवादों को शांतिपूर्ण माध्यम से सुलझाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसी प्रकार शास्त्री जी के व्यक्तित्व में हमें एक महत्वपूर्ण संतुलन दिखाई देता है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साहस और स्थायी शांति के लिए संवाद। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व के दो महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत लंबा तो नहीं रहा लेकिन यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। एक ओर देश की सुरक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर खाद्यान्न समस्या और सीमित साधनों की चुनौती। आत्मविश्वास पैदा करना होता है। शास्त्री जी ने जनता में अनुशासन, त्याग और सहयोग की भावना अपनाने को आह्वान किया। उन्होंने जिस सादगी और संयम की बात की उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया। यही कारण है कि उनका नेतृत्व केवल राजनैतिक नेतृत्व नहीं रहा है बल्कि नैतिक नेतृत्व का भी उदाहरण माना जाता है। शास्त्री जी का जीवन अत्यंत सादा रहा है। आज हम सफलता को अक्सर बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी और बड़े पद से जोड़ते हैं लेकिन शास्त्री जी ने हमें सफलता की एक अलग परिभाषा दी। उन्होंने सफलता का अर्थ ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना, देश की सेवा करना और व्यक्तिगत जीवन में शांति बनाए रखने से संबंधित किया। उनका जीवन विद्यार्थियों के लिए

0: विशेष रूप से प्रेरणादायक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अनेक बार हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन कम हैं, अवसर सीमित हैं और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। शास्त्री जी का जीवन हमें बताता है कि संसाधनों की कमी से अधिक महत्वपूर्ण संकल्प की शक्ति होती है। आज के समय में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना भी है जिनमें चरित्र, जिम्मेदारी, नेतृत्व, सामाजिक संवेदना हो। इस संदर्भ में शास्त्री जी का जीवन हमारे लिए एक जीवंत पाठशाला है। उनके जीवन से हम ईमानदारी, सादगी, अनुशासन, निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व, देशभक्ति, विनम्रता, साहस और त्याग जैसे अनेक गुण सीख सकते हैं। ये गुण केवल राजनेताओं के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्रशासकों और प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए शास्त्री जी का जीवन केवल इतिहास का विषय नहीं, एक शिक्षक को भी कई बार अनेक कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है। एक शोधार्थी को अपने शोध में अनेक असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक विद्यार्थी को प्रतियोगिताओं में असफलता और अनिश्चितताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और साहस के साथ शांतिपूर्ण एवं विवेकपूर्ण रास्ते को चुनना चाहिए। आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति में से एक है उसकी युवा शक्ति, लेकिन युवा शक्ति तभी राष्ट्र शक्ति बनती है जब हम सही दिशा, अनुशासन और जिम्मेदारी से अपना कार्य करें। शक्तियों को समझना और देश हित में किसानों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान, युवक, शिक्षकों के साथ अपने विचारों को आगे प्रेषित करना भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि में शास्त्री जी का संदेश आज भी महत्वपूर्ण है और हमें याद दिलाता है कि देश की प्रगति में समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ताशकंद घोषणा के बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष का रहा, लेकिन उस छोटे से समय में उन्होंने भारतीय सार्वजनिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका जीवन और उनके आदर्श भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बने रहे। ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान के संबंधों में उस समय शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल थी। शास्त्री जी की विरासत केवल उनके राजनैतिक पद तथा निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवन मूल्यों में भी दिखाई देती है। किसी भी महान व्यक्ति की वास्तविक विरासत केवल उसकी उपलब्धियां नहीं होती हैं, बल्कि उन मूल्यों में होती हैं जिन्हें वह समाज के लिए छोड़ जाते हैं। शास्त्री जी ने हमें सादगी के मूल्य, ईमानदारी का साहस, कर्तव्य का बोध, शांति का संदेश, राष्ट्र के प्रति समर्पण और कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रखने की प्रेरणा दी। आज जब यह दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक हमारे जीवन को बदल रही है और समाज नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब हमें केवल ज्ञानवान लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके पास ज्ञान के साथ चरित्र, कौशल के साथ जिम्मेदारी और शक्ति के साथ संवेदनशीलता हो। शास्त्री जी का जीवन इन मूल्यों का प्रेरणादायक उदाहरण है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से यह सीख मिलती है कि महानता दिखावे में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। वे कद में छोटे थे लेकिन व्यक्तित्व में विराट थे। वे शांत थे लेकिन कमजोर नहीं। वे विनम्र थे लेकिन निर्णय लेने में दृढ़ थे। वे सरल थे लेकिन उनके संकल्प असाधारण थे। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा साहस वही है जो शांति की रक्षा करे, सच्ची शक्ति वह है जो जिम्मेदारी के साथ प्रयोग हो, और सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं उदाहरण बनकर दूसरों को प्रेरित करे। आज हम सबको ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में शास्त्री जी के कुछ मूल्यों को अवश्य अपनाएंगे। ईमानदारी, सादगी, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, साहस और राष्ट्र सेवा। जब हम उनके प्रसिद्ध संदेश जय जवान जय किसान को याद करें, तो उसके पीछे छिपी उस व्यापक भावना को भी समझें। राष्ट्र का विकास हर नागरिक के योगदान से होता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।
1: हाँ भैया
0: भैया
1: देखा, साहस और समर्पण के प्रतीक श्री लाल।

0: बहादुर शास्त्री, इन पर आकांक्षा त्रिपाठी जी की वार्ता रही। बड़े अच्छे ढंग से शास्त्री जी के पूरे व्यक्तित्व के अपने भाषा के माध्यम से ये चरितार्थ करें, अच्छे तरीके से बताएं कि उनकर का का योगदान रहा देश में।
1: ना कहाँ जन्म भ कब जन्म भव का केहन और उनसे का प्रेरणा ले चाहे, हमें सभी के का संकल्प ले चाहे,
0: निश्चित रूप
1: खास
0: से
1: करके जय जवान जय किसान का परिभाषित अच्छे से कहें।
0: हम सब किसानन के उससे प्रेरणा ले चाहे कि भाई शास्त्री जी के कितना योगदान बा कि आज हम लोग खेती किसानी में आत्मनिर्भर रही और न कि आत्मनिर्भर रही निर्यात भी करत है दूसरे देशन के।
1: कहे न भैया हो कहा गया बन ना कि सीमा पे जवान खेत में किसान देश का शान।
0: देश का
1: तो भैया हो अपन खेत अपन किसान भाई अनाज पैदा करत हैं जौन सबका पेट पाला थे जौन।
0: अच्छा अपन जो खेती किसानी होता भैया तो किसान भाई लोग ये ध्यान दें कि मौसम के अनुसार ही अपन खेती किसानी करें। देखे ये समय जो मौसम बा बधैला मौसम में घाम भी बढ़िया लागत है धूप लागत है। एकर ध्यान रखें कि मन इससे बीमार न हो धूप में। अपन सुबह शाम खेती किसानी ध्यान दे के अपन करें और
1: हो ये धूप जोन बहुत तगड़ी हो तो कही जाता है ये धूप जोन में बुखार बहुत जल्दी हो।
0: हाँ
1: आया समय जोन वायरल वाला बुखार भैरा फैरा बाटे बड़ा तेजी से तो उसे बचे बचे के बस सेहत ध्यान रखे के बा ओकरे साथे साथे भाई खेती किसानी पे ध्यान दे के बा लड़कन गदेलन पे ध्यान दे के खाली पशुअन पे भी ध्यान दे के बा।
0: अच्छा बजू भैया एक बात और किसानन से ही कहे के बा कि देखो भैया जो हमारे लोगों के ये कार्यक्रम बाना किसानन के समर्पित पंचायत घर और ए पर आप लोगन कोनो सुझाव हो कोनो प्रतिक्रिया हो तो एक हमार लोगन का फोन नंबर बा 800-492-6250।
1: एक लिख लें भैया और सब गांव में अब सब मोबाइल चलावे लगे हैं सबके व्हाट्सएप बांटे है।
0: हाँ।
1: तो व्हाट्सएप पे अपन संदेश लिख के यही नंबर पे भेज सकते हैं।
0: भेज दें कोनो सुझाव कोनो प्रतिक्रिया दिया चाहते हैं तो हम लोगों के शामिल करब ऊपर बातचीत करब।
1: एकरे अलावा भैया हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी या आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से बांटे प्रोफाइल भैया वो का भी पसंद कर सकते
0: पसंद करें ऊपर विजिट करें अपन टिप्पणी दें अपन सुझाव दें।
1: तो हम तो कही कि भैया हो मौसम के हिसाब से खेती किसानी करें अपने सेहत ध्यान दें और जोन भाई देकर धान पकत बाहा वो कर मड़ाई के अपन खरियान वगैरह की व्यवस्था बढ़िया से कर लें भाई का दिक्कत आओ तो सारी चीज़ पहले से व्यवस्था रहे चाहे काहे से अब काम बढ़ जाता रबी की तैयारी भी ही में रहा था खरीफ भी निपटावे के रहा था।
0: सही बात कह
1: भैया तो भैया हो ये सब देखी ही तब जोन बाटे हुए पता चली कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़ और कार्तिक में भैया जोन बाटे इतना काम हो जा था कुछ पूछा जिन तो हर चीज पहले से व्यवस्थित हो चाहे तब खेती किसानी बढ़िया हो उकर फायदा भी मिले।
0: सही बात
1: हम तो कही चलत चलावत यही कहा कि भैया हो मौसम देखते हुए सब काम करें और जो उन पशु पाले उनका समय से भैया हो कहे से इसमें मच्छर बहुत लागत है।
0: सही बात ही तो आप बहुत जरूरी बात कहे कि खुद के साथे साथे जो उन पशु प्राणी भी रखे हैं लोग उकर भी ध्यान रखें।
1: मच्छर तो दूर रहे अब चले बेला होगी पंचन से आगे ले जाए तो पंचो राम।

हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट। 7:31 पर सुनिएगा परिचर्चा, भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी दर्शन। 8 बजे हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्र से नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय की बातचीत, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। बने रहिए आकाशवाणी प्रयागराज के साथ।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी देर में आपको जोड़ेंगे लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी का आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र बनेगा विकसित भारत की आधारशिला। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने आज बरेली से वन्य जीव सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, वन्य

0: जीवों का संरक्षण और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर की 5 वर्ष और एशियाई खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली सहारनपुर की एथलीट प्राची चौधरी का आज उनके पैतृक गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लखनऊ में गांधी जी की 197वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ परिसर स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चरखा चलाया और खादी का वस्त्र खरीदकर स्वदेशी और स्वावलंबन के संकल्प को मजबूती दी। श्री योगी ने कहा कि गांधी जी का आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र ही विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की विशेष छूट की व्यवस्था की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों के हुनर को सम्मान दें।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की छूट भी उपलब्ध करवाई है। खादी भारत की स्वाधीनता का मंत्र है और मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि हर व्यक्ति खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों के हुनर को सम्मान दे। गांधी जी का ये आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबन का ये मंत्र ही विकसित भारत की आधारशिला बनेगा।
0: आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि शास्त्री जी जितने संवेदनशील थे उनका व्यक्तित्व उतना ही संघर्षशील था। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। श्री योगी ने कहा कि शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा स्वाधीन भारत के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रेरणादायी मंत्र बना। आज उसी का परिणाम है कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया।
1: उनका जय जवान जय किसान का जो नारा था स्वाधीन भारत के अंदर, ये भारत का एक मंत्र बना। एक और जवान सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत के दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था, दूसरी ओर हमारा परिश्रमी अन्नदाता किसान भारत की खाद्यान्न आपूर्ति को अपने परिश्रम से, अपने पसीने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। आज उसी का परिणाम है कि भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन हमें सत्य, सादगी, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। प्रदेश के सभी जनपदों में इस उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो सेवा अनकही कहानियां पर आधारित नाट्य श्रृंखला मंचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। ये बिना रुके, बिना झुके और बिना डिगे सेवा की यात्रा है। इसमें विरासत और विकास के समन्वय के साथ बिना भेदभाव योजनाओं को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और एसआईआर प्रक्रिया का विपक्ष द्वारा विरोध जताने संबंधी सवालों का जवाब देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण जो घुसपैठिए मतदाता सूचियों में शामिल हो गए थे वे अब बाहर हो रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों में घबराहट है। श्री मौर्य ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव और त्रुटिहीन मतदाता सूची भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: चुनाव आयोग द्वारा जो कार्य किया गया है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन करती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मतदाता सूची सही हो, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप

0: प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वन प्राणी सप्ताह का आयोजन आज से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसका शुभारंभ बरेली में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण और आमजन में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत उन्होंने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया।
1: तो आज का दिन वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत है और आज का जो मेन संदेश है वो है कनेक्टिंग हैबिटेट्स एंड थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ। हमारे वाइल्ड लाइफ के हैं उनके आवासों को जोड़ना और साथ ही साथ वन्य जीव फले फूले, वन्य जीव का आवास सही रहे और उनका विकास हो।
0: लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर चिड़ियाघर के साथ साथ इटावा लायन सफारी में 8 अक्टूबर तक 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म को देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया है।
3: मैं ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए GST रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा हो।
2: कानपुर के रहने वाले आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि पहले व्यापारियों के सामने काफी जटिल थी, लेकिन GST के बाद काफी सहूलियत मिल रही है।
4: GST आने के बाद से वन नेशन वन टैक्स ने एक साझा टैक्स प्रणाली का एक मजबूत आधार तैयार किया। इसका फायदा यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कारोबार करना बहुत ही सरल अपेक्षाकृत आसान होता जा रहा है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। राजेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, कानपुर।
0: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी एथलीट प्राची चौधरी का आज उनके पैतृक जनपद सहारनपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर के झबीरण गांव की बेटी प्राची चौधरी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक सफलता से उनके परिवार और पूरे गाँव में जश्न का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी का आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र बनेगा विकसित भारत की आधारशिला। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने आज बरेली से वन्य जीव सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, वन्य जीवों का संरक्षण और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर की 5 वर्ष और एशियाई खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली सहारनपुर की एथलीट प्राची चौधरी का आज उनके पैतृक गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है परिचर्चा, भारतीय ज्ञान परंपरा के में

0: गांधी दर्शन के संपादित अंश। यूएन कृष्ण कॉलेज प्रयागराज और मुंबई सर्वोदय मंडल के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय व्याख्यान संगोष्ठी एवं छात्र प्रतियोगिता का आयोजन विगत 30 सितंबर को किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक थे डॉक्टर अरुणेय मिश्र, प्रभारी संस्कृत विभाग यूएन कृष्ण कॉलेज, समन्वयक थे टी आर के सुमैया, अध्यक्ष मुंबई सर्वोदय मंडल मुंबई, और सह समन्वयक थे डॉक्टर सुदीप तिर्की, समन्वयक गांधी प्रार्थना समाज, एवं सह संयोजक थे डॉक्टर अंशु सिंह, संस्कृत विभाग यूएन कृष्ण कॉलेज प्रयागराज। मुंबई सर्वोदय मंडल के प्रबंधन प्रभारी श्री प्रेम शंकर तिवारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग दिया।
1: प्रस्तुत है विगत 30 सितंबर को संस्कृत विभाग एवं गांधी प्रार्थना समाज यूएन कृष्ण कॉलेज महाविद्यालय तथा मुंबई सर्वोदय मंडल मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय व्याख्यान संगोष्ठी एवं छात्र प्रतियोगिता के संपादित अंश। विगत 30 सितंबर को संस्कृत विभाग एवं गांधी प्रार्थना समाज यूएन कृष्ण कॉलेज महाविद्यालय तथा मुंबई सर्वोदय मंडल के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय व्याख्यान संगोष्ठी एवं छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी दर्शन। व्याख्यान संगोष्ठी का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी दर्शन। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विषय था कितना जानते हैं हम बापू को, और भाषण प्रतियोगिता का विषय था वर्तमान समय में गांधी जी की प्रासंगिकता। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जस्टिन मसीह बर्सर ECC प्रयागराज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की वाद विवाद प्रतियोगिताएं उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती हैं।
2: मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन में कक्षाओं के अंदर उस चार दीवारी के अंदर होने वाले कार्यक्रमों के अलावा जो कार्यक्रम कक्षा की परिधि के बाहर होते हैं, उन कार्यक्रमों का, उन आयोजनों का विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है और बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और विशेष तौर से इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, ये कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों के लिए एक सीखने का दौर होता है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ गांधी प्रार्थना समाज के कार्यक्रम अधिकारी महोदय का, और साथ ही साथ हिंदी विभाग और संस्कृत विभाग के हमारे प्रभारी गण, और विशेष तौर से आकाशवाणी से आए हुए हमारे अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत सारे अन्य विषयों पर जो कि पाठ्यक्रम से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं लेकिन जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों पर कुछ वक्ताओं को सुनने का अवसर प्राप्त होगा, कुछ प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आने वाला ये समय और आने वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और आनंदमय अनुभव होंगे, सीखने का अच्छा अवसर होगा। और जब आप अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त कर लेंगे और कई साल बीत जाएंगे और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये दिन, ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में प्राप्त जो प्रमाण पत्र होंगे उनको जब आप देखेंगे तो बड़ी सुखद यादें आपको प्राप्त होंगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी आयोजकों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में जो भी आपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, जो भी प्लान किया है, वो कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से होने पाएंगे, विद्यार्थियों के लाभ के लिए होंगे, और जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं सब कुछ न कुछ नई बात यहाँ से सीख करके जाने पाएंगे। सो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर AS मोजेस ने अपने वक्तव्य में कहा,
3: आज के इस शुभ दिन के लिए सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज ये अवसर मिला जबकि हमारे विद्यार्थी फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और सबसे ज़्यादा कि जब क्लास में हम होते हैं तो हमारे माइंड को मोटिवेट करता है एक शिक्षक, और जो

0: भी मोटिवेशन आप वहाँ से प्राप्त करते हैं, जब इस तरीके कार्यक्रम होते हैं तो आपको एक मंच दिया जाता है जिसमें आप अपनी बातों को कह सकते हैं। सो हम इसके जितने कार्यक्रम करने वाले हमारे शिक्षक गण हैं, हम सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित किया। गांधी के विचारक बहुत सारे लोग हैं और गांधी जी सिर्फ गांधी जी नहीं थे, वो महात्मा गांधी बने, एक महान आत्मा बने, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा के बल पर चल करके अपने कार्य को पूरा किया था। हम उन जवानों को भी याद करते हैं जिन्होंने शहादत दी, उनकी भी इम्पोर्टेंस है, गांधी जी की अपनी इम्पोर्टेंस है, और सब लोगों ने मिल करके ब्रिटिश के शासन से इस देश को आज़ाद कराया था। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी किताब में लिखते हैं कि आप हमारे शरीर को कष्ट दे सकते हैं, हमें मार सकते हैं, यहाँ तक कि आप हमारे प्राणों को ले सकते हैं, लेकिन आप हमारे मन के विचारों को, दिमाग की सोच को नहीं बदल सकते हैं। और उनके दिमाग की सोच ये थी कि भारत हमारा है और इसे हम ले कर रहेंगे। सो हम फिर से धन्यवाद देते हैं अरुणेश सर को, तिर्की सर को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को जो यहाँ पर हैं, सारे निर्णायक जो यहाँ पर रहेंगे, सबका हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज का दिन निश्चित तौर पर एक अच्छा दिन गुजरेगा और हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत विभाग ECC के प्रभारी डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा,
2: भारतीय ज्ञान है उसकी शुरुआत वैदिक काल से हुई है, लेकिन वैदिक काल में या कोई भी काल हो, सभी उच्च स्तरीय ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वह सामान्य जीवन तक कैसे पहुँचे, सामान्य जन जन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए परंपराएं विकसित हुई। जैसे अगर वेदों में कहा गया कि सत्य बोलना चाहिए, तो परंपराओं में आ गया किसी पौराणिक कहानी के माध्यम से कि सत्य को करना चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। सामान्य जन की भावना में हम प्रहलाद को देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो कि डिगा नहीं, हम ध्रुव को देखते हैं, नचिकेता को देखते हैं, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कालांतर में वैदेशिक आक्रमण से धीरे धीरे हमारा ज्ञान क्षीण होने लगा, और जब ज्ञान क्षीण होने लगा तो धीरे धीरे हमारी परंपराएं भी क्षीण होने लगी। उस समय गांधी जी जैसे ऋषि का जन्म हुआ, क्योंकि हमारे ऋषियों का जो चिंतन रहा है वे लिखते नहीं थे, बल्कि अपने जीवन से, अपने व्यवहार से परंपराओं को सुदृढ़ करते थे, परंपराओं का निर्माण करते थे। वैसे ही गांधी जी ने दिखाया कि हम कैसे अंग्रेजी हुकूमत के सामने बिना किसी भय के, जो हमारा एक आत्मविश्वास था डिगने लगा था, हमारे अंदर जो निडरता की भावना थी वह क्षीण होने लगी थी, गांधी जी ने दिखाया कि बिना हथियार के बल पर, अपने आत्मबल के भरोसे कैसे उसको रखा जा सकता है, कैसे उसको बनाए रखा जा सकता है।
1: कमला आरिकन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिर्जापुर की प्राचार्या डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक दर्शन है।
3: गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक विचार थे, गांधी जी एक दर्शन थे, और गांधी जी हमारे नैतिक मूल्यों के उन्नयन में एक जीवंत उदाहरण है। तो गांधी जी का जो दर्शन है, जो विचार है, वो सत्य पे आधारित है, अहिंसा पे आधारित है, सत्याग्रह पे आधारित है, सर्वोदय पे आधारित है। गांधी जी की विचारधारा थी सत्य ही ईश्वर है, हम जो भी कर्म करें, हमारे मन के अंदर करुणा हो, हमारे मन के अंदर प्रेम हो, हर जीव के प्रति प्रेम हो, किसी के प्रति नफरत न हो। और प्रेम एक बहुत बड़ा हथियार है, ये मेरा भी मानना है। मैं गांधी जी के इस मंतव्य से, इस विचार से पूरी तरह समर्थन करती हूँ कि प्रेम एक बहुत बड़ा हथियार है। तो ये गांधी जी के जो विचार थे वो केवल उस समय तक ही सीमित रखने लायक नहीं थे, उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।

0: गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सत्य करिए, लेकिन उसको आग्रह के साथ, आपके बात में एक आग्रह भी होना चाहिए। उन्होंने चलाया था सत्याग्रह आंदोलन, उसके बारे में पढ़िए। आज जरूरत है एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक सुदृढ़ भारत की, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही सुदृढ़ ज्ञान परंपरा रही है, उस ज्ञान परंपरा से एक नवीन भारत के निर्माण में लाभ लेने का। इसलिए बच्चों, आप लोग जरूर उनके बारे में पढ़िए। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए सर को मंच सौंपती हूँ कि आगे और विद्वत जनों को सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।
1: हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुजीत सिंह ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग पर अपनी बात रखते हुए कहा,
2: हमारी ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन किया, उसकी सर्वोत्तम परिणति है भारतीय ज्ञान परंपरा। उसके बहुत सारे तत्व, दो एलिमेंटों को गांधी जी ने पकड़ लिया, सत्य और अहिंसा। अच्छा, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता क्यों होगी? और इतना शानदार विषय भाई रोड़े जी आपने रखा है, अद्भुत विषय रखा है, क्यों? तो मुझे सहरियार साहिब की वो पंक्ति याद आ रही है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, क्यों हम सारे लोग परेशान हैं? इसलिए हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, बिसराते जा रहे हैं। पता है मित्रों, हमारी भारतीय परंपरा वेदों, पुराणों, महाभारतों, ये वहीं से नहीं है, आगे भी मैंने बताया ना कि उसमें आप भी अवलोकन करिए, और जहाँ लगे कि इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता, परिवर्तन करिए, परिशोधन करिए। इसीलिए प्रवाहमान परंपरा है, इसमें गतिशीलता है। आज गांधी, विवेकानंद, आज भी वो सारी चीज़ें जिंदा है, जीवित हैं। उसके बहुत सारे एलिमेंट, विनम्रता, सहजता, और पता है कि सत्य जानना ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो सत्य को आत्मसात करे। भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए नहीं है मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं, वह बोध और आत्मसात करने की परंपरा। ज्ञान का बोध होना बहुत जरूरी है। विवेकानंद, गांधी, उनको पता था और उन्होंने आत्मसात किया। यानी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, वो सबसे ज़्यादा जोर हमारे तीन तत्वों पर देती है, हमारे मन के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर और हमारे इंद्रियों के। इन तीनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये तीनों सही ढंग से काम कर रही हैं, सही दिशा में कार्य कर रही हैं, तो फिर आपका व्यक्तित्व पक्का बड़ा। अब आज देख लीजिए, मन कहने को है, ये मन सामान्य चीज़ें हैं क्या? मन के ऊपर ही तो सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। रैदास ने कहा कि मन चंगा कठौती में, कबीर ने कहा माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन में पवित्र भाव का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि, तुलसी बाबा ने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मित्रों, बुद्धि सुमति होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। आज हम लोग का मन इतना दूषित हो गया है, इसमें व्यक्तिगत राग द्वेष, अपने पराये की भावना, छोटी छोटी मानसिकता, स्वार्थ सब भरा हुआ है। आज हमारी ज्ञान इंद्रियां जो मैसेज एक्सेप्ट करती है, जो ग्रहण करती है, आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं अच्छा चीज, कानों से अच्छा सुन नहीं पा रहे, मुंह से अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? पता है, जब इन तीनों का जो उदात्त रूप होता है, यानी हमारी ज्ञान इंद्रियों का, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ही मैसेज लेकर के मन को, मन जो हृदय में बैठा हुआ है उसको भेजती है, मन जो है बुद्धि को भेजता है, फिर बुद्धि कहता है कि रुक जाओ, हम तुमको बताते हैं क्या करना है, फिर वो मन को भेजता है, फिर मन ज्ञानेंद्रियों को कहता है कि तुम बता दो कि ऐसा देखे, ऐसा करे, वैसा करे। आज तीनों बिल्कुल अपने मूल रूप से विरत हो गए, अलग अलग, शायद इसी कारण खामियाजा हम लोग भुगत रहे। चलिए चलते हैं 1893 में विवेकानंद के पास, याद करते हैं शिकागो का वो भाषण, ओ माई डियर सिस्टर एंड ब्रदर, यही एक वाक्य था ना उस धर्म सम्मेलन में। आखिर उनके वक्तित्व कला की वो कौन सी ऐसी जादुई शक्ति थी कि जैसे उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि ओ माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, उस सभागार में बैठे हुए सारे लोग, सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज, और उनके पहले इस तरह का संबोधन बहुत सारे वक्ताओं ने दे दिया।

की पवित्रता थी, वो सूक्ष्म और सारग्रहणी दृष्टि थी, वो विशाल और उदार हृदय था, वो ज्ञानेंद्रियों की ताकत थी, और जो उनका सर्वोत्कृष्ट रूप था उसका जबरदस्त समन्वय था। क्योंकि जब तक आपके उद्देश्य बड़े नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर नील आर्मस्ट्रांग की सोच अगर वहाँ तक नहीं गई होती तो शायद वो नहीं जाते। सबसे पहले हमारी सोच जानी चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ है क्या करना है क्या नहीं करना है। गांधी जी की जो मानस की निर्मिति हुई थी उसमें वेदों की चीज़ें थी, पुराणों की चीज़ें थी, भगवद गीता था, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, और इतना ही नहीं वे वेस्टर्न के रश्किन और टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जहाँ से जो चीज़ें अच्छी मिली ग्रहण करी। ये ग्रहणशीलता भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत शक्ति है। आज पता है हम सारे लोग अपने को इतना भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी का सामान्य परिचय नहीं है। हम जितने सारे लोग बैठे थे, ये रिसर्च पेपर वो रिसर्च पेपर, सुजीत सिंह सामान्य नहीं। मैं अपनी दिली ख्वाहिश बता रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर जान रहे हैं कि मैं शिक्षक के रूप में

0: ग्रहणशीलता भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत शक्ति है। आज पता है हम सारे लोग अपने को इतना भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी का सामान्य परिचय नहीं है। हम जितने सारे लोग बैठे थे, ये रिसर्च पेपर वो रिसर्च पेपर, सुजीत सिंह सामान्य नहीं। मैं अपनी दिली ख्वाहिश बता रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर जान रहे हैं कि मैं शिक्षक के रूप में रहना चाहता हूँ और शिक्षक के रूप में ही मरना चाहता हूँ। बच्चों की आंखों में जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे आलोचक ये सब नहीं बनना, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं सोचा था कि शुरू में तो अरुणेश भाई ने रात को मांग लिया कि अपना भाई साहब दे दीजिए, नहीं मैं सोचा था कि बस मुझे शिक्षक बुलाइए, मुझे अच्छा लगता है, बस हम इसी नाम के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। ये क्यों, हम सब भरे हुए हैं छोटी छोटी चीज़ें जान जान के। इतना बड़ा है प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर, सुपर। गांधी ने क्या किया, सत्य और अहिंसा, ये उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण आलंबन थे। ये कहने के लिए नहीं, बताया ना कि सबसे ज़्यादा कठिन होता है कि वो चीज़ें आपके व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। विवेकानंद कहते थे ना कि हमारा जीवन लाइब्रेरी की तरह नहीं है कि हमने सारी की सारी किताबें कंठस्थ कर लिया, ना आप उससे कभी बड़ा नहीं बन सकते, उससे कभी महान नहीं बन सकते। बड़ा व्यक्ति वो होता है कि केवल दो चार आधार वो चीज़ों को ग्रहण करे और वो सारी चीज़ें उसके व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। आप धीरे धीरे कछुए की तरह एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, खरगोश मत बनिए। गांधी ने वही काम किया। ये दोनों अपने समय के दो, एक शिकागो में दहाड़ रहे थे और एक यहाँ दहाड़ रहे थे, गांधी जी, सत्य अहिंसा। मित्रों, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऋतु मैम ने कहा ना कि बड़ा व्यक्ति वो है जो सत्य को स्वीकार करे और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बड़ा बनेगा। इसीलिए जब गांधी जी मरे थे तो पता है जो बनारस का मशहूर शायर था नजीर बनारसी, उसने क्या कहा, ऐ अमा अमनु निशा वाले, तेरे झंडे के नीचे होंगे सारे जहां वाले। मेरे गांधी, जमी वालों ने जब तेरी कद्र कम की, उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले, उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले।
1: अर्थशास्त्र विभाग यूएन क्रिश्चियन कॉलेज महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा,
2: गांधी के लिए अहिंसा एक अस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र जिसमें कभी जंग नहीं लगती है, एक ऐसा अस्त्र जो कि कोई चुरा नहीं सकता है, एक ऐसा अस्त्र जो कि बड़ों से बड़ों को पराजित कर सकता है। लेकिन इस अस्त्र के उपयोग के लिए आत्मबल चाहिए। गांधी उस अहिंसा के शस्त्र के माध्यम से आम जन के आत्मबल को बढ़ा रहे थे, क्योंकि बिना उस आत्मबल को, बिना आम जनता के आत्मबल को बढ़ाए, बिना उस आत्मबल को जागृत किए, एक आतताई शासन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। गांधी की एक आवाज पे अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी अंग्रेजों से लड़ाई के लिए अगर खड़ा हो जा रहा है कि नहीं गांधी बाबा ने कहा है मैला आंचल पढ़िए, तो उस गांधी की वो आवाज की ताकत, उस सत्य की ताकत थी जो कि गांधी के विचारों थी। उन्होंने जो अपने आचरण में उतारा वही बात कही। गांधी कहते हैं कि इस समाज का कल्याण तभी होगा जब सभी सुखी होंगे, सर्वे भवन्ति सुखिनः, ये भी हमारी भारतीय चिंतन परंपरा का ही हिस्सा है, सब सुखी हों, और जब समाज के हर एक व्यक्ति के गौरव की, हर एक व्यक्ति का सम्मान और गौरव की रक्षा होगी, हर एक व्यक्ति की उन्नति के बारे में सोचा जाएगा, हर एक जीव, मतलब जीव मात्र के हित के बारे में सोचा जाएगा, इस पूरी प्रकृति के हित के बारे में सोचा जाएगा, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ जी सकते हैं। और वो जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उसमें पूरी प्रकृति है, यही असली संपोषणीय विकास है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसकी बात हमारे भारतीय चिंतन से निकलती है और जिसकी बात गांधी कहते हैं, अपनी मजबूती से कहते हैं।
1: मुख्य वक्ता अध्यक्ष संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी ने कहा कि बिना संस्कृत के ज्ञान के हम भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं समझ सकते, और बिना भारतीय ज्ञान परंपरा को समझे

0: हम गांधी दर्शन को नहीं समझ सकते।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा का उच्च वेद है, वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। इस प्रकार से यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्यकतया ज्ञान करना चाहते हैं, अवबोधन करना चाहते हैं, तो संस्कृत का ज्ञान नितांत अपेक्षित हो जाता है। बिना संस्कृत के ज्ञान के हम भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्यकतया अवबोधन नहीं कर सकते हैं। मैं बाणभट्ट की संस्कृत की बात नहीं करता हूं, मैं सामान्य संस्कृत की बात करता हूं, मैं संस्कृत भारती की संस्कृत की बात करता हूं कि कम से कम फंक्शनल संस्कृत का आपको संज्ञान रहे, जिससे संस्कृत में लिखे गए जो ग्रंथ हैं या संस्कृत की जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों से आप सुपरिचित हो सकें और इस तरह से उस शब्दावलियों में उन शास्त्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो अनुस्यूत विज्ञान है उस विज्ञान से हम सम्यकतया अपने को अनुप्राणित करते हुए अपना सर्वविध कल्याण करते हुए हम देश और समाज का सर्वविध कल्याण कर सकें, इस क्रम में संस्कृत का ज्ञान नितांत अपेक्षित हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा जिज्ञासा मूला चिंतन परंपरा है, अर्थात जिज्ञासा मूला चिंतन परंपरा से तात्पर्य है आत्मबोध की जिज्ञासा। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा का जो उच्च वेद है उसमें आत्मा का क्या स्वरूप है, सृष्टि का क्या स्वरूप है, सृष्टि का विकास कैसा हुआ है, आत्मा को जान करके हम कैसे इस भौतिक जगत को जान सकते हैं, कैसे हम ब्रह्मांड को जान सकते हैं, इन सब का जो है सारगर्भित चिंतन हमें वेद से इतर ग्रंथों में भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम भारत को नहीं जान सकते हैं। इसलिए यदि भारत को जानना है, बृहत्तर भारत की संस्कृति को जानना है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना नितांत अपेक्षित हो जाता है। इस भारतीय ज्ञान परंपरा से हम क्या प्राप्त करेंगे, यदि उसे मैं एक शब्द में कहूं तो हमें चिति का ज्ञान होगा, हमारी चिति जागृत होगी। ये चिति की संकल्पना क्या है, विराट की संकल्पना क्या है, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आप भाषणों को देखिए या पुस्तक के रूप में जो विद्यार्थी यहां पर हैं वो बद्री शाह की पुस्तक, ये अल्मोड़ा के थे, 1981 में प्रकाशित है दैशिक शास्त्र, जिसमें वो चिति की अवधारणा और विराट की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। अर्थात बिना चिति के, जब किसी चिति वह एक विलक्षण स्वरूप होता है जिस पर कोई व्यक्ति या समाज या देश अवस्थित होता है, यदि हमारी चिति जागृत नहीं है तो हम कहीं कहीं दूसरे के सबॉर्डिनेट रहेंगे या कोई देश दूसरे देश का सबॉर्डिनेट रहेगा, अर्थात हम अपना व्यक्तित्व हम परिमार्जित और परिष्कृत नहीं कर सकते। इसीलिए चिति का संज्ञान होना नितांत अपेक्षित है और चिति के संज्ञान के लिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना नितांत अपेक्षित हो जाता है। यदि हमारा चिति जागृत होगा तो चिति के आधार पर हमारे जो कार्य है वो कार्य जो है विकसित होंगे, अर्थात हमारा विराट भी जागृत होगा और जब चित्ति और विराट में सामंजस्य स्थापित होगा तो हम अभ्युदय और निःश्रेयस की संकल्पना को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात चित्ति के संज्ञान के लिए, चित्ति के जागरण के लिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा पर आश्रित जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं जिनको हम वांग्मय के रूप में जानते हैं उनको हमें, उनका हमें कम से कम स्थाली पुलाकर न्याय से कुछ ना कुछ ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इसी चिति के संज्ञान को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने भारतीय ज्ञान परंपरा से उस चिति की अवधारणा को लेते हैं और उनका चिति जागृत रहता है और चिति के जागरण से जो है हम सबको आजादी दिलाने में वो कामयाब रहते हैं। इसीलिए यदि महात्मा गांधी के दर्शन को जानना है तो चिति की अवधारणा जो है उसका ज्ञान करना नितांत अपेक्षित हो जाता है। महात्मा गांधी का जो दर्शन है, यदि आप दर्शन में देखें इसी चिति के परिप्रेक्ष्य में कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, तो अहिंसा और सत्य में यदि आप देखें तो साध्य साधन भाव संबंध है। अहिंसा हथियार है, अहिंसा अस्त्र है और सत्य जो है जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं वह जो है वह साध्य है। अर्थात अहिंसा के द्वारा, अहिंसा नामक अस्त्र का अनुप्रयोग करके हम सत्याग्रह के द्वारा हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार सत्य और अहिंसा में जो है साध्य साधन भाव संबंध है। यदि हम दर्शन की भाषा में समझें तो जो सत्य है वह हमारा साध्य है और अहिंसा जो है वह साधन है। पूरे विश्व के लिए यह एक वैकल्पिक मॉडल हो सकता है। आज पूरा विश्व जो है वह कहीं कहीं जो है वह हिंसाग्रस्त है, वह हिंसा के द्वारा जो है वह कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कहीं कहीं महात्मा गांधी इस परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हो जाते हैं कि वह अहिंसा के द्वारा, अहिंसा नामक अस्त्र के इस्तेमाल के द्वारा, अनुप्रयोग के द्वारा वह सत्य को प्राप्त करके परम लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज के समय में या महात्मा गांधी का

0: दिया हुआ मॉडल वह नितांत ही प्रासंगिक हो जाता है, जो अहिंसा और सत्य में साधु साधन भाव को बताता है। वो किसानों के बीच में जाते थे, लोगों के बीच में जाकर के जो है वो संवाद स्थापित करते थे और संवाद स्थापित करके अपनी बात को रखवाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार से जो है 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जो है भारत नहीं पूरे विश्व के एक सबसे विशिष्ट संवाद पुरुष के रूप में जानने योग्य हैं। कहीं ना कहीं जो है भारतीय ज्ञान के ज्ञान परंपरा के अनुप्रयोग में या भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हम महात्मा गांधी के इस संवाद शैली को जो है हम व्याख्यायित कर सकते हैं, उनके दर्शन को हम जान सकते हैं। वो अभ्युदय के लिए वो सर्वोदय की उदाहरणा देते हैं कि सबका विकास हो। अब अभ्युदय यहाँ पर जो है इंडिविजुअल अभ्युदय की बात नहीं करते, वो कलेक्टिव अभ्युदय है, अर्थात देश का प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका भौतिक रूप से वह सुख समृद्धि से युक्त हो, उसको हम अभ्युदय कह सकते हैं। वह अभ्युदय जो है वह सर्वोदय की अवधारणा में उनके आती है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से अपितु सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से या जो भी भौतिक सुख समृद्धि है उससे संपन्न हो, इसलिए वह सर्वोदय की उदाहरणा देते हैं। आज के समय में गांधी न केवल जो है भारत के लिए प्रासंगिक हैं अपितु वैश्विक जगत के लिए उनका जो यह मॉडल है अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय और सर्वोदय के साथ साथ परम शांति की अवधारणा, यह मॉडल आज के समय में वैश्विक जगत में नितांत ही प्रासंगिक है। और हमें जो भी विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उन्हें इस दृष्टि से चिंतन करते हुए गांधी दर्शन को सबके समक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है गांधी की सांप्रतिक उपादेयता से लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु अखंडम भारतम, जयतु गांधी दर्शनम इति शम।
1: कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर अंशु सिंह और समन्वयक डॉक्टर सुदीप तिर्की ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने विचार प्रकट किए। अभी आप सुन रहे थे विगत 30 सितंबर को संस्कृत विभाग एवं गांधी प्रार्थना समाज, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज महाविद्यालय तथा मुंबई सर्वोदय मंडल मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय व्याख्यान संगोष्ठी एवं छात्र प्रतियोगिता के संपादित अंश।

0: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि आज पूरा देश, पूरा विश्व महात्मा गांधी जी की जयंती को मना रहा है, और आज महात्मा गांधी जी के बारे में ही बात करने के लिए, उनके चिंतन के बारे में बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की एजुकेशन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरोज यादव जी को, और एजुकेशन विभाग के ही प्रोफेसर डॉक्टर पतंजलि मिश्रा जी को, और हमारे साथ हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा जी। मैं सभी अतिथियों का आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
2: बिल्कुल, बहुत स्वागत आप दोनों का स्टूडियो में, अभिनंदन है आपका।
3: थैंक यू।
1: आज हमारा विषय है नेहा जी, महात्मा गांधी का चिंतन वर्तमान की कसौटी पर।
2: जी,
1: हम सब ने बचपन में गांधी को पढ़ा होगा, हम सबके अपने अपने हिस्से के गांधी हैं। कोई उनसे नफरत भी करता है, कोई उनसे प्यार भी करता है, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो पल कभी नहीं आएगा इस देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, जब आप महात्मा गांधी की शिक्षाओं को, उनके चिंतन को आप दरकिनार कर दें। सबसे पहले मैं डॉक्टर सरोज मैम के पास आऊंगा। मैम, आज पूरा विश्व एक तरह से देखा जाए तो अहिंसा में या पर्यावरण की चिंता में डूबा हुआ है। मैं सबसे पहले यही जानूंगा कि महात्मा गांधी अब हमें कितना याद आएंगे इन समस्याओं को देखते हुए।
3: देखिए, महात्मा गांधी जी को याद करना, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि हम अपने दैनिक व्यवहार के चीजों में उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को शामिल करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का विश्व अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं से गुजर रहा है। आज विश्व में हिंसा है, युद्ध हो रहे हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, पर्यावरणीय संकट है, सोशल टेंशन्स हैं, और अविश्वास का वातावरण चारों तरफ तैयार हो रहा है। ऐसे में गांधी जी का चिंतन हमें केवल अतीत की स्मृति नहीं दिलाता है, बल्कि वर्तमान के लिए एक नैतिक दिशा भी देता है। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि हमारे लिए जो साध्य है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको प्राप्त करने का साधन भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज जब सफलता को हम किसी भी कीमत पर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो हमें गांधी जी के सत्य, अहिंसा और नैतिक साधनों को भी समझना होगा। उनका सत्य बोलने का केवल बोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके विचारों, वचन और उनके कार्यों में भी एक रूपता थी, और वो केवल कहते नहीं थे, अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में भी उसको दिखाई देते थे। और इस अनिश्चितता के इस दौर में हमें गांधी जी के चिंतन यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन हमें मानवीय गरिमा, सत्य, अहिंसा और न्याय जैसे जो हमारे वैल्यूज हैं वो अपनाने चाहिए। वो कभी अप्रासंगिक नहीं होते, आज के समय में भी वो बहुत रिलेवेंट है।
2: जी बिल्कुल, अभी जब आप कह रही थी डॉक्टर सरोज की गांधी जी ने जो भी काम किया वो किसी भी कीमत पे आज हम करना चाहते हैं, और वो उनकी कीमत अलग थी। डॉक्टर पतंजलि, ये जो साधन की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं, गांधी जी ने हमेशा कहा कि आप किस कीमत पर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे आज़ादी हो या अपना अधिकार हो, आपके साधन पर, वो क्यों इस बात पर इतना जोर दिया करते थे?
4: देखिए, गांधी को यदि समझना है
2: जी,
4: तो हम लोगों को उनकी दो रचनाओं को याद रखना होगा, एक तो हिंद स्वराज और दूसरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ,
2: सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
4: सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इन दोनों पुस्तकों के अतिरिक्त यंग इंडिया के उनके कुछ लेख
2: जी।
4: गांधी बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, और गांधी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि गांधी असंभवों के समन्वय थे। बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजों को एक साथ अपने अंदर रखना और उनके बीच तारतम्य बनाए रखना, ये केवल और केवल गांधी ही कर सकते थे। गांधी में विचित्र किस्म का विरोधाभास भी था
2: जी।
4: यदि आप गांधी को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आज का जो संकट है, स्पेसिफिकली यदि हम बात करें कि इतनी सारी सूचनाएं हैं हमारे पास
2: जी,
4: लेकिन विश्वास नहीं है,
2: ये बात है।
4: और गांधी ने जो अपनी किताब 1909 में हिंद स्वराज लिखी, उसमें वो कहते भी हैं, इस आधुनिक सभ्यता की बड़ी मुखर आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हमारी पराधीनता केवल राजनैतिक पराधीनता नहीं है, हमारी पराधीनता बहुत हद तक मानसिक पराधीनता भी। गांधी कहते हैं कि ये जो हमारे पास समस्याएं हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, चाहे संसाधनों के लिए संघर्ष हो, या फिर सामाजिक अविश्वास हो, इन सब का समाधान गांधी सुझाते हैं, और वह समाधान अहिंसा में
2: जी,
4: वह समाधान सत्य में, वह समाधान संवेदना में, वह समाधान स्वराज में वो देखते हैं।
2: बिल्कुल दीपक जी, हम लोग 21वीं शताब्दी के

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्रा से नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय की भेंट वार्ता। विषय है

0: तीसरे दशक में हैं। अब जरा 100 साल पहले चलें, हमारा देश कैसा हुआ करता था, शायद बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी थाली में अन्न नहीं था। आज हमारी अलमारी में वस्त्रों की संख्या बहुत अधिक है, उस समय शायद 2 वस्त्र हर किसी के पास हो ये ज़रूरी नहीं था, है ना, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। आज लगभग लोगों के पास घर हैं, लेकिन उस समय जब ऐसे लोगों के पास जिनके पास सुविधाएं नहीं थी उनको इकट्ठा करते हैं, उनके दिल में जगह बनाते हैं, और जबकि लोग ये कहते हैं कि गांधी जी की बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं थी जितनी कि हम आइंस्टीन की मान लेते हैं, जितनी कि ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की मान लेते हैं, तो फिर ऐसा क्या था कि लोग बरबस, उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो गांधीवाद में गांधीपन से जुड़ जाते थे।
1: देखिए, जो नैतिकता थी वो गांधी जी में सत्यता के कारण थी। गांधी जी की शक्ति केवल राजनैतिक नेतृत्व से ही नहीं थी, बल्कि उनके नैतिक बल, उनकी सत्यता अहिंसा में थी। उनके लिए सत्य भाषण कोई विषय नहीं था, बल्कि उनके जीवन जीने की एक क्रिया थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में उन्होंने ये सब बताया भी है कि वे अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह से देखते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में हमेशा तैयार रहते थे। गांधी जी के जीवन में जो सत्य और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने आश्रम के जीवन में भी, वे अपने व्यक्तिगत आचरण में भी इसको शो करते थे। और 1915 में जब आश्रम में असत्य की बात हो रही थी, कुछ घटनाएं सामने आई थी, तब उन्होंने उपवास कर लिया था। आज जब हम सूचना तकनीकी की तरफ बढ़ रहे हैं और सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन हो गया है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे रोज कोई न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन हम उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन गांधी जी का नैतिक बल हमें ये प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है कि जो मैं कह रहा हूँ क्या मैं उसका स्वयं पालन कर रहा हूँ या नहीं। यही गांधी जी के नैतिक बल की यही सबसे बड़ी कसौटी थी और वे आज के युवा वर्ग को इसे सीखने की आवश्यकता है।
0: आपने कहा कि गांधी जी का ये जो नैतिक बल है वो कहीं ना कहीं उसका आधार, उसकी नींव, उनके अंदर जो सत्य का वास था वो रहा। अब इस सत्य के प्रकाश से विंस्टन चर्चिल, ब्रिटानिया हुकूमत के जो बादशाह थे, वो भी डरते थे। एक ऐसे बुजुर्ग जो हमारे भारत के हैं, गोलमेज सम्मेलन होता है और धोती पहन के जाते हैं, बाकी सारे सूट बूट टाई में सजे धजे, मतलब क्या इतना बल है पतंजलि जी कि उनके पीछे लोगों का भरोसा वो उस मेज पर बैठकर वो रखते हैं, और विंस्टन चर्चिल जो कि खुद कहते उस समय कहते थे कि ब्रिटानिया साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन उनसे वो घबराते थे, क्यों घबराते थे वो?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि आखिर गांधी में ऐसी क्या खास बात थी कि
0: मतलब बड़ा आदमी घबराता था।
2: क्यों घबराता था ये सवाल, इसको समझने के लिए मैं यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक संदर्भ इस्तेमाल करूंगा, शायद उससे बात साफ होगी। उन्होंने लिखा कि क्राइस्ट फर्निश्ड द स्पिरिट एंड मोटिवेशन व्हाइल गांधी फर्निश्ड द मेथड। और गांधी ने जो तरीके अपनाए ना, वो तरीके सामने वाले को झकझोर देने वाले तरीके थे, और वो केवल और केवल संभव था गांधी के आत्मबल से। गांधी ने यह समझा कि सामूहिकता में बहुत बल है, गांधी ने यह बात समझा कि सत्य में बड़ी ताकत है, गांधी ने यह समझा कि अहिंसा के रास्ते भी हम ऐसे साम्राज्य को डुबो सकते हैं जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है। गांधी बड़े कमाल के आदमी थे। गांधी के लिए एक रूपक यदि मैं इस्तेमाल करूं तो गांधी इतिहास की दीवार पर टंगे कोई चित्र नहीं थे, गांधी एक ऐसा दर्पण थे जिसमें मानव सभ्यता अपने वर्तमान का चेहरा भी देख सकती थी।
0: आप कह रहे हैं कि वर्तमान का चेहरा हम देख सकते हैं, लेकिन खबरें ये भी आती हैं। हम कुछ आज के परिवेश से भी जुड़े सवाल पूछें। दीपक जी, आपने भी देखा होगा कि उनकी मूर्ति लगी रहती है और कुछ ऐसे लोग हैं जो आक्रोशित हो जाते हैं और अपशब्द भी कह देते हैं राष्ट्रपिता को और वो शायद थोड़ा दिल दुखाने वाली बात होती है कि गांधी जी तरीकों की बात करते थे, शुद्धता की बात करते थे, और हम शायद अशुद्ध होकर
2: मैं बहुत अच्छी बात, एक मुझे कहीं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा किसी ने कि यदि आप गांधी की किसी बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको समझने का सहूर अभी आपको नहीं आया है। गांधी अपने आप में बहुत बड़े फिलोसफर थे।

0: बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटर थे, बहुत बड़ा फलक था गांधी का। आपने साउथ अफ्रीका की चर्चा की, साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से निकाल कर गांधी को बाहर फेंक दिया गया, तो जो गांधी ट्रेन से निकाल कर फेंके गए वो गांधी अलग थे, और जो उठ के खड़े हुए वो बिल्कुल अलग गांधी थे।
1: जी
0: और वो गांधी जब भारत लौट के आते हैं तो गोखले की सलाह पर पूरे देश का भ्रमण करते हैं, बनारस भी जाते हैं। बनारस जाकर वो देखते हैं कि इतनी गंदगी विश्वनाथ मंदिर के पास है। आज मैं सोचता हूँ कि गांधी होते और विश्वनाथ मंदिर को फिर से देखते दोबारा, और
1: जी
0: वहाँ की साफ सफाई को देखते, तो शायद गांधी का हृदय भर उठता। और गांधी, जहाँ से बात हमने शुरू की थी
1: जी जी
0: कि आखिर गांधी को क्यों नहीं समझा गया ठीक तरीके से। देखिए, गांधी कभी नहीं कहते थे कि तुम मेरी बात पर सहमत हो। हमेशा गांधी का यह मानना था कि असहमति का अधिकार सबके पास है। आप हमसे असहमत होइए,
1: जी
0: बातचीत तो करिए,
1: क्या बात है
0: विमर्श के टेबल पर तो आइए। तो
1: जी
0: गांधी बहुत बड़े आदमी थे। गांधी को यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझने की कैपेसिटी अभी आप में आई नहीं है, वो पैदा करने की ज़रूरत है।
1: गांधी जी भारत लौटते हैं, और आपने भी कहा, हम लोगों ने पढ़ा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के परामर्श पे वो पूरा भारत भ्रमण करते हैं। वो देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी बरतानिया हुकूमत को कैसे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। वो घर घर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं। उन्होंने नमक देखा कि यहाँ यही वो एक कुंजी है, ये एक वो तलवार है जिसको मैं चला सकता हूँ। एक ऐसी तलवार जिसमें पता नहीं कैसी धार है कि बरतानिया हुकूमत सच में उससे घबराती है। तो ये बताएं कि ये जो विजन था गांधी जी का कि नहीं, आप हर घर में सूत काता जाएगा, हर घर के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ये बात वो क्यों कहते हैं? क्या उनको लग रही थी कि इतनी बड़ी बरतानिया हुकूमत को झुकाने का ये प्रयास सबसे बड़ा साबित होने वाला है?
0: आपके सवाल के दो हिस्से हैं।
1: जी
0: सबसे पहले तो नमक आंदोलन। देखिए, नमक आंदोलन बड़ा आंदोलन था गांधी का, और चंपारण में जो उन्होंने तीन काठिया
1: जी
0: आंदोलन था वो भी। देखिए, नमक आंदोलन तो बहुत मैं क्लासिक आंदोलन मानता हूँ। उसका कारण ये है कि जब वहाँ समुद्र के किनारे गांधी ने केतली बैठाई और केतली से भाप निकला, तो ब्रिटानिया हुकूमत का गुरूर भी उस भाप में उड़ गया। और गांधी ने उस गुरूर को तोड़ा नमक बना करके, जो कि एक सरकारी फरमान था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं।
1: जी
0: उसी के साथ चंपारण में भी आप देखें तो गांधी ने तीन कठिया, कट्ठा एक जमीन का मापक होता है, 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी जरूरी हुआ करती थी, इंडिगो जिसको इंग्लिश में हम लोग
1: जी
0: कहते हैं।
1: जी
0: गांधी ने उसको भी तोड़ा। गांधी वो सारे भ्रम, वो सारे नियम जो कि जनता के विरुद्ध बनाए गए थे, उन सबके खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब ब्रितानिया हुकूमत पर हमको निर्भर नहीं रहना है, हमको स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी अपनाने के लिए गांधी चरखे का सहारा लेते हैं, और चरखा क्या कमाल का रूपक है। जैसे आप हल देखते हैं
1: जी
0: तो आपको मेहनत कश लोग नजर आते हैं, वैसे ही जब मैं चरखा देखता हूँ तो मुझे गांधी नजर आते हैं। गांधी चरखे पर सूत कातते हैं, और वह केवल चरखे का सूत नहीं कातते हैं, उस सूत से वो आत्मनिर्भर भारत का सपना बुनते हैं। गांधी खादी को केवल वस्त्र ढकने का माध्यम नहीं बनाते हैं, गांधी खादी को भारत की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। और यह गांधी का विरोध, कई बार इसको हम लोग गांधी के मशीनीकरण के विरोध के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उस पर, मेरी राय अलहदा है, थोड़ी जुदा है। लेकिन स्वदेशी का मतलब, गांधी ये नहीं कहते थे कि पूरी दुनिया से आपको संबंध तोड़ लेना है। उनका मूल भाव था कि समाज के प्रति आप उत्तरदायी हों और आत्मनिर्भर बने, और गांधी ने चरखे का सूत कातना उस रूपक की तरह हम गांधी के इस चरखे को ले सकते हैं।
1: दीपक जी, जरा इस उत्तर में एक बात जरा देखें। आत्मनिर्भर बनाने की ये जो कोशिश थी,
0: जी
1: जो शायद हर दिन इंसान ये जो महसूस करता जा रहा था कि नमक भी हमारा होगा जी, जो परिधान पहनेंगे उसे भी हम स्वयं कातते, और शायद ये मनोबल जो छोटा छोटा, इसको कड़ी दर कड़ी देखें तो कैसे ये आज़ादी तक ले जाता है एक वो इंसान जो अभी उसके ख्वाब में भी नहीं है कि हम बैठ सकते हैं गद्दी पर। उसकी शुरुआत उन्होंने कैसे, कहाँ से कर दी है ये

0: बड़ा आदमी समझ सकता है कि एक महिला को भी वो सिखाते हैं कि तुम भी आजाद हो सकती हो, तुम भी पढ़ सकती हो। ये एक बड़ी बात लगती है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर सरोज?
1: देखिए, गांधी जी का विचार था कि कोई भी हम नियम कानून बनाएं, वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के जो बहुत ही वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे अस्पृश्य हों, उन तक पहुंचे। स्वतंत्रता आंदोलन से लेके ग्राम स्वराज को देखिए, या सामाजिक समानता के लिए, स्वावलंबन के लिए, महिला सहभागिता के लिए, अस्पृश्यता के विरोध में जो उन्होंने काम किए, या सामुदायिक सद्भाव के लिए उनके जो चिंतन थे, उन्होंने भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और उनके विचार किसी निर्णय को लेते समय उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो कि सबसे पीछे है। यही अंत्योदय आंदोलन का भी यही प्रमुख आधार था। और आज हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वंचित वर्ग से हो, उसे शिक्षा का अधिकार मिले, उसे समाज में हम इंक्लूड करें। गांधी जी का चिंतन हमें विकास के साथ ये भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरणा देता है कि क्या विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। इसलिए भारतीय समाज में गांधी जी की प्रासंगिकता केवल हमें इतिहास तक नहीं सीमित रखनी चाहिए, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशन और मानवीय विकास के प्रश्नों में भी इसको हमें शामिल करना चाहिए।
2: डॉक्टर सरोज, आपने गांधी जी के विचारों को बताया, उन्होंने समाज के हर पहलू के बारे में बात की। और आज भी हम देखते हैं, अगर मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बात की जाए तो नीति नियंता हमारे जब भी पॉलिसी बनाते हैं तो गांधी जी का वो जंतर जो है, जो उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी की पहली पुस्तक, पहले पेज पे ही वो लिखा हुआ है कि जब भी आप नीति बनाएं, पॉलिसी बनाएं, हमेशा उस व्यक्ति का ध्यान रखिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है।
0: जी
2: मैं डॉक्टर सरोज मैम और डॉक्टर पतंजलि सर, आपसे दोनों लोग से जानना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर आज के दिन जो है पूरा देश गांधी जयंती को मना रहा है, हम स्वच्छ भारत भी मना रहे हैं।
0: जी
2: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत का एक नारा दिया था, जो फ्रेम जो था वो गांधी जी के चश्मे को बनाया गया था, या यूँ कहें कि वो गांधी जी के विचारों से ही ये प्रेरित हुआ था। इस देश में जहाँ इतनी गरीबी है और हम अक्सर देखते हैं कि स्वच्छता को लेकर हम उतने जागरूक नहीं हैं, तो मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के जो चिंतन है, जो उनकी बातें हैं, वो स्वच्छता के प्रति हमारे एटीट्यूड में किस तरह परिवर्तन ला सकती हैं, समाज को किस तरह परिवर्तित कर सकती हैं।
1: देखिए, गांधी जी के लिए स्वच्छता का ये केवल मायने नहीं था कि परिवेश स्वच्छ रहे, सड़कें, गलियां, मोहल्ले, हमारा घर स्वच्छ रहे। इसके साथ साथ हमारे विचारों में भी, हमारे आचरण में भी स्वच्छता रहे। उनका मानना था कि स्वच्छ समाज का निर्माण केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। आज हम स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी स्वच्छता माह मनाया जा रहा है, हॉस्टल्स में इनमेट्स जो हैं वो सफाई करने में लगे हैं। और ऐसे समय में हम गांधी जी का विचार हमें व्यवहार परिवर्तन और हमें नागरिक के रूप में जो जिम्मेदारी है उसके प्रति सजग करता है। और गांधी जी का स्वच्छता संबंधी चिंतन 3 बातों पे था कि स्वच्छ शरीर हो, स्वच्छ परिवेश हो, स्वच्छ विचार और आचरण हो।
0: क्या बात है।
3: देखिए, गांधी के स्वच्छता का जो गांधी का फ्रेम था उसको मैं 1901 के कलकत्ता अधिवेशन से जोड़ना चाहूँगा। 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें गांधी पहली बार देखते हैं भारतीय परिदृश्य में, और गांधी वहाँ जब जाते हैं तो गांधी वहाँ शौचालयों की स्थिति देख के बड़े दुखी होते हैं और वो खुद संकल्प लेते हैं और खुद शौचालय साफ करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ के स्वयंसेवकों से कहा तो उन्होंने अनिच्छा जताई और गांधी ने स्वयं साफ किया। और यह बात उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस बात का उल्लेख भी करते हैं। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति देश की स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहा था वो व्यक्ति शौचालय की सफाई में जो उसका कर्तव्य था उसमें भी हिस्सा बटा रहा था।
0: ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हर काम में वो हिस्सा बटाते रहे हैं, और शायद यही जीवन का उनका फलसफा है।
3: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में श्रम की गरिमा को स्थापित किया।
0: जी
3: हम मानते हैं कि वही नौकरी सबसे बढ़िया है जिसमें हमारा कॉलर वाइट रहे, सुबह हम जाएं और शाम को लौट के आए तो
0: जी
3: हमारा कॉलर एकदम सफ़ेद रहे। गांधी खुद जुटते थे, खुद कहते थे, और गांधी इस संदर्भ में बहुत बड़े समर्थक थे। कई बार हम लोग गांधी को तकनीक विरोधी मानने का

0: हम हमारे मन में होता है। गांधी चाहते थे कि ये साफ सफाई, ये मैला ढोने का काम, जो जिसके आधार पर हमने कुछ जातियों को अस्पृश्य घोषित कर रखा है, उन जातियों के लिए गांधी बड़ी मजबूती से खड़े होते हैं। और गांधी कहते हैं कि सब अपना शौचालय स्वयं साफ करें, और खुद वो एक मॉडल के रूप में आते हैं। और बाद में चल करके यह मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने देखा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि देश को स्वच्छ करना है, और उसका परिणाम हम देखते हैं। भारतीय रेलवे जिस तरह से, भारतीय रेलवे के स्टेशन पर जिस तरह से मानो मल भरा रहता था, और आज आप जाके देखें,
1: हालात बदले हैं,
0: हालात बदले हैं,
2: लोगों में सर एक
1: प्लेटफॉर्म्स,
2: एटीट्यूड भी
1: हाँ
2: बदला है, जो
1: बिल्कुल
2: बात गांधी जी कह गए
1: हाँ,
2: उसको धीरे धीरे जो है
1: अमल में ला रहे हैं।
0: और 50 करोड़ शौचालय सरकार ने बनवाए, कि लोग आखिर गांधी का सपना साकार हो रहा था।
2: जी
0: ये संजोग की बात थी कि गांधी गुजरात से थे और प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, तो ये संजोग भी कि एक गुजराती ने दूसरे गुजराती के स्वप्न को साकार किया, जिसने भारत की तस्वीर बदली।
2: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इस तरह से भी इस विषय को देखने की आवश्यकता है।
1: जी। एक और बात मुझे लगती है कि शायद गांधी जी इस बात को जानते थे कि अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी और जहन की सफाई रहेगी तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना भला स्वयं सोच सकेंगे। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे, चारों ओर गंदगी रहेगी और दिमागी में भी गंदगी पनपती रहेगी, तो कहाँ से हम एक सुंदर स्वप्न, सुंदर भारत का निर्माण कर सकेंगे? मुझे लगता है कि जब वो चिंतन करते रहे होंगे बैठ करके अपने कमरे में, जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वो साबरमती उस स्थान को भी कहते हैं, जब उस कक्ष में मेरा एक बार जाना हुआ दीपक
2: जी
1: जी, आज भी उस शांति को व्यक्ति महसूस कर सकते हैं। उनका चरखा रखा हुआ है, लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उनका ये जो विज़न है कि आसपास हम स्वयं सफाई करें और अपने जहन को भी सही रखें, तो शायद इस दम पर अगर बरतानिया हुकूमत झुक सकती है तो हम विश्व गुरु तो रहे ही हैं। वो दृश्य फिर से हम देखेंगे, है कि नहीं ऐसा?
2: जी नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि गांधी जी जो है उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को जो है झुकाया, उनको मजबूर किया और उनको नैतिक तौर पे पराजित भी किया। समय का इशारा ये हो रहा है कि हमारा समय जो है अब ख़त्म होने को है।
1: जी
2: हालांकि महात्मा गांधी के विचार और उन पर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अंत में
1: जी
2: मैं जो है डॉक्टर सरोज मैम और डॉक्टर पतंजलि सर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में आप लोगों लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालय का मेरा मानना है कि शिक्षक जो है वो केवल विद्यार्थी को एक दिशा नहीं देता, वो पूरे समाज की एक दिशा को तय करता है। आज महात्मा गांधी की जयंती पर मैं आप दोनों से चाहता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए उन संदेशों को बताइए जो महात्मा गांधी के, जो हमें अपने जीवन में, हमारे समाज को अपने जीवन में उतारने चाहिए।
3: जी हमें महात्मा गांधी को केवल एक व्यक्ति के रूप में याद नहीं रखना है, उनके चश्मे, उनके खादी और लाठी के रूप में याद नहीं रखना है, बल्कि हमें अपने विद्यार्थियों को ये भी सिखाना है कि उनके जो मूल्य थे, उनके जो आदर्श थे, उनको अपने जीवन में हम उतार सकें, उनके किसी एक आदर्श को भी हम अपने जीवन में उतार सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम समाज को बहुत अच्छा योगदान दे सकेंगे।
0: देखिए, गांधी को केवल इतिहास की तस्वीरों में, इमारतों में, स्मारकों में तो याद रखना ज़रूरी है ही, लेकिन गांधी को सही अर्थों में, यदि गांधी को हम चाहते हैं कि गांधी को ठीक से समझें, तो गांधी ने जो कहा उस पर भी हमको अमल करना होगा। गांधी केवल इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज हैं, वो हमारे सामने बहुत सारे नैतिक प्रश्न रखते हैं। क्या हम सत्य के पक्ष में तभी तक हैं जब सत्य हमारे पक्ष में है, या हम तब भी जबकि अन्याय हमारे सामने बहुत बड़ा होकर खड़ा है, क्या तब भी हम सत्य के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? यदि हम यह समझते हैं तो ही मुझे लगता है कि गांधी के सपनों का भारत हम बना पाएंगे, और तभी हमें लगता है कि गांधी को हम सही अर्थों में अपने जीवन में, अपने समाज में उतार पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक, आप ये जो बात कह रहे हैं कि गांधी जी इतिहास के पन्नों में सिर्फ दर्ज ना रहे, मैं तो कह

0: रही हूँ, मैंने नन्हे बच्चों को देखा है जब वो नोट देखते हैं 5 रुपए 10 रुपए। मेरा बेटा भी पूछता है कि मम्मा ये बापू है ना, जहन में दर्ज है वो, और आज की पीढ़ियों न जाने कितनी पीढ़ियाँ उनको संजोएंगी, गांधी बनना चाहेंगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ, ये देश गांधी का है, ये देश पटेल का है, ये देश नेहरू का है, ये देश सरोजनी नायडू का है, ये देश हम सभी का है। तो हम सभी क्यों ना मिल करके वो बात कहते थे कि हाथ बढ़ाइए, हर काम हर व्यक्ति करे, तो न जाने हम कितनी दूर एक छोटे से समय में पहुंच जाएंगे। तो ये तो आज की बातचीत में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ये अवसर दीपक जी ने दिया।
1: धन्यवाद नेहा जी और डॉक्टर सरोज मैम, डॉक्टर पतंजलि सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और महात्मा गांधी के विभिन्न पहलुओं पर आपने बात की, उनके अनेक बातों को आपने जो है विस्तार से समझाया कि और सत्य और साधन की बात की। मैं अपनी तरफ से ये बात कहते हुए कार्यक्रम को जो है समाप्ति की तरफ ले जाता हूँ। डॉक्टर सरोज मैम, आपने पहले ही सवाल में बोला कि गांधी जी साधन और साध्य दोनों को पवित्र मानते थे, और आज हमारे युवा पीढ़ी को यही सीखना चाहिए कि लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए जो हमारा साधन है उसकी भी पवित्रता रखनी होगी।
0: बिल्कुल, और ये पवित्रता हम बनाए रखेंगे, और अगर भटकेंगे तो फिर से लौटेंगे, फिर से पढ़ेंगे, प्रेरणा लेंगे। जो आप कह रहे थे कि उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, तो हम भी इतना साहस रखेंगे कि हम फिर से अपनी गलतियों को देखेंगे और सभी से प्रेरणा लेंगे और सबको एक साथ ले चलेंगे। तो इसी के साथ एक साथ ले चलते हैं स्वच्छता की ओर, जहन की भी, और जो हमारी परिस्थितियां हैं उसकी ओर भी। और इस कार्यक्रम में आप दोनों आए, बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल करते, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद दीपक जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता, अभी आप सुन रहे थे ये परिचर्चा डॉक्टर सरोज यादव और डॉक्टर पतंजलि मिश्रा से भेंट कर रही थी नेहा गुप्ता और दीपक कुमार राय। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षयवट। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं चित्रगुप्त श्रीवास्तव से विनय श्रीवास्तव की बातचीत, वृद्धावस्था और सामाजिक सरोकार।
1: श्रोताओं, अक्षयवट कार्यक्रम में हम बातें करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिकों से हम उनकी बहुत सी बातें सुनना चाहते हैं, सुनते हैं और आप श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि उम्र का अच्छा पड़ाव पार कर चुके हैं और आज भी उतने ही सक्रिय हैं जितना आज से बहुत साल पहले भी रहा करते होंगे, और उनका सामाजिक सरोकार, जिनसे उनका जुड़ाव है, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। आपका शुभ नाम?
2: चित्रगुप्त श्रीवास्तव।
1: और मूल निवास कहाँ है?
2: मूल निवासी तो है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ऊंचाहाट, एक जगह है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, अकोड़िया उसका नाम है, सलीमपुर बैरो कहते हैं लोग, उसी में पैदा हुआ था और वहीं से 8th तक की शिक्षा लिया हमने। उसके बाद 9th से हम चले गए थे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में अपने, वहाँ से हमने हाई स्कूल किया और वहाँ उसका गवर्नमेंट हाई स्कूल था लेकिन उसमें हाई स्कूल तक था, उसके आगे नहीं था, तो फिर हम लखनऊ चले गए, इंटरमीडिएट वहाँ से किया और फिर BSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, MSc नहीं कर सके, उसके पहले ही हमारी सर्विस लग गई थी तो सर्विस करने लग गए थे। और फिर यही जसरा एक जगह है यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर, वहाँ में मेरा अपॉइंटमेंट होगा अनट्रेंड LT टीचर में। उसके बाद मैंने LT किया 57 में, उसके बाद फिर वहीं गया तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए था LT ग्रेड से, मैंने तब तक MSc कर लिया था, तो MSc

0: उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, मैथमेटिक्स लेक्चर बनाया, लेकिन उन्होंने हमको इंक्रीमेंट एक लोअर एक अपर मिलना चाहिए तो नहीं दिया, तो मैं छोड़ के वहाँ रिजाइन करके तुरंत चला गया मध्य प्रदेश। अब मेरा अपॉइंटमेंट वहीं हो गया, जो हनुमान पोस्टिंग हुई पहले वहाँ से, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश दो तीन जगह गया, वहीं से रिटायरमेंट लिया।
1: किस सन में आप रिटायर हुए?
0: हमारे जन्म है 1931, तो वहाँ से हम 60 साल के एज में रिटायर हुए हैं। 91
1: में आप रिटायर हुए। जैसे कि आपने बताया कि 1931 में आपका जन्म हुआ, यानी कि आज आपकी उम्र 94 वर्ष है। हम देख रहे हैं कि आप इस उम्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, और साथ ही जैसे कि एक समय के साथ कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से इंसान कमज़ोर पड़ता है, लेकिन हम देख रहे हैं आप बहुत ही सक्रिय हैं। तो इसके लिए आपने अपने शरीर को, खुद को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की आपकी दिनचर्या क्या रही?
0: हम बिल्कुल सात्विक जीवन जिए हैं। एक्सरसाइज, ये हमारा टहलना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, सवेरे उठ के टहलना, फ्रेश होने के बाद 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर टहलते थे हमेशा।
1: आज भी आप टहलते हैं?
0: आज भी टहलते हैं
1: जी।
0: और खाना पीना हमारा बहुत सात्विक, और सबसे पहले सवेरे उठ करके चना और मूँग ये अंकुरित किया हुआ खाता हूँ, ये हमेशा से चला आ रहा है हमारा बचपन से। दूध के बहुत शौकीन है।
1: कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है बहुत ज्यादा समय तक, तो उसकी जो दिनचर्या वो बहुत संयमित होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने बताया कि 91 में आप सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए,
0: हाँ।
1: तो उसके बाद
0: हाँ।
1: आप किस तरह से, और भी जो आपके सामाजिक सरोकार हम देख रहे हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े
0: हुए,
1: तो ये कब जुड़ना हुआ और किस तरह से?
0: ये तो हमारी हमारी श्रीमती जी वहाँ थी बांदा में, तो उनको एक फिजिक्स के लेक्चरर थे उनके साथ, तो उन्होंने अखंड ज्योति पढ़ाना शुरू किया
1: जी।
0: अखंड ज्योति गुरु जी कहे उसको, अभी हम बहुत बहुत बांटते हैं, अभी 50 अखंड ज्योति देते हैं, 50 अखंड ज्योति और 20 युग निर्माण, तो उनकी लिखी हुई पुस्तकें वो आज भी हम पहुँचाते हैं। तो ये पहुँचाते हैं, ये सेवा करते हैं सामाजिक, और यज्ञ भी करवा लेते हैं, कहीं कहीं यज्ञ होता है, सब करते रहते हैं।
1: आपने कहा कि आज भी आप पत्रिका जो है वो
0: पत्रिका
1: बांटते हैं, तो हाँ। किस तरह से बांटते हैं और क्या?
0: मैं पैदल जाता हूँ पत्रिका बांटने
1: जी।
0: हाँ, पैदल जाता हूँ, कोई वाहन नहीं लेता हूँ।
1: आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है?
0: फादर मदर यहीं हमारे एक्सपायर हुए हैं, गाँव से आकर के, गाँव से हम लोग आ गए थे
1: जी।
0: वो ये मकान बनवाया था हमारे श्रीमती जी की प्रेरणा से बना था। मैं पहले BSc था और वो भी BA थी, वो MA करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने शर्त रखी जब तक आप MSc नहीं करेंगे तब तक हम नहीं BSc करेंगे।
1: यानी कि ये करीब 60-65 साल पहले की बात है।
0: पहले की बात है। तो फिर हमने MSc किया था प्राइवेट आगरा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वही प्रमोशन वाली बात हुई, मध्य प्रदेश चला गया।
1: और परिवार में कौन कौन?
0: परिवार में हमारे 2 बेटे हैं और बेटियां हैं।
1: आपने बताया कि आपका जन्म 1931 का है, और आज बहुत लंबा समय गुजर गया, 94 वर्ष के आप हैं। तो आपने वो एक दौर देखा, उस समय आप युवा रहे होंगे जब आज़ादी का दौर था, आंदोलन हो रहे थे, तो आप भी उससे प्रेरित हुए कहीं?
0: प्रेरित हुए, हम तो RSS में उस वक्त थे, और उस वक्त RSS बैन हो गया था, तो हम लोग उस वक्त कैसे करते थे, उस रायबरेली में प्रभु टाउन नहीं जगह, वहीं पर खेल कूद करते थे और अपना झंडा ध्वज लगा के। गांधी जी आए थे ट्रेन पर, तो हमको याद है कि हम लोग गए थे रायबरेली आए थे, वो बड़ी घटना अच्छी है। और वो ऐसे कान लगाए, उंगली लगाए थे, वो ही देखा। उसके बाद फिर हम उनके आश्रम भी एक जगह गए, नरवाल के पास एक जगह थी, वहाँ गए थे, वहाँ रहे कई दिन, काफ़ी दिन, काफ़ी कुछ उसमें जुड़े रहे हैं। हमारे भाई तो जो थे वो तो एक बार जेलों भी चले गए उसी में।
1: उस समय के कुछ आपके अपने युवा अवस्था की कुछ बातें याद आती हैं, स्कूल कॉलेज के दौर की जो भी बातें?
0: हाँ, स्कूल कॉलेज में अब हमें वही खेल कूद में थोड़ा सा याद है कि हम क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में हम जानते नहीं खेलना, लेकिन वो घटना हमको नहीं भूलती, जो एक किसी ने एक शॉट लगाया उसको हमने कैच कर लिया, एकदम सब ऐसे ऊपर करके कैसे, तो साहब इतना लोग प्रभावित हुए, बड़ा हल्ला मच गया क्या क्या। उसी वजह से फिर हम कैप्टन बन गए थे लखनऊ में
1: जी।
0: अच्छा। काफ़ी जगह गए, यहाँ भी इलाहाबाद में भी हमने ट्रेनिंग किया था, उस वक्त भी

0: वॉलीबॉल के कैप्टन थे।
1: कभी मन नहीं हुआ कि आप स्पोर्ट्स की ओर आप अपना करियर बनाए?
0: नहीं, स्पोर्ट्स दौड़ते उड़ते थे लेकिन किसी करियर उस तरफ जाने का मन नहीं हुआ। हमारा कुछ पता नहीं क्यों लगाव था कि हम टीचर होना चाहते हैं। वो हमारे स्टूडेंट सब हमको आज भी मिलता है, पैर छूता है।
1: आज आपके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में गए, विदेश विदेश में भी होंगे, तो कोई ऐसे आपके जो खास शिष्य हैं कुछ याद है उनके बारे में?
0: जब यहाँ एक इंस्पेक्शन होता था टीचर वहाँ भी स्कूलों में,
1: जी जी,
0: उसमें जब हुआ था मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो चार पांच लोग आके बैठ गए चेक करने के लिए। अब चले गए तो हमसे, तो हम तो कुछ नहीं समझे क्या है, हम तो अपने कागज पढ़ा रहे। जाने के बाद जो रिपोर्ट आई वो बहुत बढ़िया थी। उसमें लिखा था द टीचर हैज़ कमांड नॉट ओनली हिज सब्जेक्ट बट ओवर हिज क्लास, हाँ इस तरह के। तो इसको तमाम प्रिंसिपल ने तमाम जगह दिखाया और दूसरे स्कूलों में जो है।
1: तो आज भी आपके पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत से तो अब रिटायर भी हो चुके होंगे शायद, तो मिलते हैं क्या? उनका क्या आपके प्रति रहता है?
0: बहुत रेस्पेक्ट देते हैं।
1: आज भी मिलते हैं?
0: हाँ आज भी मिलते हैं।
1: आप जब पढ़ाई करते थे तो उस समय, जैसे आज तो हम देख रहे हैं उस समय शायद लाइट भी ना रहा करती होगी, टीवी आ गया, अब तो मोबाइल आ गया, उस समय किस तरह का माहौल और क्या पढ़ाई का?
0: लालटेन से मेरी तो ये आदत थी कि मैं जल्दी सो जाता था। जब सब लोग घर में सो जाते थे उस वक्त लालटेन जला कर पढ़ता था
1: सोने के बाद सबके,
0: और फिर उठता सवेरे देर से।
1: जी जी,
0: तो क्यों उसे इतना इतने शांति रहती थी कि हमारी पढ़ाई में बहुत मन लगता था।
1: अब हम बात करेंगे ये जो आप गायत्री परिवार से जब जुड़े तो आपने क्या महसूस किया, क्या अपने में बदलाव महसूस किया गायत्री परिवार से जुड़ने?
0: बदलाव बहुत हुआ, बहुत सात्विक जीवन हो गया। हाँ मेहनत थोड़ा मैं करता हूँ।
1: किस तरह के काम होते हैं? जैसे अब हम सामाजिक सरोकार की भी बात करें, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक और इस तरह से भी आपका जुड़ाव है,
0: तो
1: इनके क्या आपकी दिनचर्या किस तरह रहती
0: है? इनका तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमने करवाए यहाँ, गायत्री 24 कुंडी या करवाया इलाहाबाद में, दो तीन बार करवा चुका हूँ।
1: अच्छा, आपने बताया कि आपकी वाइफ जो वो उस समय भी एमए करना चाहती थी, मतलब एक अच्छी खासी उस समय उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, स्नातक थी, लेकिन उस दौर में तो शायद उतनी पढ़ाई महिलाओं के लिए शायद इतना नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की
0: पढ़ाई।
1: तो फिर क्या आगे उन्होंने कुछ और नहीं करना चाहा?
0: नहीं, लेक्चर क्या इंचार्ज प्रिंसिपल भी थी, फूलपुर से वहीं रिटायर हुई है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: यानी कि वो भी इसी टीचिंग लाइन में था।
0: हाँ, ये जीवन हम लोगों का अजीब था कि हम लोग बराबर, हम रहे मध्य प्रदेश में, वो थे उत्तर प्रदेश में, वो गवर्नमेंट सर्विस में हम भी।
1: अच्छा,
0: तो साथ रहना बहुत कम होता था। वो सबसे नियरेस्ट थे, हम दसरा में थे और वो मिर्ज़ापुर में थी, नियरेस्ट इतनी दूरी। उसके बाद फिर शंकरगढ़ आ गई थी, पुलिस ट्रांसफर कराया था हमने, हमारा एक स्टूडेंट था उसी ने करवा दिया।
1: अच्छा अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी आपके जो मिलने जुलने वाले बहुत से परिवार के लोग या आपके मित्र, तो इनमें आपका क्या, इन लोगों के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं?
0: सबसे घरेलू संबंध है, अभी दो चार लोग आए, अब तो नहीं, पहले बताया भीड़ होती थी।
1: जैसे आपने बताया गायत्री परिवार की ये जो पत्रिका है आप वितरित करते हैं, तो ये किस तरह से ये काम होता है, क्या है ये
0: नहीं, अब ये है साल में एक बार उनसे थोड़ा सा जो सहयोग राशि है, ये दो किताबें हम बांटते हैं
1: जी,
0: और वो सबको पहुंचाते हैं।
1: आज के दौर में अगर हम देखें तो आज भी रेडियो सुना जा रहा है लेकिन मोबाइल पर लोग सुन रहे हैं, ऐप आ गए हैं, लेकिन आपके समय जब आप युवा थे या उसके बाद भी, उस समय तो केवल रेडियो सेट हुआ करता था, तो उस दौर की बातें कुछ याद आती है, कोई आप सुना करते थे?
0: रेडियो तो हम सुनते थे। एक हमारा स्टूडेंट था वहाँ लखनऊ में, उसने बनाया था, वो तार वार ला कर पता नहीं
1: बनाया
0: वगैरह बना के, तो हम उसे सुना करते थे कान में लगा करके, उसने बना दिया था हमारे लिए।
1: अच्छा,
0: हाँ हम उस पर सुना करते थे, पंजाबी था वो, उसने हमारे लिए विशेष कर बनाया था।
1: तो उस समय रेडियो का ही बहुत शौक था लोगों को,
0: बहुत शौक था,
1: चाहे वो क्रिकेट की कमेंट्री हो या गाने हो या और भी कार्यक्रम हो।
0: कमेंट्री वगैरह तो बहुत मैं सुनता था, वो मैं इसी में ज्यादा इंटरेस्ट है, कमेंट्री सुनते थे।
1: अच्छा, अब हम चलते चलते एक आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी प्रेरणाप्रद बातें लोग सुने और उससे प्रेरित हों, जैसे कि आपकी दिनचर्या आपने बताया कि बहुत नियमित संयमित रही है, तो आपका स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चाहते हैं कि सब ऐसे ही नियमित रूप से रहें लोग, जो नियमित रूप से रहेगा वो जरूर स्वस्थ रहेगा। तो ये अगर जो भी करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, निश्चित बात है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक नियम का पालन जरूरी है।

0: है तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और हम आपको देखकर, हम आपसे प्रेरित होकर भी ये जरूर कह सकते हैं कि आपने जिस तरह आप संयमित जीवन जिया है, स्वास्थ्य को लेकर आप सतर्क रहे हैं और आप सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप 100 वर्ष पूरा करें और हम सबके लिए बहुत
1: बताएं जी। हम एक चीज बहुत भाग्यशाली हैं
0: जी,
1: हमारे बेटे तो अपने ही हैं, बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है हमारा
0: जी जी।
1: अगर कहीं देर हो गई, पापा जी अभी देर, खाना नहीं है, खाने है, तो जल्दी आइए। ये हम अपने बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस ज़माने में बहू बेटे 6 रहे, 2 बहू हैं हमारी, दोनों।
0: तो आपने बहू और बेटी की बात कर ली, तो क्या अगर हम आपके ग्रैंडसन की बात करें, पोते होते की बात करें, तो उनमें से क्या आपसे उनसे आपका
1: लगाव? अरे बहुत, बस वो जो बच्चे बहुत ही मानते हैं हमको। अभी भी एक बेटी है हैदराबाद में, वो एकदम बिल्कुल कुछ दिन रही
0: पोती है,
1: पोती वो कुछ दिन रही है यहाँ। एक की शादी हो गई, 2 बेटियाँ हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: एक की शादी हो गई है।
0: हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे 100 वर्ष की आयु आपको मिले और आपसे हम सब लोग प्रेरित होते रहें, और जो सुन भी रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम उनको भी जरूर कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी कि नियमित संयमित जीवन और धर्म आध्यात्म से भी कहीं ना कहीं जुड़ाव बहुत ही मायने रखता है।
1: आप अपने काम में लगन से करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें कोई लापरवाही नहीं। बहुत मेहनत से हमने पढ़ाया लड़कों को, शुरू से हमारा नियम रहा पढ़ने में भी, और जब टीचर हुए तब भी, और आज जब रिटायर हो गए तब भी।
0: बिल्कुल, ये तो हमेशा से रहा कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें परिश्रम तो करना ही है, साथ ही ईमानदारी और सच्चाई भी बहुत ज़रूरी है, और शायद आपने उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए किया और तब आज इस तरह आप सफल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत वृद्धावस्था और सामाजिक सरोकार। चित्रगुप्त श्रीवास्तव से बात कर रहे थे विनय श्रीवास्तव। इसके साथ ही अक्षयवट कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत

0: श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है, इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिनमाई तथा

0: केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
3: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
1: महिला रिकर्व टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
5: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश

0: defeating China 1-0 in the closely fought final. Lalrem Semai Marzote scored the decisive lone goal for India, while goalkeeper Savita Punia produced a crucial save from a penalty stroke to preserve the lead and secure the gold medal. The victory marks India's first women hockey gold at the Asian Games in 44 years, ending a long wait for the title. Earlier, Indian wrestler Sujit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65-kilogram freestyle event. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Chinchen 3-2 in a split decision in the final. Ankush Pangal clinched the gold medal in the men's 80kg category, defeating South Korea's Kim Min-seong by a split decision 4-0 in the final. India's star woman boxer Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the 75kg category, defeating China's Bao Zi by unanimous 5-0 decision in the final. In archery, women's recurve team created history by clinching its maiden Asian Games gold medal. The try of Ankita Bhagat, Kirti Mishra and Kumkum Mohot defeated world champion South Korea 5-3 in the thrilling final. India also bagged silver in the mixed recurve team event. Kumkum Mohot and Dheeraj Bomadevra finished runners-up after going down 3-5 to China in a closely contested final. Sepak Takraw, India scored the bronze medal in the men's quadrant event. In sailing, Netra Kumanan clinched bronze in the women's dinghy event. With these impressive performances, India has climbed to 5th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 76, including 16 gold, 25 silver and 35 bronze medals. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal winners. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smit Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight, asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Huda, Lovlina Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मित मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। पहलवान सुजीत कलकल और मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंडाल ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। उसने तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 76 हो गई, जिनमें सोने के 16 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की और इसराइल जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज को हाईजेक करने की कोशिश के दौरान उनकी बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वो हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कैप्टन मच्छर के उस फौरी फैसले को सराहा, जिससे सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचाने में मदद मिली।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने

0: फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से पीछे, और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
2: गुज़श्ता बुध के रोज़ कैप्टन मच्छर उस वक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए जब दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज़ के कॉकपिट में उनके साथी पायलट ने उन्हें छुरी मार दी। इस परवाज़ में 174 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के शहर मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के इख्तितामी दिन आलमी तिजारत में पाई जाने वाली बेकायदगियों और अदम तवाजुन को दूर करने के लिए आलमी तिजारती तंजीम WTO के जाब्तों के मुताबिक तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर दिया है। ढांचा जाति इजाफी सलाहियत और पैदावार के मौजू पर खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है और इसकी मईशत 140 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करने वाली घरेलू मांग पर मबनी मईशत है। उन्होंने उजागर किया कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार मसनूआत तक मैन्युफैक्चरिंग का मुकम्मल वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पैदावारी सलाहियत उसकी घरेलू और आलमी दोनों जरूरियात पूरी करती है, और G20 की सदारत के दौरान जिन शोबों की निशानदेही की गई है उनमें भारत को ढांचा जाती इजाफी पैदावारी सलाहियत का मसला दरपेश नहीं है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत और कई रुकन मुल्कों को तशवीश है कि बाज़ मईशतों में गैर मुनसिफाना तौर पर असरअंदाज होने वाली सरकारी मदद से अशिया को गैर मामूली तौर पर कम कीमत पर बैरून मुल्क फरोख्त करने और हरीफों को मार्केट से बाहर करने के लिए जानबूझकर इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने का रुझान पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे खदशात से निमटने के लिए WTA के जाब्तों से हम आहंग इकदाम किए जाते हैं, जिनमें डंपिंग मुखालिफ महसूल और इजाफी दरामदी महसूल शामिल हैं। G7 के रुकन मुमालिक के रहनुमाओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें आलमी सतह पर डीजल की सप्लाई, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और अमरीका और यूरोप के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने अपने स्ट्रेटिजिक जखायर से ईंधन जारी नहीं किया तो अमरीका डीजल की बरामदात रोक सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस की रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने के बाद रूस ने डीजल की बरामदात पर आयात पाबंदी में तौसी कर दी है, जबकि चीनी रिफाइनरियों ने मुल्की जरूरियात के लिए डीजल की बरामदात मुअत्तल कर दी हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने बुलाई थी ताकि G7 ममालिक के रहनुमाओं को इस बात पर आमादा किया जा सके कि वो बरामदाती पाबंदियां आयद किए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के इकदाम कर सकें। यूरोपीय कमीशन के अहदेदारान ने डीजल की बरामदात पर अमरीका की मुजवजा पाबंदी को मुस्तरद करते हुए मुतनब्बे किया कि इससे काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर अमरीका पर एतमाद को नुकसान पहुंचेगा।
3: तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 ममालिक के साथ भारत की तिजारत का इनहिसार एक शफाफ, गैर इम्तियाजी और कवायद पर मबनी तिजारती निज़ाम है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का दर्जा उस निज़ाम की एक अहम जमानत है, जिसके तहत सबसे छोटे ताजिर और सबसे बड़े ताजिर के लिए यकसां शरायत लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में जबरी मशक्क़त के खात्मे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। वजीर मौसूफ ने एक बार फिर कवायद पर मबनी मुनसिफाना, मसावी, गैर इम्तियाजी, शफाफ, जामे और कसीर जहती तजारती निज़ाम के लिए भारत के अज़्म का इयादा किया। जनाब गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के अपने हम मनसबों से मुलाकात भी की। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
2: मुल्क ने आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है।

0: कौमी राजधानी में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा यानी सभी मजाहिब के दुआइया जलसे का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में शिरकत की और बाबा कौम को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर और वजीर आजम ने आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के दौरान नामवर गुलकारों के साथ साथ स्कूली तलबा ने रूहानी नगमे गाए। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था। नौउम्री में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और साल 1921 की अदम तावन तहरीक में हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को आज सुबह कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार विजय घाट पर गुलहाए अकीदत नजर किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि मन की बात के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: आकाशवाणी पर मन की बात माहाना रेडियो प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके आगाज के बाद से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब ये प्रोग्राम नशर ना हुआ हो। ये कोई पॉलिसी से मुताल्लिक खिताब नहीं है। इस प्रोग्राम में आम लोगों के उन कामों को उजागर किया जाता है जो उन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिए हों। इस प्रोग्राम के जरिए किसी सरकारी स्कीम को आम फहम जबान में समझाया जाता है और सफाई, सुथराई, पानी या खुद किफालत जैसे मामलात में आवाम से ताउन की अपील की जाती है। रेडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जहां कोई और ज़राए इबलाग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोग्राम ने मुल्क के आवाम से बातचीत का एक ऐसा अंदाज पैदा किया है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही इंतखाबी मुहिम। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें नशरिये के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में जिन मौजूदात या स्कीमों का अहाता किया गया वो अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गईं।
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया।
1: मीडिया से बात करते हुए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सामेईन ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आवाम तक पहुंचाया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बातों कर रहे हैं।
1: मीडिया से बात करते हुए मारूफ अदाकार आमिर खान ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। आज करोड़ों भारतीय वजीर आजम के खिताब को सुनते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने वाली हुक्मरानी की कामयाबियों की कहानियां सुनते हैं। उमंगों वाला भारत, बदलती हुई हकीकतों की दास्तानें गहरी दिलचस्पी और जुस्तुजू के साथ सुनता है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोधना सिवानंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से खवातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का

एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबान ने समरकंद उज्बेकिस्तान में मुनाकिद 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीत कर तारीख रकम की थी, जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थी। भारत की सरकर्दा ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इतवार को आईची नागोया में होने वाली एशियाई खेलों की अख्तितामी तकरीब में भारत की खवातीन परचम बरदार होंगी। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए और अपनी महारत, अज्म और खेल के आला मेयार का मुजाहिरा किया। खवातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0-1 शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। लाल रेमेम सियामी ने भारत की जानिब से फैसला कुन वाहिद गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बढ़तरी बरकरार रखी और सोने का तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सोने का तमगा जीता। मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंकुश पंघल ने जनूबी कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। इसके साथ ही तमगे की फहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मिथ मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल-ए-एतमाद शराकत दार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार शुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। इसके तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 76 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: current affairs. This is Akashvani. In the weekly program, Current Affairs, now we...
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा। कार्यक्रम की पहली पेशकश भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में राजेश जौहरी की लिखी ये गज़ल।

कहकशा प्रोग्राम की अगली पेशकश सोनाली राठौर और रूप कुमार राठौर की आवाजों में परवीन शाकिर का ये कलाम।

इसके साथ ही गजलों का कार्यक्रम कहकशा अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: welcome to our daily highlights from the Independent Asian Games in Nigeria. Hi, Avika. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
1: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां, जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके

0: चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0। और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया। बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का, और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा। स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे, और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे। देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया, बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजेय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडित काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की। अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगजाओ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई।

0: लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's quadrant teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगु स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं लगे रहो मुन्ना भाई के फिल्म से। सोनू निगम की आवाज साथ दिया है श्रेया घोषाल और प्रणव विश्वास ने। रचना है स्वानंद किरकिरे और विधु विनोद चोपड़ा की और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत, नचिकेता चौधरी और सोनू निगम की आवाज़ें। फिल्म का नाम बॉस द अनफॉरगेटिंग हीरो।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। तो आइए सुनते हैं बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन राग मालकौंस में।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रागमाल कौंस में ख्याल गायन। कलाकार थे बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के इस ख्याल गायन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक

जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।